सुप्रभात, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आकलन केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 5:58:40 हुए हैं। दिन है आज गुरुवार, शक संवत 1947, असारा महीने की 25वीं तिथि और साथ ही अंग्रेजी सन 2026 की 16 जुलाई है। सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं सावित्री शुरू करती हूँ आज की हमारी पहली सभा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और निर्माण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की भी क्षमता को मजबूत करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रुसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24 से 25 हजार रुपए प्रति सीट था, अब ये घटकर 12 से 15 हजार रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडेचा मंदिर में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। वहीं अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 25वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिला दी। 90वें मिनट में लुटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। आइए अब आज के मुख्य कार्यक्रमों पर नजर डालते हैं।

सबसे पहले यानी कि 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम। 6:30 पर आप सुन पाएंगे वुमन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग। 7:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 7:05 पर आप सुनेंगे आज का दिन।

युवा संबंधित कार्यक्रम का समय रहेगा 7:30 का। 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार प्रभात तथा 8:15 पर कुछ देशभक्ति गीत। नोटिस न्यूज का समय रहेगा 8:30 का, जो आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से रिले किए जाएंगे।

सुरु की रंगोली कार्यक्रम का आप आनंद ले पाएंगे सुबह 8:40 पर। 9 बजे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से आप सुनेंगे पुअर आंचलिक बातोरी। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे खेल माँ भक्ति गीत 9:25 पर रिचार्ड एल लुसाई और साथियों से। रांगखोल कार्यक्रम के तहत आज सुनेंगे रांगखोल पारंपरिक गीत पाइडा सॉन्ग रांगखोल और साथियों से सुबह 9:25 पर।

एंजेलिन सुचेंग और साथी सुनवाएंगे कुछ ले जयंती भक्ति गीत सुबह 9:35 पर। 9:45 पर बेते कार्यक्रम में आज सुनेंगे कुछ बेते भक्ति गीत।

एल आर कस्परा नाम बुई और साथियों से। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप आनंद ले पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का जो आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे, और इसी बीच हर घंटे आप सुनते रहेंगे समाचार और मुख्य समाचार। दोपहर 2 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, और उसके पश्चात दोपहर 2:15 पर दोपहर समाचार। ये थी जानकारी हमारे आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। आइए अब आरंभ करते हैं आज के कार्यक्रमों को। सबसे पहले सुनते हैं कुछ भक्ति गीत।

आप आनंद ले रहे थे भक्ति गीतों का। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। अब प्रस्तुत है वुमन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग के तहत कुछ फिल्मी गीत।

आप आनंद ले रहे थे वुमेन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग के तहत कुछ फिल्मी गीतों का। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 7.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और विनिर्माण के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की क्षमता मजबूत करेगा। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा, नवाचार और प्रौद्योगिकी, संपर्क, रक्षा, सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रसेल्स में कल आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24 से 25 हजार रुपए प्रति सीट था, लेकिन अब ये घटकर 12 से 15 हजार रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। श्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री यादव भारत और विदेशों के प्रमुख वस्त्र निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से बातचीत करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पेविलियन का भी अवलोकन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक से भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को मजबूत गति मिलेगी। उन्होंने ब्रसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा की जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद की एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,770 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ये आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज ओडिशा के पुरी में शुरू हो रही है। यात्रा का समापन श्री गुंडिचा मंदिर में होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। रविवार को फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। अब सुनिए आज के दिन के तहत पोएम ऑफ द डे।
3: नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष जोशी। मैं आज एक कविता बोलने जा रहा हूँ। वो कविता का शीर्षक है मुस्कान। हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है, हर शाम खुशी दे जाती है। जो हर हाल में मुस्कुरा लेता है, जिंदगी उसी के साथ मुस्कुराती है। मुश्किलें चाहे जितनी भी आए, हिम्मत कभी कम मत होने देना। विश्वास की लो जलाई रखना, सपनों को कभी खोने मत देना। धन्यवाद।

प्रस्तुत है आज का दिन। इतिहास के पन्नों में 16 जुलाई का दिन कई महत्वपूर्ण घटनाओं, महान व्यक्तियों के जन्म और प्रेरणादायक उपलब्धियों का साक्षी रहा है। आइए जानते हैं आज के दिन इतिहास में क्या क्या खास हुआ था। आज के दिन 1661 में स्वीडिश बैंक ने यूरोप का पहला बैंक नोट जारी किया था। आज के दिन 1856 में हिंदू विधवाओं के पूर्ण विवाह को कानूनी मान्यता मिली थी। आज के दिन 1890 में डॉक्टर जेम्स पार्किंसन के शोध के आधार पर पार्किंसन बीमारी को पहचान मिली थी।

आज के दिन 1925 में इराक के राजा फैजल ने बगदाद में पहली संसद की स्थापना की थी। आज के दिन 1925 में नेल्सन नेशनल जियोग्राफिक ने पहली बार समुद्र के भीतर के दृश्यों की प्राकृतिक रंगीन तस्वीरें प्रकाशित की थी। 1945 में आज के दिन अमेरिका ने परमाणु बम का सफल प्रक्षेपण किया था। आज के दिन 1969 में अमेरिका ने चंद्रमा पर मानव भेजने के मिशन के तहत अपोलो 11 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया था।

आइए आप जानते हैं 16 जुलाई को जन्मे व्यक्तियों के नाम। आज के दिन 1896 में ट्रिगली ली का जन्म हुआ था। वे

नॉर्वे के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, लेखक, मजदूर नेता और राजकीय अधिकारी थे। आज के दिन 1909 में अरुणा असफ अली का जन्म हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख सैनियों में से एक थी। आज के दिन 1917 में जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। वे हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार और साहित्यकार थे।

आज के दिन 1923 में के वी कृष्णा राव का जन्म हुआ था। वे भारतीय थल सेना के पूर्व प्रमुख थे। आज के दिन 1937 में आर के धवन का जन्म हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद थे। आज के दिन 1937 में जरीना हाशमी का जन्म हुआ था। वे भारतीय अमेरिका कलाकार और प्रिंट मेकर थी।

आज के दिन 1956 में भागवत करत का जन्म हुआ था। वे महाराष्ट्र के राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। 1968 में आज के दिन धनराज पिल्ली का जन्म हुआ था। वे भारत के महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक है। 1984 में आज के दिन कैटरीना कैफ का जन्म हुआ था। वे बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। आइए अब जानते हैं 16 जुलाई को हुए निधन व्यक्तियों के नाम। आज के दिन 2005 में केवी सुन्नभा का निधन हुआ था। वे प्रसिद्ध कन्नड़ नाटककार, रंगकर्मी और सांस्कृतिक कार्यकर्ता थे। आज के दिन 2017 में नरबहादुर भंडारी का निधन हुआ था। वे सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के प्रमुख नेताओं में से एक थे। आज के दिन 1921 में सुरेखा सिकरी का निधन हुआ था। वे भारतीय सिनेमा और टेलीविजन की वरिष्ठ एवं प्रसिद्ध अभिनेत्री थी।

बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अरुणा आसिफ अली। महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका अरुणा आसिफ अली की जयंती हर साल 16 जुलाई को मनाई जाती है। अरुणा आसिफ अली भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी निडर महिला नेताओं में से एक थी। उनके साहस, नेतृत्व और सामाजिक न्याय के प्रति आजीवन समर्पण ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता की महान महिला की उपलब्धि दिलाई। अरुणा आसिफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 को हरियाणा के कालका में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लाहौर के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे कोलकाता के गोखले मेमोरियल स्कूल में शिक्षिका बनी। 1928 में मुस्लिम वकील और स्वतंत्रता सेनानी आसिफ अली से विवाह के बाद उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। ये एक साहसिक अंतर्धार्मिक विवाह था जिसने उस समय की सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ा। अपने पति और जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी से प्रभावित होकर वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुई और स्वयं को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। अरुणा आसिफ अली का राजनीतिज्ञ में प्रवेश सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स 1930 में उनकी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से हुआ। 1932 में एक सार्वजनिक पार्क में कांग्रेस का झंडा फहराने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया और कारावास के दौरान उनके साहस के लिए उन्हें जाने जाने लगा। हालांकि उनका सबसे ऐतिहासिक कार्य अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ, जब उन्होंने बम्बई में गोलिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रव्यापी नागरिक विद्रोह की शुरुआत का प्रतीक था। इस कार्य ने उन्हें प्रतिरोध की का राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया। अरुणा के राजनीतिक विचार गांधीवादी अहिंसा से विकसित होकर समाजवादी विचारधारा की ओर अग्रसर हुए। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी अरुणा आसिफ अली राष्ट्रीय और सामाजिक आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रही। उन्होंने राष्ट्रीय भारतीय महिला संघ और अन्य नारीवादी संगठनों में योगदान दिया, जहां उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय की वकालत की। 1998 में अरुणा ने दिल्ली की पहली निर्वाचित महापौर बनकर एक बार फिर इतिहास रच दिया, जो उनकी लोकप्रियता और प्रशासनिक कुशलता का प्रमाण था। अरुणा आसिफ अली के योगदान को न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली। 1992 में उन्हें राष्ट्र के प्रति आजीवन समर्पण के सम्मान में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो एक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक के रूप में उनकी अमित विरासत को एक उपयुक्त श्रद्धांजलि थी। अरुणा का निधन 29 जुलाई 1996 को नई दिल्ली में हुआ था। उन्हें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी निडर महिलाओं में से एक के रूप में याद किया जाता है। दिल्ली में स्थित उनका स्मारक अरुणा आसिफ अली मार्ग और इतिहास के पाठ पुस्तकों में उनकी जीवन कहानी पीढ़ियों के उनके समर्पण को याद दिलाती है।

आज जगन्नाथ रथ यात्रा है। जगन्नाथ रथ यात्रा हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य पर्वों में से एक है। यह हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से प्रारंभ होती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भव्य एवं सुजित रथों में विराजमान होकर श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित गुड्डीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये यात्रा भगवान कृष्ण और बलराम के अपनी बहन सुभद्रा के साथ द्वारका भ्रमण करने या वृंदावन की गोपियों द्वारा कृष्ण को वापस लाने की इच्छा की याद दिलाती है। इस यात्रा के लिए 3 अलग अलग रथ तैयार किए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदीघोष, भगवान बलभद्र के रथ को तालाध्वज और देवी सुभद्रा के रथ को दर्वदलन कहा जाता है। इन रथों का निर्माण हर वर्ष विशेष प्रकार की लकड़ियाँ से पारंपरिक विधि के अनुसार किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रथ के निर्माण में किसी भी प्रकार की नुकीली चीज जैसे कली आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। वही लकड़ियों का चयन करना वसंत पंचमी तिथि से शुरू किया जाता है। इसके बाद अक्षय तृतीया के रथ में निर्माण का आरंभ हो जाता है। रथ यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें लाखों श्रद्धालु भगवान के रथ की रस्सी खींचते हैं। ऐसा मान्यता है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ रथ खींचने से शुभ फल और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, इसलिए इसे भगवान और भक्त के मिलन का पर्व भी कहा जाता है। गुड्डीचा मंदिर में भगवान 7 दिन तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल दशमी को वे पूर्ण श्री मंदिर लौटते हैं। इस वापसी यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है।

श्रोताओ, ये थी 16 जुलाई के बारे में कुछ ऐतिहासिक जानकारी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत।

0: आप आनंद ले रहे थे कुछ फिल्मी गीतों का। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलों केंद्र है।
1: आपके गीत दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी हाफलोंग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

अब प्रस्तुत है हमारा विज्ञान संबंधित आर्य कार्यक्रम। आज का हमारा विषय है एक पैर सौवरदान। जब भी हम प्रकृति की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में पेड़ों की छवि उभरती है। पेड़ केवल हरियाली का प्रतीक नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार है। वे हमें शुद्ध हवा, स्वच्छ पर्यावरण, फल, औषधि और अनगिनत प्रकृति उपहार देते हैं। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते वन क्षेत्रों जैसे चुनौतियों का सामना कर रही है, तब एक छोटा सा कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है और वो कदम है वृक्षरोपण। इन समस्याओं का सबसे सरल, सस्ता और प्रभावी समाधान हमारे आसपास ही मौजूद है। एक पेड़ केवल ऑक्सीजन ही नहीं देती बल्कि जीवन संतुलन और भविष्य भी देती है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम हर पल सांस के रूप में लेते हैं। बदले में वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं जिससे वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद मिलती है। पेड़ केवल हवा ही नहीं बल्कि धरती का भी संतुलन बनाए रखते हैं। उनकी जड़ें मिट्टी में बांध कर रखती है जिससे कटाव कम होती है। वे वर्षा चक्र से प्रभावित करते हैं और भूजल को सुरक्षित रखने में भी मदद करते हैं। दुर्भाग्य से विकास की दौड़ में बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं, जल सिकुड़ रहे हैं, शहरों में कंक्रीट बढ़ रही है और हर साल गर्मी नए रिकॉर्ड बना रही है। इसका परिणाम हम सभी देख रहे हैं, बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, बाढ़ और सूखा, वायु प्रदूषण और वन्यजीवियों का संकट। लेकिन समाधान भी हमारे पास ही है। हर वर्ष कम से कम एक पेड़ पौधा लगाए पौधों को देखभाल भी करें, बिना आवश्यकता पेड़ ना काटें, वर्षा ऋतु में वृक्षरोपण अभियान में भाग लें, बच्चों में प्रकृति के प्रेम प्रति प्रेम जगाए। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, पेड़ लगाना केवल एक पौधा लगाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन बोना है। और याद रखिए, पेड़ हमेशा हमसे कुछ नहीं मांगते लेकिन हमें जीवन भर देते ही रहते हैं। आज यदि हम एक पेड़ बचाते हैं तो केवल एक ताना या कुछ पंक्तियाँ नहीं बचाते बल्कि हवा, पानी, मिट्टी, पक्षियों का घर और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी बचाते हैं।

कहा जाता है कि पेड़ लगाना केवल एक पौधा लगाना नहीं बल्कि भविष्य में जीवन बोना है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा पौधा जो हमारी हथेली में समा जाता है वही एक दिन हजारों लाखों को शुद्ध हवा, ठंडी छाया और जीवन दे सकता है। यही है वृक्षरोपण की असली शक्ति। एक पौधा केवल पेड़ नहीं बल्कि भविष्य की उम्मीद बनाती है। प्रकृति हमें बिना किसी अपेक्षा के सब कुछ देती है, हवा, पानी, भोजन और जीवन। लेकिन यदि हम प्रकृति को कुछ लौटाना चाहें तो वो सबसे सुंदर उपहार है एक पेड़। एक पौधा लगाना केवल मिट्टी के बीच डालना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य की तैयार करना है। इसी भावना के साथ वृक्षरोपण की शक्ति

श्रोताओं, ये थी विज्ञान संबंधित कार्यक्रम जिसमें आज आपको बताया कि पेड़ कैसे हमारे जीवन को सरल और सरल बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। आइए अब आनंद लेते हैं कुछ फिल्मी गीतों का।

आप आनंद ले रहे थे कुछ फिल्मी गीतों का। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।

0: कैच द रेन, बारिश की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
3: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
2: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
4: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए से लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान

0: कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

0: ನೀಲಾಂಚಲ ನಿವಾಸಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬಲಭದ್ರ ಸುಭದ್ರಾಭ್ಯಾಮ್ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಜಗತ್ ಕೆ ನಾಥ್ ಕಹಿ ಜಾನೆ ವಾಲೆ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕೋ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ರೂಪ ಮಾನಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ರಥ ಯಾತ್ರಾ ಕೆ ದೌರಾನ್ ಭಗವಾನ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಉನ್ಕೆ ಬಡೆ ಭಾಯಿ ಭಗವಾನ್ ಬಲಭದ್ರ ಔರ್ ಬಹನ್ ದೇವಿ ಸುಭದ್ರಾ ಭವ್ಯ ರಥೋ ಪರ ವಿರಾಜಮಾನ್ ಹೋಕರ್ ಶ್ರೀ ಮಂದಿರ್ ಸೆ ಲಗಭಗ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಸ್ಥಿತ ಶ್ರೀ ಗುಂಡಿಚಾ ಮಂದಿರ್ ಕಿ ಯಾತ್ರಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಮಾನ್ಯತಾ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ಮಂದಿರ್ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಮೌಸಿ ಕಾ ಘರ್ ಹೈ, ಜಹಾಂ ತೀನೋ ದೇವತಾ 9 ದಿನೋ ತಕ್ ವಿರಾಜಮಾನ್ ರಹತೆ ಹೈ. ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಬಹುದಾ ಯಾತ್ರಾ ಕೆ ಸಾಥ್ ವೆ ದೋಬಾರಾ ಮಂದಿರ್ ಲೌಟತೆ ಹೈ. ರಥ ಯಾತ್ರಾ ಕಿ ಶುರುವಾತ್ ಪಾಹಂಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ್ ಸೆ ಹೋತಿ ಹೈ. ಇಸ್ಮೇ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರ ಭಜನ್ ಕೀರ್ತನ್ ಔರ್ ಪಾರಂಪರಿಕ ರೀತಿ ರಿವಾಜೋ ಕೆ ಬೀಚ್ ತೀನೋ ವಿಗ್ರಹೋ ಕೋ ರಥೋ ಪರ ವಿರಾಜಮಾನ್ ಕರಾಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಲಾಖೋ ಶ್ರದ್ಧಾಲು ರಸ್ಸಿಯೋ ಸೆ ರಥ ಖೀಚತೆ ಹೈ, ಜಿಸೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಔರ್ ಪುಣ್ಯದಾಯಕ ಮಾನಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಇಸ್ ನಗರ ಭ್ರಮಣ ಕೋ ಭಕ್ತೋ ಕೋ ದರ್ಶನ್ ಔರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇನೆ ಕಾ ಪ್ರತೀಕ ಮಾನಾ ಜಾತಾ ಹೈ.
1: ಲೀಲಾ ಚಲ್ವಾ ರೇ ತೂ ನಾ ಸಂಭಾಲೆ ತೋ ಹಮೇ ಕೌನ್ ಸಂಭಾಲೆ.
2: ओडिशा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है.
3: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंडा जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है. भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडिचा मंदिर जाएंगे. पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव 3 शानदार ढंग से सजाया गया रथ नंदी घोष, ताड़ध्वज और देवी दलन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे. फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन रथों को ग्रांड रोड पर खींचना शुरू करेंगे. प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार.
2: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है.
4: सज रहा है रथ प्रभु का चंद्रमा सा चेहरा.
5: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया. इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि सम्पन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया. रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं. अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद.
2: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं.
6: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं. दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा. इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा आईआईटी के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी. आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान.
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा. मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे. भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा. मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया. एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी. 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है. 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी. अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं. आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं. ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए. अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
7: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
2: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
8: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत, सेमिकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों और एमएसएमई को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समझौते से 99% निर्यात शुल्क मुक्त हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है जगन्नाथ है महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है जीन से ग्रीन क्रांति, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी, ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज, टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हफ्लो केंद्र है। अभी आप सुनेंगे कुछ देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे कुछ देशभक्ति गीत। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज़।

0: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है।
1: हेलो हफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलोंग।
2: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
1: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हफलोंग।

आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम सुरों की रंगोली का, जिसमें आज आपने सुने तलत महमूद के कुछ गाने। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज़।

0: तू उन दौर वो ला सके थे
1: दौर वो लाख में।

फायदा सॉन्ग रांखोल और साथियों की आवाज़ में आप सुन रहे थे रांखोल पारंपरिक गीत। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। अभी सुनेंगे जयंती कार्यक्रम के तहत जयंती भक्ति गीत एंजेलिन सुचेंग और उनके साथी से।

एंजुलिन सुचेंग और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे जयंती भक्ति गीत फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के अंत में अभी सुनेंगे बेते भक्ति गीत। गायक कलाकार है एल आर कैस्परा नामपुई और उनके साथी।

0: एल आर कैस्परा नामपुई और साथियों की आवाज़ में आप सुन रहे थे बेते भक्ति गीत। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। अब प्रस्तुत है आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम विविध भारती।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं विविध

0: दोस्तों नमस्कार। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लेखक और कवि विवेक रंजन श्रीवास्तव से ममता सिंह की बातचीत।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक साहित्यकार को जो नाटक भी लिखते हैं, व्यंग्य भी लिखते हैं, कहानियां और उपन्यास भी लिखते हैं। विवेक रंजन जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, विविध भारती के माध्यम से आपको, विविध भारती परिवार को और तमाम श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
1: कैसा लग रहा है आपको स्टूडियो में आकर?
2: बड़ा आत्मीयता का भाव, सारस्वत भाव।
1: क्या
2: और जिस ढंग से नाटक पर मुझे अभी साहित्य एकेडमी, मध्य प्रदेश साहित्य एकेडमी से अवार्ड भी मिला और विविध भारती की पहचान हवा महल से है मेरे जहन में। बचपन से हम लोग 8:15 बजने का इंतजार करते थे और हवा महल का बहुत बड़ा
1: अब 8 बजे का समय हो गया।
2: 8 बजे का हो गया। जी हाँ
1: जी, और भी जो बहुत सारे पुराने प्रोग्राम है, छाया गीत, संगीत सरिता, वो अभी भी ब्रॉडकास्ट।
2: जी हाँ जी हाँ, छाया गीत नियमित सुनता था मैं। हाँ। और कहीं हम लंबी यात्रा पर जाते हैं तो FM विविध भारती ही लगा लिया जाता है। और आपको बताऊं ममता जी कि एक दिन बड़ा रोचक प्रसंग हुआ। मेरी जो श्रीमती जी हैं उन्होंने कहा आज खाना नहीं बनेगा। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले FM रेडियो नहीं बज रहा है और मैं विविध भारती सुनने बगैर खाना नहीं बनाऊंगी। तो ये विविध भारती की लोकप्रियता है और आप जैसी रेडियो सखी, आपकी बहुत सारी छाया गीत मैं बड़े अच्छे से सुनता रहा हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि आज आपसे बातचीत हो रही है। आप कहानीकार भी हैं, आप उपन्यासकार भी हैं और साहित्यकार हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो आपके बारे में चर्चा करनी है तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। हम सबसे पहले विवेक रंजन जी जानना चाहते हैं आपसे कि ये जल्लाद क्या है, कहाँ से विचार आया ये नाटक लिखने का, इसके लिए पुरस्कार भी मिला आपको?
2: जी हाँ, मुझे मध्य प्रदेश साहित्य एकेडमी ने अभी रिसेंटली जो साहित्य एकेडमी के पुरस्कार डिक्लेयर किए उसमें हरिकृष्ण प्रेमी नाट्य पुरस्कार 51,000 रुपये का है वो घोषित हुआ है मेरी नाट्यकृति जलनाद पर। और जलनाद कैसे लिखा मैंने, मैं आपको बताऊं, विश्व जल वर्ष था UNO का, तो नॉर्डिक देशों के लिए एक प्रोग्राम था जिसमें मुझसे ये चाहा गया कि मैं पानी के महत्व को लेकर के कोई पौराणिक आख्यानों को जोड़ करके एक नाटक तैयार करूं।
1: जी।
2: तो मैंने ये विभिन्न जो हमारे धार्मिक या कहें आध्यात्मिक चिंतन वाले ग्रंथ हैं, क्योंकि जैसा आप जानती हैं ममता जी कि इस सृष्टि का उदय भी पानी से हुआ और जो अंत की परिकल्पना है आध्यात्मिक रूप से वो भी जल प्रलय से है।
1: जी हाँ।
2: आप जानती हैं कि हमारे ऋषि मुनि पानी से ही मंत्र उच्चारित कर श्राप दे दिया करते थे, वरदान दे दिया करते थे। और न केवल भारतीय मनीषा के उसमें, हम इसको वैश्विक परिदृश्य में देखें तो
1: जल ही जीवन है,
2: जल ही जीवन है, पानी का लिए ही तीसरा विश्व युद्ध होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें आज भी कितने सारी कंट्रीज हैं जहां पर शुद्ध पेयजल हम उपलब्ध नहीं करवा पा रहे, जबकि हम विज्ञान से इस कदर प्रगति कर चुके हैं। अभी आपने देखा कि तेल खाड़ी देशों में जो युद्ध हुआ वहाँ भी जो समुद्र के पानी को शुद्ध करके पेयजल बनाया जाता है तो वो एक बड़ी समस्या थी कि अगर वो उन पानी के संयंत्रों पर बिजली की कमी या कोई के कारण से पानी नहीं बन पाएगा तो जीवन के लिए संकट उपस्थित हो सकता है। तो पानी का महत्व निर्विवाद है।
1: तो इसमें ये जो नाटक है ये जलनाद, इसमें कैसे पात्रों का चयन किया आपने, संवाद कैसे गढ़े, कहाँ से आपके पास आइडिया आया,
2: इसमें
1: क्या रिसर्च किया?
2: जी हाँ, मैंने इसमें बहुत सारी रिसर्च करी और पानी से संबंधित जितने दृष्टांत मुझे मिलते चले गए उनको नाट्य रूपांतर में मैं बदलता रहा। तो 12 इसमें नाटक हैं। जैसे मैं एक कविता का एक छोटा सा अंश प्रस्तुत करूं जो मैंने ऋग्वेद से, जो हमारा एक ऋग्वेद का मंत्र था जिसमें जल देवता को संबोधित करते हुए बात की गई है। तो मैं उससे एक जो उसका हिंदी मैंने भावा अनुवाद किया है, एक अंतिम पैरा पढ़ देता हूँ।
1: जी जी।
2: हे जल के देवता, मेरा आचरण अब तेरे जैसा हो, तेरा रसायन मेरे पोर पोर में समा जाए, तू प्रवाहमान अग्नि है, तू आ मुझे तेजस्वी बना, वर्चस्व प्रदान कर। जिस प्रकार हम जानते हैं ये ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, उसका हिंदी अनुवाद है अंत में मैंने किया कि पानी की एक बहुत बड़ी गुण है कि वो जिस पात्र में रखा जाता है वह रेप आकार ले लेता है। पानी का एक बहुत बड़ा गुण है कि उसमें जो रंग मिला दिया जाए वह उस रंग में रंग जाता है। तो ये एक इसका अगर हम बौद्धिक विवेचन करें तो ये हमारे लिए जीवन सूत्र भी है।
1: जी जी, बहुत बढ़िया। और आपने व्यंग्य भी लिखे हैं।
2: हाँ।
1: और एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी मध्य प्रदेश जबलपुर के रहने वाले हैं। तो हरिशंकर परसाई जी को आपने पढ़ा है, उनसे क्या कुछ पाया, क्या कुछ सीखा आपने?
2: ममता जी व्यंग के ट्रिपॉइड मध्य प्रदेश में हैं। शरद जोशी जी, बाद में उनकी कर्मभूमि मुंबई रही, वो भोपाल से थे।
1: उनका प्रतिदिन एक कॉलम आता
2: जी
1: था।
2: हाँ। और हरिशंकर परसाई जी का एक कॉलम आता था सुनो भाई साधो
1: जी।
2: तो मैं ये सब पढ़ते हुए अखबारों में बड़ा हुआ हूँ। मेरा परिवार साहित्यिक रहा है तो मुझे पढ़ने में बहुत रुचि थी, तो ये सब पढ़ा मैंने। रविन्द्रनाथ त्यागी जी वो भी मध्य प्रदेश के थे।
1: जी जी जी।
2: और जो एक कहा जाए कि व्यंग के ट्रिपॉइड, ये तीन स्तंभ रहे हैं और उनका पूरा साहित्य मैंने पढ़ा। और अवचेतन में कहीं ना कहीं एक व्यंग के बीज
1: आपके भीतर
2: अंकुरित होते रहे।
1: जी।
2: व्यंग देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग एक स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं और बड़ा लोकप्रिय है, लोग उसे पढ़ते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं। और मेरी व्यंग की 11 किताबें हैं जिनमें मेरे अनेक व्यंग संग्रहित, समय समय पर जो लिखता गया वो किताबों के रूप में आते चले गए एक के बाद एक।
1: कुछ महत्वपूर्ण किताबों का जिक्र करना चाहेंगे आप?
2: हाँ जरूर। मैंने कुछ संपादन किया वैश्विक रूप से व्यंग संग्रहों का, मैंने वैश्विक लेखकों को एकत्रित किया। मेरा परिदृश्य, मैंने बैकग्राउंड थोड़ा सा वैश्विक हो गया है क्योंकि बच्चे मेरे सब विदेश में हैं तीनों, तो उस वजह से जैसे मैंने एक मिली भगत यानी सामूहिक व्यंग संग्रह बहुत से निकले हैं, भारत से भी कई निकले हैं और बड़े बड़े निकले हैं, लेकिन पहला वैश्विक संग्रह अगर मैं कहूं तो मुझे बताने में गर्व होता है कि मिली भगत जैसा नाम से ही है, उस नाम से मैंने ये निकाला था। तो इसमें पूरे विश्व के कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, लंदन से जो व्यंगकार उस समय व्यंग लिख रहे थे उनके व्यंग, दुबई से, वो ले करके और उनका एक सामूहिक संग्रह निकाला था। तो इसका नाम मिली भगत है और उसका संपादन मैंने किया था। जो आपने बात कि मेरे व्यंग की किताबों की बात, तो राम भरोसे ये एक शीर्षक है, यानी जो भारतीय आम आदमी है वो किसी समय ऐसा लगता था कि जैसे वो राम भरोसे है, अंत्योदय, जो गांधी के अंत्योदय का आदमी है उसको जब हमने राम भरोसे एक प्रतीकात्मक नाम दिया। व्यंग में एक लक्षण शक्ति होती है, एक
1: मुश्किल भी होता है व्यंग्य लिखना, क्योंकि जो चुटीले व्यंग्य होते हैं, जब हरिशंकर परसाई के व्यंग्य को पढ़ने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि आप उस व्यंग्य को लिख कर गुदगुदा सकें या फिर करारा चोट कर सकें, दोनों विध। तो आपके लिए किस तरह की चुनौती रही?
2: व्यंग में मैंने बहुत सारे प्रयोग किए। उलट बांसी में हम किसी चीज़ की अतिशयोक्ति से इस तरह से बताते हैं कि उसको इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण बता देते हैं कि सामने वाला उसको संप्रेषित हो जाता है कि ये इसके विपरीत मैंने उसके हंसी उड़ा रहा है।
1: जी जी।
2: है ना। और एक प्रयोग होता है जिसमें हम किसी पे अवलंबन लेकर के, जैसे
1: किसी व्यक्ति विशेष को,
2: कोई हमने एक पात्र चयन किया। जैसे एक मेरा व्यंग है कि वोटिंग की लाइन में अर्जुन, तो अर्जुन को पात्र बना करके जैसे उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं युद्ध लड़ूं कि ना लड़ूं, तो उस तरह का हम किंकर्तव्य मूड हो जाते हैं कि हम इसको वोट दें कि उसको वोट दें, दोनों चेहरे तो एक से हैं।
1: जी जी,
2: कई बार ये स्थितियां होती हैं।
1: तो हम किंकर्तव्य विमोड नहीं हो सकते हैं। हम इस समय जानना चाहते हैं कि आप गाने भी सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो इस समय एक गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को। आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
2: चलिए ममता जी, आपने बहुत अच्छी फरमाइश की है। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये सुना जाए, क्योंकि लोग कुछ भी कहते रहेंगे, हमें अपना एक दृष्टि और एक ना लक्ष्य निर्धारित कर उस ओर बढ़ना होता है।
1: जी, अमर प्रेम फिल्म का गाना,
2: अमर प्रेम फिल्म का गाना है, किशोर कुमार की आवाज़ है, आनंद बख्शी जी ने इसे बहुत अच्छे शब्द दिए हैं, तो क्यों ना हम ये गाना
1: सुनते हैं, यही गीत।

0: विवेक रंजन जी, आपने लिखे भी हैं, नाटक लिखे हैं, व्यंग्य लिखे हैं और उपन्यास भी लिखा है, कहानियां भी, इसकी चर्चा हम करते रहेंगे। लेकिन हमें बताइए कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, एमटेक किया, बिजली विभाग में आप अभियंता के रूप में कार्यरत रहे, तो उसकी कहानी थोड़ी बताइए, कैसे वहां पहुंचे और कोई खास याद वहां से जुड़ी हुई है जो?
1: ममता जी, मैं इसके लिए कहूँगा कि आप बड़ी लकी हैं, क्योंकि आपकी अभिरुचि भी साहित्य में है और आप आकाशवाणी जैसे संस्थान में काम भी कर रहे हैं।
0: जी जी जी।
1: मैं इतना लकी नहीं था।
0: विरोधाभास रहा है।
1: विरोधाभास रहा मेरे जीवन में, क्योंकि भारतीय स्थितियों में अनेक लेखकों के साथ मैं जानता हूँ कि जो आजीविका के लिए कुछ और हैं और जिनको रुचि कुछ और है। तो मैं एक साहित्यिक परिवार से आता हूँ। मंडला में मेरे दादाजी जो थे उनके गीत प्रभात फेरियों में गाए जाते थे।
0: अच्छा, क्या
1: मेरे पिताजी स्वर्गीय प्रोफेसर चित्रभूषण श्रीवास्तव विदग्ध जी, उनकी 40 विभिन्न किताबें हैं जो आध्यात्मिक प्रसंगों की रचनाएं हैं। उन्होंने भगवत गीता, रघुवंश, मेघदूत जैसी रचनाओं के हिंदी काव्यानुवाद किए और उनको अनुवाद पर सर्वोच्च पुरस्कार भी मिला। तो मैं उससे था, मैंने जब हाई स्कूल में था तब तक हमारे यहाँ 11वीं कक्षा जो होती थी वो हायर सेकेंडरी होती थी, तो मैंने हायर सेकेंडरी तक मंडला की जिला पुस्तकालय और जो भी मंडला के जो सार्वजनिक पुस्तकालय थे उनके सारे साहित्यिक उपन्यास चार्ट डाले थे।
0: क्या बात है। तो उसमें पढ़ने का एक खास शौक हुआ करता था, दौर था पढ़ाई का,
1: बहुत दौर था, क्योंकि मनोरंजन के और साधन नहीं थे। रेडियो, अखबार, अखबार के साहित्यिक कॉलम वो लोग हम लोग पढ़ा करते थे, पत्रिकाएँ थी तो हम भाई बहन दौड़ते थे जब भी कोई नया पत्रिका का अंक आता
0: कौन पहले पढ़ेगा,
1: कौन पहले पढ़ेगा, तो ये जमाना था।
0: मनोहर श्याम जोशी का साहित्यिक ये साप्ताहिक हिंदुस्तान,
1: साप्ताहिक हिंदुस्तान,
0: तो इंतजार होता था धर्मयोग,
1: धर्मयोग और उससे भी पहले छोटे की बात करें तो पराग, नंदन, ये सब हम लोगों के बचपन में पढ़ पढ़ के वो संस्कार आए। तो हम बात कर रहे थे कि मंडला में जब हमारा साहित्यिक परिवार से था तो मैं पढ़ने में होशियार था ईश्वर की कृपा से। लक्ष्य निर्धारित हो तो हम सब अपने उसको उस दिशा में चल कर आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, तो डेफिनेटली इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना एक अच्छा व्यवसाय माना जाता।
0: इंजीनियरिंग पढ़ने का सपना आपने कैसे देखा, पहले ये बताइए कि कहाँ से बीज पड़ा, क्योंकि आप तो साहित्यिक रुचियों में
1: रुचि में था। बिल्कुल सही है आपका कहना, लेकिन गणित में मैं हमेशा अव्वल
0: अव्वल थे।
1: जी हाँ। तो जब मेरा 11th हुआ और मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हुआ तो मैंने सलाह की, मैं मंडला जैसी छोटी जगह, मंडला एक आदिवासी प्रमुख जिला है और कान्हा अंतर्राष्ट्रीय उद्यान जो वन्य अभयारण्य है उसके लिए जाना जाता है, तो वहाँ से था। तो मेरा NIT रायपुर में सिलेक्शन हो गया, तो मैंने रायपुर से BE किया। फिर उसके बाद BE करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया MSCT भोपाल से, और इस प्रकार इंजीनियरिंग में मैं निष्णात हुआ और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया विद्युत मंडल में, तो मैं वहीं से चीफ इंजीनियर बन के रिटायर हुआ। और आजकल की तरह नहीं कि उस समय, तो आजकल तो जब तक बच्चों की कंपनियों का नाम याद करते हैं हम तब तक वो कंपनी बदल लेते हैं।
0: तब आपने एक जगह नौकरी ज्वाइन की तो बस वहीं पे स्थायी रूप से, लेकिन विद्युत मंडल में, विद्युत विभाग में अभी भी बहुत सारे शहरों में बिजली की कटौती होती है, महानगरों को छोड़ दें, मुंबई में तो बिजली जाना मतलब एक खबर बन जाती है, लेकिन अभी भी देखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बिजली की कटौती होती है, तो ऐसी कभी कोई घटना की शिकायतों से भर दिया गया, कोई ऐसी घटना याद आती
1: है? सही कह रही हैं, लेकिन बिजली का परिदृश्य बहुत बदल चुका है ममता जी। मुझे ये बताने में खुशी है कि अब एक समय था कि जब उत्पादन कम था और मांग ज्यादा
0: थी,
1: खपत ज्यादा थी, अब हमारी मांग के अनुरूप काफ़ी बिजली बन रही है और बहुत सारी उसमें नवाचार भी हुए हैं। अब अलग कंपनियां हैं जो विद्युत बनाती हैं। भारत में बिजली बनाने के जो अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा मैं कि सबसे स्वच्छ बिजली बनती है पन बिजली, जहाँ पर पानी की जो स्थिति, जो ऊर्जा है उसको पानी को नीचे गिराकर गति ऊर्जा में बदला जाता है और उससे टरबाइन, मैंने बिजली बनाने का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि तांबे का कोई जो हमने फेराडे लॉ पढ़ा है कि बिजली तभी बनती है जब कोई उनमें बल अंतर होता है, तो वो कॉपर का पूरा कॉइल जब घूमता है किसी मैग्नेट के अंदर तो बिजली बनती है। अब उसको घुमाने का तरीका क्या हो सकता है, तो या तो भाप की शक्ति से घुमाया जाता है तो वो थर्मल बिजली कहलाती है, उसमें कोयला जलाया जाता है तो प्रदूषण होता है, चिमनियों से धुआं निकलता है। दूसरा होता है पनबिजली, जिसमें कि स्वच्छ पानी गिरता है लेकिन उसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बांध बनाया जाता है, पानी भरता है तो बहुत से गांव विस्थापित होते हैं, हर एक के अपनी समस्याएं भी हैं। और परमाणु बिजली होती है। तो मैं मंडला में पदस्थ था, तो मंडला जिले में एक चुटका परमाणु परियोजना नर्मदा नदी के बांध के किनारे, जो बरगी बांध है उसके जल भराव के क्षेत्र के किनारे प्रस्तावित है, तो उसके प्रारंभिक सर्वे से लेकर के और उस ज़मीन का, क्योंकि वहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर डिपार्टमेंट है उनकी मांग ये थी कि हमें फाउंडेशन की दृष्टि से ज़मीन अच्छी चाहिए, पर्याप्त पानी चाहिए, पानी का केमिकल एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए और वहाँ की आबादी कम होना चाहिए क्योंकि कभी कोई दुर्घटना हो तो इन सारी दृष्टियों से जो मंडला का क्षेत्र था वो सही पाया गया और उसके सर्वे वगैरह मैंने किए। तो एक ये बात है, कच्चे माल के रूप में पानी और ज़मीन यही दिया जाना था, तो ये वो प्रस्तावित है, अभी जब भी बनेगा तो वो भी परमाणु बिजली घर भी मध्य प्रदेश को मिलेगा।
0: जी बड़ी अच्छी जानकारी दी। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
1: जरूर।
0: कौन सा गाना?
1: एक बैजू बावरा 1952 में एक फिल्म आई थी ममता जी,
0: बहुत मशहूर,
1: मन तड़पत हरि दर्शन को, और इस गाने की खासियत पे हम चर्चा करना चाहेंगे।
0: जी जी।
1: एक धार्मिक सद्भाव की बात करें तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसको गाया था, नौशाद जी ने
0: संगीतबद्ध
1: किया था और शकील बदायूनी जी के शब्द हैं और गीत है मन तड़पत हरि दर्शन को। आज
0: तो ये
1: आज भी ये धुन पूरे हम सब के मंदिरों में बजती है और सब मानव के मन मंदिर में ये बजती रहे और सद्भाव हो देश में, ये मेरी कामना है।
0: क्या बात है। मेरे ख्याल से राग भैरवी पर आधारित ये गाना है।
1: क्या बात है, आपने उसका राग भी बता दिया ममता जी, आपकी तो खैर बात ही कुछ अलग है।
0: तो अब यही गाना सुनते हैं।
1: बिल्कुल।

0: ये जो गाना अभी हमने सुना, गाने के बाद हम चाहते हैं कि आप चूंकि बिजली विभाग में कार्यरत रहे हैं
1: जी हाँ।
0: और बिजली विभाग में जो कार्यरत होते हैं शिकायतें बहुत सारी मिलती हैं,
1: जी हाँ।
0: तो कोई ऐसी यादगार बात बताना चाहेंगे आपके पास शिकायतों की भरमार? आपके घर वालों ने भी कभी कोई शिकवा शिकायत की कि आप तो बिजली विभाग में काम करते हैं और हमारे घर पे बिजली गायब है,
1: ममता जी
0: तो ऐसी कोई
1: बहुत
0: बात है तो?
1: अच्छा सवाल किया आपने और इस सवाल के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: जी
1: मैं जब चीफ इंजीनियर था तो
0: हाँ।
1: मैं अपने जो लाइन स्टाफ था उसको ये कहा करता था कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, और उनको इस ढंग से मोटिवेट करता था। क्या होता है ममता जी कि किसी भी विभाग में जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो अपनी जवाबदारियां समझते हैं, लेकिन कई बार जो हमारे छोटे कर्मचारी हैं जिनका सीधा सामना आम नागरिकों से होता है, हम कहीं बैंक जाते हैं, किसी भी रेलवे स्टेशन में जाते हैं, तो जो विंडो क्लर्क होता है यदि उसका भाव आपसे बातचीत अच्छी है, उसमें संवेदनाएं हैं, उसमें मानवीय गुण हैं, उसमें नैसर्गिक एक समस्या को निपटाने की भावना है, तो जो कंज्यूमर होता है वो सेटिस्फाइड होकर निकलता है। तो वही बिजली विभाग की बात है कि जो हमारे लाइनमैन हैं, जो हमारे लोगों को बिजली कनेक्शन चाहिए होता है, लोगों को अपना बिल पटाना होता है, लोगों को बिजली सही ढंग से उनको अच्छी बिजली बराबर उसी उस पर वोल्टेज पे प्रॉपर मिलती
0: जी,
1: रहे
0: जी, जी।
1: ये उनकी उसके लिए पैसे देने को आज लोग तैयार हैं, लेकिन कई बार हमारी सेवाएं अगर नहीं होती तो वो तकनीकी सीमाएं जहाँ पर हैं वहाँ हैं, लेकिन जहाँ मानवीय सीमाएं हैं, जो हमारे व्यवहारिक सीमाएं हैं, उनको हम थोड़ा सा ज़्यादा काम करके थोड़ा सा वो कर, तो इसको मोटिवेट करना पड़ता है टीम भावना से। तो मैं अपने डिपार्टमेंट में इसीलिए जाना भी जाता था कि इस ढंग से हम लोगों को अपने मोटिवेट करते थे। और बिजली का परिदृश्य बहुत बदल गया, मेरी एक किताब भी है बिजली का बदलता परिदृश्य, क्योंकि आपको याद होगा कि एक समय था अंधेरा कायम रहे, मैंने लोग बोले कि बहुत बार बार खुशियाँ मनाने का मौका मिलता है एमपीबी की तरफ से, क्यों? क्योंकि बोले जितने बार बिजली जाती है उतने बार जब बिजली आती है तो लोग खुश हो जाते हैं कि वाह बिजली आ गई। तो हमने वो खुशी छीन ली है, अब लगातार मिलती है बिजली, लेकिन ये है कि कभी तकनीकी, क्योंकि आप जानती हैं कि इतना बड़ा नेटवर्क है भारत का, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं।
0: तो आपकी श्रीमती जी ने कभी कोई कंप्लेन की, शिकायत की कि नहीं?
1: हाँ, श्रीमती जी तो शिकायतों का पुलिंदा होती हैं।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं दीपावली में भी जब हम लोग देर रात घर में पूजा कर पाते थे, क्योंकि हमें पूरे शहर की बिजली का देखना होता था कि बराबर बिजली सप्लाई हो गई, सबके घरों में पूजा अच्छे से हो जाए, प्रकाश रहे, कहीं कोई त्रुटि आए तो हम उसे तुरंत निराकरण कर सकें, तो मैं पावर हाउस से देर रात लौटता था तब हम घर की पूजा करते।
0: जी जी।
1: तो ये मेरी अकेली समस्या नहीं है, ये पूरे किसी भी सिस्टम के पीछे जो पूरी एक टीम लगी होती है, जब यहाँ मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो यहाँ मैं पूरे सारे बिजली के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ, वे सब पूरा, जैसे हम जब सुरक्षा की बात करते हैं तो जो हमारा पुलिस बल है, जब हम अस्पतालों की बात करते हैं तो जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है, जब हम उनकी तरफ से बात करते हैं तो वो पूरी टीम लगी होती है तब कहीं जा करके।
0: बिल्कुल। और जब कभी जरा सी बिजली गुल होती है तो लोग शिकायतों की भरमार कर देते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि उस विभाग में भी कुछ बाध्यताएं होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, और कहीं कोई त्रुटि हुई तो पूरी टीम काम में लग जाती है। चलिए अब हम यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं?
1: तो हम सबको मुस्कुराहटें देना चाहते हैं
0: जी।
1: तो किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, ये 1959, ये
0: अनाड़ी फिल्म का गाना,
1: अनाड़ी फिल्म का, ये मेरी जन्म वर्ष है 1959।
0: अच्छा।
1: 28 जुलाई 59।
0: तो सुनते हैं ये
1: जी,
0: गाना
1: जी।

0: अनाड़ी फिल्म का ये गाना था। विवेक जी, हमें बताइए कि आपने नाटक लिखा है, व्यंग्य लिखा है, अन्य विधाओं पर भी लिखा है, तो तीनों विधाओं में से आपके लिए कौन सी विधा में लिखना आसान होता है और कौन सी विधा बहुत मुश्किल लगती है, और कोई रचना प्रक्रिया बताना चाहते हैं वो भी बताइए।
1: जरूर,
0: लिखते समय
1: व्यंग मेरी मूल विधा है
0: जी,
1: क्योंकि जब कहीं बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि हम सीधे किसी को कटाक्ष नहीं कर पाते, सीधे बात नहीं कह पाते, किसी से गाली गलौज नहीं कर पाते, तो अपने मन का फ्रस्ट्रेशन मैं कागजों पर उतार देता हूँ और उसे मैं व्यंग में अभिव्यक्त करने में ज़्यादा सहज और सरल समझता हूँ। कई बार क्या होता है कि विचार अपने हिसाब से विधाएं चुन लेते हैं
0: जी,
1: जो मैं कभी कभी कहता हूँ कि हर व्यक्ति कभी न कभी जीवन में कवि अवश्य होता है। युवा प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, मैं कभी जब बहुत सारे विचार मन में कौंधते हैं तो कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातें संप्रेषित करने की जो विधा है वो कविता है। आप भी रचनाकार हैं और आप इसे समझ सकती हैं
0: जी, जी।
1: क्योंकि कविता एक ऐसा शब्द चित्र बनाती है कि उसमें हर पढ़ने वाला अपने हिसाब से रंग भर सकता है और वह चित्र मुखरित हो जाता है उसके परिवेश के अनुरूप। तो कविताएं भी मैं करता हूँ। मेरा 19 पहला काव्य संग्रह आक्रोश नाम से आया था
0: जी।
1: तो उसमें भी गिरिजा कुमार माथुर जी आकाशवाणी में रहे हैं
0: जी, जी।
1: उनका एक वाक्य मुझे याद आता है, मैं कोट करना चाहूँगा। उन्होंने लिखा था कि मुझे युवाओं के आक्रोश भरे स्वर बड़े अच्छे लगते हैं।
0: क्या बात है।
1: तो मेरी किताब का शीर्षक ही है आक्रोश, और ये तार सप्तक अर्धशती समारोह भोपाल में हुआ था तो उसमें ये विमोचित हुआ था और ये मेरी पहली किताब थी
0: जी। अगर कुछ पंक्तियां याद हो तो आप सुनाना चाहें सुनाइए, या किसी अन्य कविता संग्रह से कोई कविता याद हो तो सुनाइए।
1: हाँ जरूर, मैं आक्रोश की पहली कविता सुना देता हूँ, छोटी सी कविता है। शीर्षक है निर्वस्त्र। वह निर्वस्त्र ही आया था इस दुनिया में और तुम भी निर्वस्त्र ही आए थे। वह निर्वस्त्र ही आया था इस दुनिया में और तुम भी निर्वस्त्र ही आए थे। ये और बात है कि तुम्हें नर्सिंग होम में ही झक सफ़ेद तौलिए में लपेट दिया गया और वह अगले 7-8 बरस नंगा ही घूमता रहा गांव की गलियों में।
0: क्या बात है।
1: और वह अगले 7-8 बरस नंगा ही घूमता रहा गांव की धूल भरी सड़कों पर। जब भी तुम्हारा उससे सामना हुआ तुम्हें छी गंदा लड़का कहकर उसका परिचय दिया गया। और आज जब उसके मेहनतकश हाथों ने सी ली है इज्जत की छोटी सी टोपी और एक लंगोटी, जब आज उसके मेहनतकश हाथों ने सी ली है इज्जत की एक छोटी सी टोपी और एक लंगोटी, तो तुमने उसे अपना फटा पुराना पतलून देकर कपड़ों में भी कर दिया है एक बार फिर से निर्वस्त्र।
0: क्या बात है।
1: तो ये जनवादी नेचर की कविता थी।
0: हाँ, तो यहाँ पर कोई आपकी व्यंग्य रचना की कुछ लाइनें अगर याद है तो आप सुनाएं प्लीज।
1: जरूर ममता जी, मैं एक व्यंग का अंश छोटा सा सुनाना चाहूंगा। विसंगति ये है कि जब लेखक का नाम हो जाता है तो वो चल निकलता है, और उससे पहले जैसे निराला जी ने भी एक बार कहा था कि जब उनका नाम हो गया और रचनाएं छपने लगी तो उन्होंने वो रचनाएं पुनः प्रेषित कर दी जो कभी वापस आ गई थी शुरू के दिनों की।
0: जी जी।
1: ये उनकी जीवनी में मैंने पढ़ा हुआ है।
0: बिल्कुल।
1: तो उसी तरह का है कि विसंगति है नाम का महत्व, और तो ये जो रचना का शीर्षक है छींक का महाकाव्य, उसका छोटा सा अंश पढ़ता हूँ मैं। परम आदरणीय साहित्यकार श्री विभूति नारायण आगाध जी की 3 महीने से एक गंभीर कविता लिख रहे थे पर शीर्षक ही नहीं सूझ रहा था। तभी एक दिन अचानक उन्हें छींक आई, आंखी छींक इतनी जोरदार थी कि कागज पर स्याही का एक बिंदु बन गया और उसके नीचे अनजाने में ही चू जैसा कुछ लिख गया। आगाध जी उसे काटने ही वाले थे कि उनकी वरिष्ठता जाग उठी। उन्होंने सोचा मैं आगाध हूँ, मेरे अवचेतन से निकला कोई भी शब्द साधारण कैसे हो सकता है। उन्होंने कागज पर 3 शब्द और जोड़ दिए, धूप की किरण और चू। उसी शाम एक प्रतिष्ठित पत्रिका के संपादक जी नई रचना लेने उनके पास पहुंचे और कागज पढ़ते ही उनकी आंखें चमक उठी। अद्भुत, इस चू में पूरा ब्रह्मांड बोल रहा है अगाध जी, आपने आधुनिक मनुष्य की छटपटाहट को पकड़ लिया है। अगाध जी ने मन ही मन सोचा कि यह तो सर्दी जुकाम का कमाल था, लेकिन गंभीरता चेहरे पर लाते हुए बोले, इसे पाने के लिए चेतना को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाना पड़ा।
0: क्या बात है।
1: रचना मुख्य पृष्ठ पर छपी और फिर आलोचना जगत में तूफान मच गया। मार्क्सवादी आलोचक ने लिखा कि चूं शोषित वर्ग का विद्रोह है। मनोविश्लेषकों ने इसे दमित अहम की चीख बताया। अस्तित्ववादियों ने इसे जीवन के निस्सारता का सर्वोच्च उदाहरण बताया। एक युवा आलोचक ने तो यहाँ तक लिख दिया कि कबीर के अनहद नाद के बाद हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा नाद यही चूं नाद है। सोशल मीडिया पर चूं ट्रेंड करने लगा, लोग बिना समझे उसकी प्रशंसा करने लगे। तो आशा यह है कि जब लेखक का नाम हो जाता है तो उसकी रचनाएं चल निकलती हैं।
0: जी, क्या बात है, बढ़िया आपने रचना सुनाई, व्यंग्य रचना। और अब एक गाना सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा गाना सुनवाए?
1: ये सुना जाए कि जिंदगी प्यार का गीत है, सौतन से।
0: जी, सौतन फिल्म का गाना है, सुनते हैं यही गाना।

0: विवेक रंजन जी, व्यंग्य रचनाओं पर आपकी बात हुई, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हिंदी साहित्य, समकालीन साहित्य में, समाज में किस तरह के सकारात्मक बदलाव आप महसूस करते हैं?
1: बहुत सारे सकारात्मक बदलाव ममता जी हो रहे हैं। स्त्री विमर्श पर आजकल बड़ा चर्चा है और साहित्य का बहुत बड़ा हिस्सा जो तीसरा जेंडर है उस पर भी बहुत सारी रचनाएं आ रही हैं।
0: जी जी।
1: और कहानियों ने भी यथार्थवाद को पकड़ा है।
0: जी।
1: कहानियां अब उस ढंग की नहीं रही कि जो एक आदर्श ही प्रस्तुत करती थी, अब यथार्थ को लेकर के, यथार्थ नायक जो जिस ढंग का, जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, वो सारी चीजें कहानियों में देखने पढ़ने मिल रही हैं।
0: तो आपको क्या लगता है, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे कथाकार जिनको नहीं जाना जाता है तो वो भी चर्चित हो जाते हैं, तो सोशल मीडिया ने क्या सृजन कार्य को कम किया है या बढ़ावा दिया है? मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ना लिखना लोग कम कर रहे हैं या ज्यादा, आपके नजरिए से क्या है?
1: सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा हथियार हमें दिया है, क्योंकि पहले मुझे याद है ममता जी, आपको भी याद होगा कि हम लोग जब रचनाएं किसी पत्रिका के लिए भेजा करते थे तो साथ में एक पता लिखा, टिकट लगा, लिफाफा रखना होगा।
0: जी जी।
1: और मुझे याद है कि तब हम राइस पेपर पे कार्बन लगा करके मैं लिखता था डॉट पेन से,
0: क्या बात है,
1: नीचे कांच रख करके। मैंने वो युग जिया है और भेजी है रचनाएं उस ढंग से, और हम डालते थे डाक में वो लिफाफे और फिर इंतजार करते थे कि अब मैंने रचना की, या तो स्वीकृति आएगी या अस्वीकृति आएगी और मेरा हाथ का पता लिखा लिफाफा लौट के आएगा। तो एक वो समय
0: से इंतजार होता
1: था। जी हाँ, ये एक समय था। और आज उसका नुकसान भी कहें और फायदा भी कहें, नुकसान ये है कि असंपादित रचनाएं बेहिसाब इधर मन में आया, और स्व संपादन का युग है, हमने बटन दबाया और फेसबुक के जरिए, मैंने ब्लॉगिंग 2005 से शुरू की थी,
0: जी,
1: जब हिंदी ब्लॉगिंग शुरू हुई तो मेरे ब्लॉग्स बहुत पढ़े जाते थे और उन पे हिट्स मिलते थे। आर्कुट का जमाना था, आप सब कुछ टर्न हो के,
0: जी हाँ, एक समय था, एक समय बहुत था,
1: जी हाँ, तो उसमें भी मैं था, फिर ब्लॉग में आया, फिर फेसबुक आई, फेसबुक में आ गया। तो इन सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका ये लाभ तो मिलता है कि रचनाकार के मन में जो भी भाव आए, आप सहमत होंगी कि वो लिखता है और उसको संपादक की कोई गरज नहीं होती, वो खुद लिख करके खुद उसे संप्रेषित कर देता है। लेकिन उसका जो साहित्य की दृष्टि से दुष्परिणाम की अगर बात करें तो असंपादित रचनाएं जा रही हैं।
0: जी जी।
1: संपादन का एक अलग महत्व होता है। संपादक वह प्रहरी होता है जो पाठक और लेखक के बीच कहीं कोई एक ऐसा कर्टन लगाता है कि उसे बड़े तरीके से प्रस्तुत करता है।
0: एक पुल का काम
1: पुल करते का काम करता
0: कि
1: है। हाँ।
0: अगर पुल अच्छा है, मजबूत है, तो निश्चित रूप से
1: नहीं, उससे परिष्कार भी
0: पार जा सकते,
1: परिष्कार भी होता है। मैं तो चूंकि घर में मैंने, मेरी वाइफ मेरी पहली श्रोता है हमेशा, जब मैं लिखता हूँ तो उसे पकड़ के जबरदस्ती बिठा के सुनाता हूँ, और वो बहुत से परिष्कार रचना में होता ही है।
0: तो क्या प्रतिक्रिया देती है, अच्छी बुरी,
1: सुधार के बिंदु बताती है। वो भी एक साहित्यिक परिवार से है, उसके पिताजी ने, वो स्वतंत्र लेखिका भी है और महिला पत्रिकाओं में उसकी रचनाएं छपती हैं। तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस पर क्या लिखा जाना चाहिए, क्या कौन सी बात ऐसी है जो संप्रेषणीय रचना की दृष्टि से हमने लिख ली, लेकिन सामाजिकता के मर्यादा की दृष्टि से, क्योंकि साहित्य में स जुटा हुआ है, सबका हित
0: जी।
1: तो जो कुछ हम, जब जब पुरस्कार मिल जाता है किसी को, कोई रचनाकार कुछ लिखता है, तो हम समाज के प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं, क्योंकि हम रहे ना रहे साहित्य रहेगा।
0: जी बिल्कुल, किताब रहेगी,
1: किताब रहेगी, रचनाएं रहेंगी। तो ये जो आपने सोशल मीडिया की बात की थी तो उसमें ये कमी मुझे लगती है, लेकिन उसका लाभ यही है कि नंबर ऑफ लेखक बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अब विदेशियों की बात करें तो विदेशों में बहुत सारे बच्चे हमारे युवा आज गए, हर तीसरे घर से कोई ना कोई किसी विदेश में है, तो वो उनके साथ उनके मम्मी पापा गए। अब उनके मम्मी पापा वहाँ क्या काम करें, फ्री हैं, तो बहुत से जो महिलाएं हैं, जब वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई, उन्होंने विदेश में लेखन को अपना अभिरुचि बनाई, और उसके कारण नए लेखक साहित्य जगत को मिले, और प्रवासी लेखकों का एक बड़ा संसार है। ममता जी,
0: एक उनकी बाकायदा दुनिया है उनका, और एक बहुत सारी पत्रिकाएं हैं।
1: अच्छा, ईश्वर की कृपा से वहां पर रहते हुए संपन्नता के कारण वो उनकी किताबें फिर भारत से ही छपती हैं।
0: जी जी।
1: और अब किताबें भी आप ये देखिए कि फिजिकल किताबें तो एक समय था कि हमारे पिताजी की किताबें 1000 का संस्करण छपता था, आज आप भी लेखिका हैं आप जानती हैं कि 200 प्रतियां यदि एक संस्करण में छप रही हैं तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो ये परिवर्तन हुए हैं
0: जी। प्रवासी साहित्य की बात आपने की, तो आप खुद विदेशों में गए हैं, आपने जिक्र भी किया कि यूएस और दुबई और कई जगह पर गए हैं, तो प्रवासी साहित्यकारों उनकी दुनिया कैसी है,
1: उनकी
0: फायदे नुकसान?
1: उनकी दुनिया को हिंदी एक मंच पर जोड़ने का बड़ा काम कर रही है।
0: जी।
1: मैं यूएस में गया था तो वहाँ काउंसलेट में मुझे बुलाया गया था और वहाँ पर हिंदी दिवस का आयोजन था, तो मैंने लिखा कि रचना में कि हिंदी जो है वो हमें एक सूत्र में गर्व से जुड़ने का आपस में एक माध्यम बनती है। हिंदी एक फेविकोल की तरह काम करती है जो बहुत सारे भारतीय विदेश में हैं उनको एक मंच पर लाने का काम हिंदी का कर रही है। तो इस तरह से प्रवासी साहित्यकार बहुत सारा अच्छा लेखन कर रहे हैं और उनके संकलन भी आ रहे हैं और छप रहे हैं, चर्चा में हैं।
0: अभी मैं विवेक रंजन जी, आपने नाटक भी लिखे हैं?
1: जी हाँ,
0: नाटक भी था
1: जी।
0: तो क्या होता है, आपकी रचना प्रक्रिया क्या होती है, उसके पात्र कहाँ से लाते हैं और संवाद कैसे गढ़ते हैं, उसके बारे में बताइए।
1: मैं ममता जी सायास बहुत कम लिखता हूँ, सायास मतलब कोई ज़बरदस्ती कभी नहीं लिखता मैं, जो स्वतः कभी मैंने वैचारिक रूप से अंदर उथल पुथल जब विचारों की चलती रहती है तो वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर परिपक्व होती रहती है, मेरी रचना प्रक्रिया ये है। और किसी दिन सुबह 4 बजे नींद खुलती है और फिर मैं सुबह के समय में 2-3 घंटे में रचना पूरी कर लेता हूँ। तो इस ढंग से मैंने कई नाटक लिखे और हर नाटक का, हर कविता का, हर व्यंग्य का मेरा एक भाव है। और मैं संदेश भी ये मित्रों को देना चाहता हूँ, रचनाकारों को, युवा रचनाकारों को, कि हम जो कुछ भी लिखें उसका एक हमारा मंतव्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। हाँ, लोग पढ़ें और उससे कुछ सकारात्मकता समाज में जाए। केवल नाम की गरज से लिखना या किसी के कहने पर कुछ लिख देना वो नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है।
0: जी। तो क्या होता है, फिक्शन लिखना पसंद करते हैं या किसी यथार्थ परक?
1: हाँ, मैं जैसे जब कोई व्यंग जब लिखता हूँ तो पीड़ा होती है किसी बात को लेकर के, बड़ा मन व्यथित होता है कि यार ये क्या विसंगति है, तो उसको फिर व्यंग में अभिव्यक्त कर देता हूँ। कोई दृश्य कभी बड़ा मनोरम लगता है, कोई बड़ा अच्छा लगता है, तो उसमें बहुत से रंग भरने की कोशिश होती है, तो शब्द चित्र बनते हैं, तो मैं कविता लिख देता हूँ। जैसे मैंने अपनी जब काम वाली का जीवन देखा, मेरा कहना यह है ममता जी कि हर व्यक्ति अपने आप में एक उपन्यास है, चलता फिरता उपन्यास है। जो मेरे घर में काम करने वाली है उसकी पीड़ा जब मैंने पास से देखी, समझी, कितनी मेहनत तो सुबह से कहां से आकर के करती है हमारे लिए अपना सर्व, मैंने फिजिकल मेहनत, जब हम विदेशों में जाते हैं देखते हैं कि खुद फिजिकल मेहनत करना पड़ती है, जो यहाँ पे हाउस हेल्प समय उपलब्ध कराती
0: है, सहायिकाएं होती हैं, आपको बहुत मदद मिलती है।
1: जी हाँ, तो फिर उस पर मैंने एक कहानी लिखी थी। अच्छा। तो इस तरह से मैंने कि उसके घर में जब खुशियां नहीं मिल रही थी उसे, उसका हस्बैंड उसको पिटाई करता था, तो उसने अपनी खुशियां हमारी खुशियों में ढूंढ ली। मेरे बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो खुश होकर के वीडियो कॉल पे उनसे बात करती, तो ये एक को जन्म देता है। तो नाटक के लिए जब कोई, जैसे अब ये मेरे जो मुझे 2012 में भी साहित्य एकेडमी का नाटक के लिए ही पुरस्कार मिला था, तो वो हिंदुस्तान हमारा, तो उसमें जैसे DPS लखनऊ में किसी ने मुझसे फेसबुक के जरिए आमंत्रित किया कि हमारे स्कूल के लिए कोई नाटक लिखिए, तो मैंने फिर हिंदुस्तान हमारा देशभक्ति का एक नाटक बच्चों के लिए लिखा था। तो इस तरह से रचना प्रक्रिया चलती है।
0: तो ये तो हो गई, आपने कहा कि हम घर में सहायिका काम कर रही, वहां से उसके दर्द को साझा करते हैं, लेकिन एक कवि हृदय होता है, अमूमन कवियों की कविताओं की शुरुआत प्रेम कविता से होती है, और आपने अपने श्रीमती जी का जिक्र किया दो बार, तो उनके लिए भी कोई कविता लिखी है, अपनी पत्नी के लिए कोई कविता लिखी है? तो
1: उनके लिए तो जरूर लिखी है, मगर वो प्रेम पत्रों में बंद है। आज मैं आपको कुछ पंक्तियां अपने श्रोताओं को सुनाना चाहता हूँ कि अच्छा लगता है, शीर्षक है। भाव काव्य के मंथन लौट करते घर लौटें तो अच्छा लगता है।
0: क्या बात है।
1: जब हम किसी कवि सम्मेलन में जाते हैं तो वहाँ से कुछ अगर दो पंक्तियाँ गुनगुनाते हुए लौटें तो अच्छा लगता है। ये भाव हैं
0: जी,
1: है ना। भाव काव्य के मंथन करते घर लौटें तो अच्छा लगता है, शब्द तुम्हारे कुछ जो लेकर घर लौटें तो अच्छा
0: लगता है। क्या बात है।
1: कौन किसे कुछ देता यूं ही, कौन किसे सुनता है आज, छंद सुने और गाते गाते घर लौटें तो अच्छा
0: लगता है।
1: मेरी पीड़ा तुम क्या जानो, तेरी पीड़ा पर गुमसुम हम, मेरी पीड़ा तुम क्या जानो, तेरी पीड़ा पर गुमसुम हम, पर पीड़ा पर लिखो पढ़ो और सुनो अगर तो अच्छा लगता है।
0: क्या बात है।
1: पर पीड़ा पर लिखो पढ़ो और सुनो अगर तो अच्छा लगता है। एक दूसरे के बोलों पर मुग्ध तालियां उन्हें मुबारक। सोशल मीडिया पर ये देखने में मिलता है लाइक और डिसलाइक, मैंने बस एक दूसरे
0: लाइक कमेंट
1: लाइक कमेंट। एक दूसरे के बोलों पर मुग्ध तालियां उन्हें मुबारक, गीत गजल सुन द्रवित हृदय जब रो देता तो अच्छा लगता है।
0: वाह।
1: कविताओं की विषय वस्तु तो कवि को ही तय करनी है, शाश्वत भावों की अभिव्यक्ति सुन पर
0: अच्छा लगता है। वाह।
1: रचना पढ़े बिना समझे बिन नाम देख दे रहे बधाई, आलोचक पाठक की पाती पढ़कर लेकिन
0: अच्छा लगता है। वाह।
1: कई डायरियां ढेरों कागज रंग डाले हैं लिख लिख कर।
0: क्या बात है।
1: कई डायरियां ढेरों कागज रंग डाले हैं लिख लिख कर, पढ़ने मिलता लिखा स्वयं का छपा हुआ जो
0: अच्छा लगता है। क्या बात है। बहुत बढ़िया।
1: बहुत पढ़ा और लिखा बहुत, कई जलसों में शिरकत की, बैठे घंटों श्रोता बनकर अब मंचों पर जब बैठो तो
0: अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया।
1: शब्द तुम्हारे कुछ लेकर के घर लौटो तो
0: अच्छा लगता है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, कौन सा गाना सुनवाएं?
1: चलिए एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे। लता मंगेशकर का गाना है रेशमा और शेरा फिल्म से, तू चंदा मैं चांदनी।
0: बहुत ही बेहतरीन गाना है।

0: तो विवेक जी, ये तो कविता आपने सुनाई,
1: जी
0: अब नाटक पर फिर से आते हैं।
1: जी
0: नाटक जो लिखे हैं, तो
1: जी
0: ये इच्छा होती है कि नाटक रंगमंच पर आए, तो क्या
1: जी
0: आपके रंगमंच पर भी नाटक मंचित किए गए हैं?
1: जी हाँ, जैसा मैंने बताया कि वो हिंदोस्तान हमारा के कुछ नाटक बाल नाटक थे, तो वो DPS स्कूल लखनऊ में, ज्ञानदीप मंडला में
0: जी
1: मंचित हुए, और स्कूलों में कई जगह वो बाल नाटक मंचित हुए। इसी तरह से जो अभी जलनाद है वो अमेरिका में एक
0: मंचन
1: जगह,
0: हुआ।
1: हाँ, मैं मंचन हो रहा है उसके अंशों का, और NSD को भी भेजा गया है ये नाटक। तो देखिए, जैसा बोला जाता है ना कि गीतों को छू ले कोई, मैंने अगर कोई गीत गा ले तो गीत अमर हो जाता है,
0: होठों से छू लो तुम मेरा गीत,
1: और
0: अमर
1: गीत
0: कर
1: अमर कर दो।
0: दो।
1: और उसी तरह से नाटक के मामले में कि नाटक दृश्य और श्रव्य विधा है
0: जी
1: और उसकी संप्रेषण क्षमता बहुत ज़्यादा है। यानी कहानी को जब हम पढ़ेंगे तब हमारे मन में हमारे परिवेश के हिसाब से चित्र बनेंगे, लेकिन नाटक जब हम देखते हैं
0: जी
1: तो उसका सीधा असर, इम्पैक्ट हमारे दिमाग पर दोनों दृष्टि से पड़ता है, संवाद डिलीवरी से भी और जो कुछ हम आंखों से देखते हैं।
0: जी
1: तो नाटक का महत्व ही उससे है। और जिस ढंग से हवा महल में जो झलकियां आप लोग सुनाते हैं हमारे श्रोताओं को, तो उसमें आवाज़ की ही नाटकीयता से सारे भाव प्रेषित होते हैं।
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: मेरी झलकियां, मैं कामना करता हूं कि विविध भारती से भी आए,
0: जी
1: और
0: बिल्कुल
1: इस ढंग का कुछ प्रयास मेरा है।
0: जी जी जरूर, आपकी कलम में ताकत है तो फिर ये जरूर होगा। हमें अब बताइए कि आपके लेखन को किन साहित्यकारों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? मतलब आपने पढ़ा है बचपन से इतने
1: जी
0: सारे साहित्यकारों को,
1: जी
0: तो किन साहित्यकारों से आप प्रभावित रहे?
1: मूलतः मैं परसाई जी से प्रभावित हूँ, अपने आप को परसाई जी से प्रभावित मानता हूँ, क्योंकि व्यंग की जो प्रारंभिक मेरी भावनाएं जागी वो उनके स्तंभों को पढ़ने से हुई, और फिर आगे जैसे जैसे मैं और गहराई से पढ़ता गया तो निश्चित ही जोशी जी ने, शरद जोशी जी के व्यंग, त्यागी जी के व्यंग, उनसे भी मैं प्रभावित रहा हूँ।
0: जी, और इन दिनों क्या लिख रहे हैं आप?
1: इन दिनों मैं कहानी पर काम कर रहा हूँ और ललित निबंध पर काम कर रहा हूँ,
0: जी
1: क्योंकि ललित निबंध में साहित्य अमृत एक पत्रिका है, तो उसमें बड़े अच्छे ढंग से ललित निबंध बहुत पढ़ने मिलते थे। ललित निबंध विधा कम लिखी जा रही है, संस्मरण विधा कम लिखी जा रही है,
0: विस्मृत हो रही है एक तरह
1: विस्मृत
0: से
1: हो रही है,
0: आजकल।
1: रिपोर्टाज बहुत कम लिखे जा रहे हैं। तो मेरा ये है कि चूंकि बहुआयामी बहुविध व्यक्तित्व अपना मेरा ऐसा कुछ बन गया है, तो पहले उस विधा की रचनाएं बहुत सारी पढ़ता हूँ, श्रेष्ठ रचनाएं पढ़ता हूँ, और फिर वो ईश्वर ने भाव दिए हैं, शब्द दिए हैं, अभिव्यक्ति की क्षमता दी है, तो उसमें अभिव्यक्त करता हूँ।
0: जी विवेक रंजन जी, बड़ी ही रोचक बातें आपने कहीं साझा की हमारे श्रोताओं के साथ। विविध भारती परिवार की ओर से और श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ। नमस्कार।
1: धन्यवाद ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती परिवार को कि ये आज आपने मुझे अवसर दिया, और तमाम श्रोताओं को कि आपने मुझे सुना और आप मुझे पसंद किया नहीं किया ये तो आपके पत्रों से मालूम होगा।

0: वेद भारती को आपके फीडबैक का जरूर इंतजार रहेगा।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
0: थैंक यू ममता जी।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लेखक और कवि विवेक रंजन श्रीवास्तव से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जुबैर खान। और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: आज के

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। कार्यक्रम रंग तरंग बस कुछ ही पलों में।

0: रंग तरंग
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग। रंग तरंग कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

रफी और साथियों को आप सुन रहे थे अमर अकबर एंथनी असल में आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: बेगम अख्तर को अभी आपने सुना।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम रंग तरंग।

0: आप सुन रहे थे बेदर्दी से प्यार का, इस एल्बम का गीत जुबिन नौटियाल की आवाज में। मनोज मुंतशिर के बोल थे, मीत ब्रदर्स का संगीत था।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
3: जी।
2: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
5: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
6: और आ गया।
5: एक और आ गया।
7: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
8: अरे ललन मिया, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए।

फिल्म बवंडर का ये गीत आपने सुना ऋचा शर्मा की आवाज में, हरिराम आचार्य की रचना थी, विश्वमोहन भट्ट का संगीत था।

0: भूपेंद्र की आवाज़ में फिल्म बाजार की यह गज़ल आप सुन रहे थे। बशर नवाज़ की लिखी यह गज़ल थी, खयाम की तर्ज थी।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये एल्बम थी याद पिया की आने लगी। फाल्गुनी पाठक की आवाज में समीर की रचना आपने सुनी। ललित का संगीत था।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

तर्ज और आवाज थी भूपेन हजारिका की गुलजार की रचना, आप सुन रहे थे फिल्म रुदाली से। तेरी कसम फिल्म का ये गीत है अमित कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
2: जी।
1: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आफलोम केंद्र है। दोस्तों, इस समय स्टूडियो के घड़ी में दिन के 12 बजने ही वाले हैं। आइए आप सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: प्रत्येक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमरीकी डॉलर है। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है, जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, सुरक्षा और रक्षा साझेदारी को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ ने एक दूसरे के साथ इस विश्वास को विकसित किया है और अब इसे व्यापार तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के ब्रसल्स में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ एसोचैम और अन्य क्षेत्रीय संघ के सदस्यों वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय उद्योग के लिए सृजित होने वाले नए अवसरों पर चर्चा की गई। इस समझौते से भारतीय व्यवसायों, लघु और मध्यम उद्यम तथा आम जनता को होने वाले फायदों पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज सुबह के सत्र में 0.4% की बढ़त आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 286 अंक बढ़कर 77,471 पर और निफ्टी 75 अंक बढ़कर 24,154 पर पहुंच गया। पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे दोस्तों, ये आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। दोस्तों आइए फिर से सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

आनंद बख्शी की रचना, लता मंगेशकर, इला अरुण की आवाजें, फिल्म लम्हे का ये गीत आपने सुना। बेताब फिल्म का ये गीत आपको सुनवाते हैं आवाजें लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार की, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज़।

फिल्म बेताब में लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ें आपने सुनी। इसके पहले श्रोताओं, हमने आपको लम्हे फिल्म का गीत सुनवाया था। उस गीत में तर्ज थी शिवहरी की। फिल्म मोहरा, उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत विजू शाह का।

0: रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
2: जी।
1: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।

0: पिलाई दी तर्ज अनजान के बोल किशोर कुमार आशा भोसले के युगल सुरों में नमक हलाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

लता मंगेशकर की आवाज़ में वर्मा मलिक का लिखा गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। फिल्म महान। किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजें हैं, अनजान की रचना आर डी बर्मन की तर्ज।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और सखियों को आप सुन रहे थे फिल्म चिराग में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। यादों की महफिल ये कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हफलम केंद्र है। दोस्तों, इस समय स्टूडियो के घड़ी में दिन के 1 बजने ही वाले हैं। आइए आप सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान सहित आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है।
1: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मुख्य धारा से कटा हुआ महसूस न करे। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रूपये प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात कर बढ़ाकर 14.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रूपये प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरों मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के ब्रसल्स में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ SOCHM और अन्य क्षेत्रीय संघ के सदस्यों वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय उद्योग के लिए सृजित होने वाले नए अवसरों पर चर्चा की गई। पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दोस्तों, हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। दोस्तों, आइए अब फिर से सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

खूबसूरत अभिनेत्री साधना और राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया ये गीत था मोहम्मद रफी की आवाज में, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। आपको फिल्म बतानी है श्रोताओं, और एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि यादों की सीढ़ियां कभी पुरानी नहीं होती, आज की इबारत बचपन अपने घर मासूम शरारतों और बीते सुनहरे लम्हों की ऐसी सैर कराती है जहां वक्त ठहर सा जाता है और मन फिर से उन्हीं रंगों में खो जाता है जिनसे जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर बनाई थी, और कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़कर देखकर हमें बचपन के दिन याद आ गए हैं, और एक और हमारी श्रोता लिखती हैं कि दिल का भंवर करे पुकार दम भर जो उधर मुंह फेरे, और एक शेर सुनाता हूँ, और बहुत सारे गीत इन्होंने अपने पसंद के लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश में जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का जिक्र है, बाल्यकाल से यौवन तक का सफर और ढलती उम्र को उपमा के साथ दर्शाया गया है। स्मृतियों के वातायन में वातायन जब खुलते हैं तो जीवन का प्रथम पहर एक सुरम्य चित्रपटी की भांति उभर आता है। बचपन जीवन की वो भोर है जहां धूप भी मखमली लगती है, वह एक ऐसा कालखंड है जब समय तितलियों के पंखों पर बैठकर उड़ता है, जैसे कि कदम यौवन की दहलीज पर पड़ता है तो जीवन का आसान चटक रंगों से भर जाता है। आकांक्षाओं का उतुंग शिखर एक चेतना का एक नया विस्तार छूने की बात होती है। बचपन हमें सहजता सिखाता है तो यौवन हमें संघर्षों से टकराने का साहस देता है। आज जब जीवन की ढलती शाम में हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि वो बचपन की नादानी और यौवन की रवानी ही थी जिसने हमारे भीतर के मनुष्य को जीवित रखा है। एक और श्रोता ने लिखा है, इन पुरानी सीढ़ियों पर आज भी कदमों के वो अनगिनत निशान बाकी हैं जो कभी दौड़ भाग कर छुपने छुपाने की गवाही देते हैं। वक्त की धूप और छांव इन पर बैठकर ही तो गुजारी है। जब भी इन घुमावदार दंडों पर चढ़ती हूँ तो लगता है जैसे वक्त का पहिया उल्टा घूम गया हो। चौखट से झांकती वो माँ की ममता और आंगन में गूंजती वो बचपन की किलकारियां आज भी इन दीवारों में गूंजती हैं। इन सीढ़ियों की हर एक दरार में जैसे मेरा बीता हुआ कल महफूज है जहाँ उतरने का तो कभी ख्याल ही नहीं आया, और बस इन्हीं यादों के सहारे ऊपर आसमान छूने को चाहत रही। आप ये बताएं श्रोताओं कि जब बीते दिनों की बातें हम करते हैं, जब सीढ़ियों की बातें करते हैं, जब उन घरों की बातें करते हैं जिनकी यादें जो हैं वो धुंधलके की तरह हो चुकी हैं, तो ऐसे घरों में वो कौन था जो आपको सबसे प्यारा लगता था और किसकी यादें सीढ़ी से वाबस्ता हैं आपको बतानी है।

ये कौन से अभिनेता हैं श्रोताओ जो पियानो पर नजर आते हैं? मुकेश की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे देवर फिल्म से। आनंद बख्शी के बोल थे रोशन की तरह से और हमारे श्रोताओं ने जो पहले वाला गीत है उसे पहचाना है। मेरे महबूब फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर इबारत लिखी है आपने और हम अपने बचपन को याद कर रहे हैं जिसे हम बहुत दूर छोड़ आए हैं। अब तो बस यादें ही हैं। गाँव में जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो हम पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक खेलते और जब मन करता तो गांव तालाब में डुबकी लगाते, बस यही काम रहता था उन दिनों। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज बचपन नादानियां और शरारतों पर आधारित गीत सुनवाए जाएंगे। एक और श्रोता ने लिखा है, चंदन सी चढ़ती उतरती धूप, जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख धूप छांव की को परिभाषित करती है। चंदन शीतलता और महक का प्रतीक है जो हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में चाहे सुख हो या फिर दुख, छांव हो या धूप, यदि आपने अपने मन को शांत और सुगंधित रखा जाए तो हर परिस्थिति में आनंद प्राप्त किया जा सकता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज का पैराग्राफ समय की भागदौड़ में व्यस्त युवा लड़कियों की जिंदगी को बयान करता है। जिंदगी की आपाधापी में कब बचपन और उसके बाद किशोरावस्था निकल जाती है पता ही नहीं चला। आज फ्लैशबैक में वो गुजरा हुआ समय याद आ रहा है। एक और श्रोता लिखते हैं, वक्त पीछे रह गया और हम आगे, ये वाक्यांश जीवन से जुड़े हैं, गहरे दार्शनिक पहलू को बयां कर रहा है। बीतते हुए वक्त के साथ बचपन जैसे जैसे पीछे छूटता है, इस पल में हम जो भी कर गुजरते हैं उसकी यादें पल पल हमारे साथ जुड़ती जाती हैं। बचपन के खेल, संग साथी और बेखुशगवार क्षण या कोई दुख वाले लम्हे सभी हमारी यादों के गलियारे में दर्ज हुआ करते हैं। और ऐसे समय में अगर हम पीछे का समय थोड़ा सोचें तो सबसे अच्छा दोस्त कौन था? श्रोताओ, अगर आपको कोई दोस्त याद आता है जो आपके लिए, या घर का कोई भी व्यक्ति जो आपके लिए एक सीढ़ी की तरह था, जिसकी बातें सुनकर या जिसकी बातें मानकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचे, तो ऐसी बातें भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। और क्या आपने सांप सीढ़ी का खेल खेला है? अभिनेता किन अभिनेत्री के बारे में सोच रहे हैं श्रोताओं, आपको बताना है।

हमारे कुछ श्रोता लिखते हैं कि अभिनेता सुनील दत्त सोच रहे हैं अभिनेत्री साधना के बारे में। जी हाँ, मेरा साया फिल्म से ये गीत था, राजा मेहदेली खां का लिखा, मदन मोहन का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, मेरी नानी के वहाँ पत्थर से बनी काफी चौड़ी सीढ़ियाँ थी, एक सीढ़ी घर के अंदर थी जो रसोई घर में खुलती थी। एक और श्रोता लिखते हैं, बचपन में सीढ़ियों की रेलिंग पर बैठकर बहुत फिसलते थे। जी हाँ, लेकिन ये तो बड़ा खतरनाक भी था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो हमने ये भी देखा था कि झूला भी डाल देते थे। ये उसी तरह है, बिल्कुल खतरनाक होता है, तो ऐसा अगर आप करते हैं तो बिल्कुल ना करें। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि लिखते हैं कि सीधे ये जुल्फ अगर खुलकर बिखर जाए तो अच्छा, इन गीतों को याद किया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि सीढ़ियां सिर्फ चढ़ने उतरने के लिए नहीं होती, न जाने कितने रूप हैं सीढ़ियों के। जब हम यादों की सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो बचपन से लेकर न जाने कितने यादों के झरोके खुल जाते हैं। चांद की सीढ़ी पर चढ़कर कभी आसमान को निहारो तो प्रकृति के नज़ारे में खो जाने को जी करता है। पक्षियों के कलरव और वृक्षों की हरियाली में मन रमने लगता है। ये सत्ता आनंदमयी और करुणामयी है। प्रकृति की सीढ़ी दिव्यता की सीढ़ी है जो हमारी चेतना में अंदर तक बसी है। बस जरूरत है इसे जानने की, समझने की, और जो धूल मन पर जमी है उसे हटाने की। एक और श्रोता ने लिखा है कि खूबसूरत इबारत स्मृतियों के उन अनमोल आंगन में ले जाती है जहां समय ठहर सा जाता है और जीवन अपनी सबसे निर्मल छवि में दिखाई देता है। सीढ़ियां यहां केवल ऊंचाई तक पहुंचने का साधन नहीं, बल्कि बचपन, अपनत्व, सपनों और आत्मीय रिश्तों की जीवंत पगडंडियां हैं। वर्तमान की भागदौड़ के बीच जब मन अपने पुराने घर की दहलीज पर लौटता है तो हर कोना, हर आहट और हर स्मृति फिर से रंगों से भर उठती है। जीवन की सबसे बड़ी संपदा वो क्षण है जो स्मृतियों में सदैव चंदन की सुगंध की तरह महकते रहते हैं। आपको ये सीढ़ी पहचाननी है कि ये जगह कौन सी है।

अगला गीत जो आप सुनेंगे श्रोताओ, उस फिल्म का नाम और संगीतकार आपको बताने हैं। अगर आपने फिल्म देखी है, जाना है, तो आप अदाकार और अदाकारा भी बता सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सांप सीढ़ी का खेल बचपन में बहुत खेला है, आज विश्व सर्प दिवस भी है। जी हाँ। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गीत तेरा घर ये मेरा घर, फूलों के रंग से, दिल की कलम से, वो चांद खिला वो तारे हंसे, तमाम गीत इन्होंने हमें सुझाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि कुतुब मीनार पर फिल्माया गया बेहतरीन गीत संगीत सचिन देव बर्मन जी का है। और भी कुछ आपको बताना है इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिखा भी है कि कुतुब मीनार की सीढ़ियां हैं। जी हाँ। और सीढ़ियों पर जो गीत फिल्माए गए हैं श्रोताओं, वो बड़े ही यूनिक कहें या बड़े खूबसूरत और बड़े अलग से नजर आते हैं। ऐसे कौन कौन से गीत हैं जो आपको याद आते हैं, तो आप बता सकते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि सांप सीढ़ी बहुत खेली है बचपन में, और जब सांप काटकर हमें नीचे पहुंचा देता तब सीढ़ियां ही हमें ऊपर ले जाती। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी चार गीत की लिखी हुई इबारत में से दूसरा नंबर पर लिखा हुआ गीत भी शामिल, दिल का भंवर करे पुकार का राग सुनो, तो बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता ने लिखा है कि कुतुब मीनार की सीढ़ियां जो आजकल बंद कर दी गई हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी गणित की अध्यापिका बहुत प्रेरणादायक बातें बताती थी। संगीता जी, गणित के अध्यापकों की तरह बिल्कुल सरल, मतलब जैसे होते हैं गणित के अध्यापक, इन्होंने कुछ अजीब सा शब्द लिखा है, तो बहुत सरल थी वो और हास्य भाव में पढ़ाती और समझाती थी। बहुत याद आती हैं आज भी। जी हाँ, ऐसी बहुत सारी यादें हैं जो स्कूल या कॉलेज में जब हम सीढ़ियों पर बैठा करते थे। और याद तो फिर आपको ये भी ज़रूर याद होगा कि किसी के आम को लेना है खेतों से, बाग से, तो एक की पीठ पर एक बैठ कर भी सीढ़ी नुमा कुछ बना लिया करते थे और ऊपर पहुंच जाते थे, जिससे बड़े आराम से फल लिया जा सकता था। एक और श्रोता ने लिखा है, घर के भीतर खेले जाने वाला लोकप्रिय खेल सांप सीढ़ी बहुत खेले थे, अक्सर 90 वाला सांप, लंबा सांप, मेरी गोटी निकल जाता था। और एक और श्रोता लिखते हैं कि जब गांव में मिट्टी का कोठा वाला घर हुआ करता था, तो उसमें बंसर की बनी सीढ़ियां होती थीं, पर उस पर चढ़ने में बहुत डर लगता था कि कोई एक आदमी पकड़ता था तब हम ऊपर चढ़ते थे। जी हाँ, वैसे अगर आप देखेंगे तो कश्मीर में भी लकड़ी की सीढ़ियां होती हैं, और कश्मीर की ही वादियों में फिल्माया गया एक गीत है जिसमें जॉय मुखर्जी ढोलक बजाते हुए धीरे धीरे से सीढ़ी पर चढ़ते हैं, सीढ़ी के पास रहते हैं और साधना भी नजर आती है। ये गीत क्या आपको याद आता है, तो आप हमें जरूर बताएं। एक और श्रोता ने लिखा है कि बहुत खेला है सांप सीढ़ी और लूडो भी, आजकल तो मोबाइल पर उपलब्ध है, लेकिन वो पुट्ठे का गेम और गोटियां, उनकी तो बात अलग ही थी। तो कुछ एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारी दादी जो घर में सबसे बूढ़ी थी, हमें तब नहीं पता था कि उनके लिए सीढ़ियां चढ़ना असंभव है। हम जब भी उनसे छत पर चलने की जिद करते तो वो पहले तो समझाती थी, फिर टाल जाती थी, घर में बाकी सब उनकी हाँ में हाँ मिलाते, तब हम उनसे गुस्सा हो जाते। वैसे सीढ़ियाँ चढ़कर जाना, छत पे चांद देखना, और एक विशेष त्यौहार भी है इससे जुड़ा हुआ, क्या आपको याद आता है, तो आप ज़रूर लिखें।

अर्जुन की तर्ज थी, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। पुनर्मिलन फिल्म का ये गीत था। अमिता और जगदीप पर फिल्माया गया ये गीत था। मोहम्मद रफी की आवाज़ में इंदिवर की रचना थी। और अगले गीत की डिटेल आपको बतानी है श्रोताओं, फिल्म का नाम बताना है और गायक कलाकार के नाम आपको बतानी है। एक श्रोता ने लिखा है कि सीढ़ी से मुझे अपने मामा के यहाँ का घर याद आ गया, जहाँ हम बच्चे छुट्टियों में जाते थे और सुबह उठकर सब लोग सीढ़ियों पर लाइन से बैठ जाते थे, फिर वहीं बैठकर नाश्ता करते थे। जी हाँ, और इसी वजह से कि बच्चे तो सीढ़ियों पर ही खेलेंगे, उसकी साफ सफाई भी बहुत ही तरीके से की जाती थी। एक और श्रोता ने लिखा है कि पहले मकान बनाते समय पुराने लोग सीढ़ियां बनाने में पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, जिससे फिसलन नहीं होती थी, पर आजकल सीढ़ियां बनाते समय मार्बल पत्थर और टाइल्सों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फिसलने का खतरा ज्यादा होता है। जी हाँ, ये तो बहुत ही खास बात है श्रोताओं। तो सीढ़ियों पर जब चलना होता है तो बड़ा संभल कर चलना होता है, और इसी वजह से जो पुराने घरों में सीढ़ियां बनाई जाती थी वो जरा रफ होती थी, उनकी सुंदरता चाहे उतनी ना होती हो लेकिन उनमें गिरने का खतरा मतलब सेहत से जुड़ा खतरा कम हुआ करता था। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज भी जब फुर्सत के पल मिलते हैं, कुछ पल मिलते हैं, मैं चाय का प्याला लिए सीढ़ियों पर बैठ जाती हूँ। बस यूं ही बाहर के खूबसूरत नज़ारे, चारों ओर फैली हरियाली और बरसते बादलों को देखते हुए सुकून समेटने। एक और श्रोता ने लिखा है कि मेरी नानी के घर में आंगन की दीवार से लगी सीढ़ी थी और दीवार के पार नीम का वृक्ष था, जिस पर बहुत से पक्षी रहते थे। हम बस उसी सीढ़ी पर बैठकर उनको देखा करते थे। उनका कलरव सुनकर बहुत अच्छा लगता था। आपने क्या कुछ चुरा कर सीढ़ियों में चुपके चुपके खाया है, आप बता सकते हैं।

राज कपूर और रूतन पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे दिल ही तो है फिल्म से, और आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, रोशन का संगीत था, साहिल ध्यानवी के बोल थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत एक छोटी सी कहानी के रूप में एक बेहद खूबसूरत और भावुक दृश्य काफ़े है। ये रचना बचपन, मासूमियत और वक्त के गुजरने के एहसास का एक मुकम्मल दस्तावेज है। यहाँ सीढ़ी को महज एक ढांचा नहीं बल्कि जीवन के सफर का एक जीवंत प्रतीक बना दिया है। ये रचना एक ऐसी जादुई छड़ी है जो वक्त के पहिए को पीछे घुमा देती है। इसमें जहां एक तरफ बड़े होने का अकेलापन है, वहीं दूसरी तरफ बचपन की यादों की वो गर्माहट जो इंसान को फिर से जीने की ताकत देती है। जी हाँ, क्योंकि आजकल जब हम लौटते हैं अपने घरों की तरफ तो ये देखते हैं कि वो सीढ़ियाँ जिन पर कितना मतलब एक कह सकते हैं कि शोर सा रहता था, वो सीढ़ियाँ कैसी शांत पड़ी हुई हैं। और कई कई जगह तो ऐसा भी है कि ये सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं। एक हमने आपसे सवाल पूछा था श्रोताओं, जॉय मुखर्जी के हाथ में ढोलक है और वो लकड़ी की सीढ़ी के तरफ होते हैं, तो ये गीत अगर आपको याद आ रहा है तो आप ज़रूर बताएं। और सीढ़ियों पर फिल्माया गया कौन सा गीत आपको बहुत सुंदर लगता है? और एग्ज़ाम की पढ़ाई जब आप करते थे तो क्या आपने सीढ़ियों पर पढ़ाई की है, या फिर कॉलेज की जो यादें हैं वो आप साझा कर सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि कल्पनाओं की एक परी उतरेगी और फिर वो बचपन से जवानी तक ले जाएगी, इन दिनों उसकी मस्ती में हम कैसे कैसे पड़ाव पार करते आगे बढ़ते रहे, जीवन के विभिन्न आयाम में गुजरती ये शामें ये रातें, कैसे कैसे लोगों से मिलाते रहे। ऐसी कुछ बातें होंगी दोपहर के सुरीले सफर में सुनते हैं। तो जी हाँ, ऐसी ये बातें हैं और आप अपनी बातें साझा भी कर सकते हैं। अगले गीत में आपको बताना है कि ये जो सीढ़ी पर अभिनेत्री नजर आ रही हैं ये कौन है।

की रात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। परीक्षित साहनी पर फिल्माया गया और सीडी पर जाहिदा नजर आती हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि यादों की सीढ़ियां कभी पुरानी नहीं होती। आज की इबारत बचपन अपने घर मासूम शरारतों और बीते सुनहरे लम्हों की ऐसी सैर कराती है जहां वक्त ठहर सा जाता है और मन फिर से उन्हीं रंगों में खो जाता है जिनसे जिंदगी की खूबसूरत तस्वीर बनती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत देखकर पढ़कर हम अपने बचपन के दिन हमें याद आए हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरे ख्याल से जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम और भंवरा बड़ा नादान रे, ये सब गीत इन्होंने सुझाए हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पूरी इबादत में बचपन और शरारतें, घर आंगन सीढ़ियां हवेली छत झूला आम चुराना पंचगट्टे का खेल। जी हाँ, पंचगट्टे का खेल, ये खेल क्या आप समझ रहे हैं? अगर आप समझ रहे हैं तो हमें ज़रूर लिखें। वैसे आपकी सहूलियत के लिए बता देते हैं कि जो सीमेंट की बनी गिट्टियां होती हैं श्रोताओं, उनसे ये खेल खेला जाता है। तो क्या आपने खेला है हमें आप बता सकते हैं। चांदनी रातें लिखती हैं आगे, चांदनी रातें और समय के पीछे छूट जाने का एहसास बहुत खूबसूरती से उभर कर आता है। ऐसा लगता है मानो कोई व्यक्ति अपने बचपन के घर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते यादों की दुनिया में लौट गया हो। तो इस गीत को पहचानिए आप और बताइए कि इस बार सीढ़ी पर कौन है।

0: आई है।
1: फिरोज खान और पद्मिनी पर फिल्माया गया ये गीत था फिल्म औरत से, और इस गीत की डिटेल हमारे कुछ एक श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है, और जिन श्रोताओं ने नहीं लिखा वो ज़रूर हमें लिखकर भेजें। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में लकड़ी की सीढ़ियों से हम सब भाई जो हैं वो बैठकर फिसला करते थे, आज वो दिन बहुत याद आ रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारे बच्चे बहुत छोटे थे, हमारे पुराने घर की सीढ़ियाँ ऊपर मंजिल तक ऊंचाई तक थीं, बच्चे गिरे नहीं इसलिए सीढ़ियों के कोने पर लोहे की छोटी गेट बनवा के लगवाई थी ताकि बच्चे ऊपर जाएं तो गिरे नहीं। जी हाँ, सावधानी तो बहुत सीढ़ियों में बरतनी पड़ती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जीवन सांप सीढ़ी के खेल की तरह है, जिसमें कुछ अवसर सीढ़ी का काम करते हैं और इसी के समानांतर कुछ घटनाएं सांप का काम करती हैं। इस तरह जिंदगी बसर होती चली जाती है। फिर है सुंदर सी सीढ़ी, और फिर है ये कौन सी सुंदर सी अभिनेत्री।

मुकेश की आवाज में सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आपने सुना, मनीष और नूतन पर फिल्माया गया। एक श्रोता लिखती हैं कि बचपन में घर में बिना बताए हम और हमारे चचेरे भाई बहनों की टोली के सारे भाई मिलकर आम के पेड़ पर चढ़कर निचली डाल को जोर से हिलाते थे और हम सारी बहनें नीचे चादर बिछाकर कच्ची अमिया उसमें भर लेते थे। दांतों का बुरा हाल हो जाता था, कई दिनों तक दांत चमक जाते थे, फिर अपनी चोरी पकड़ ली जाती थी। एक और श्रोता ने लिखा है कि हमारे घर के पास सीढ़ियां हैं और बचपन में हम इन सीढ़ियों से उतर कर पानी लाते थे और मैं सबसे पहले पानी लेकर पहुंचती थी और हमेशा प्रथम आती थी। होड़ में अभी वो सीढ़ियां वही हैं, लेकिन जब मायके जाना होता है तो बचपन याद आता है। एक हमारी श्रोता हैं जिन्होंने एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म के गीत को पहचाना है, लेकिन लिखती हैं कि गीत तो याद नहीं आ रहा है। जी हाँ, ये गीत था, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। एक और श्रोता लिखते हैं कि पूरी जगन्नाथ मंदिर में 22 सीढ़ियां हैं, इन्हें पार करके ही प्रभु का दर्शन करते हैं। सभी की मनोकामना होती है, हे प्रभु 22 सीढ़ी पार करा देना। आज रथ यात्रा में भी भगवान 22 सीढ़ी उत्तर लोगों को दर्शन देने बाहर आए हैं। जय जगन्नाथ स्वामी।

श्रोताओं, कॉलेज की सीढ़ियों का जिक्र आप कर सकते हैं। तालाब और नदियों के किनारे क्या आप घूमने गए हैं जहां खूब सारी सीढ़ियां होती हैं, उसका भी जिक्र आप कर सकते हैं।

आप सुन रहे थे फिल्म राजकुमार का ये गीत साधना और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि लखनऊ की भूल भुलैया की सीढ़ी जहाँ किधर से भी चलो तो मिल जाएंगी सीढ़ियाँ, पर सच में भूल भुलैया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि चोरी चोरी खाने का मज़ा ही अलग है, अमरूद खाना नहीं भूलता हूँ। एक और श्रोता ने लिखा है कि सबसे अधिक सीढ़ियों के बारे में कहीं स्विट्ज़रलैंड के बारे में इन्होंने लिखा है, नसीन पहाड़ पर हैं ये सीढ़ियाँ। और एक और श्रोता ने एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का जो गीत था उसे पहचाना है। और एक और श्रोता लिखती हैं कि स्कूल पढ़ने के दौरान स्कूल कैंपस के पास ही बनी दुकान की सीढ़ियों में बैठकर खाना खाते थे, कॉलेज पढ़ने के दौरान कॉलेज की कैंटीन के पास ही एक मंदिर था जिसकी सीढ़ियों पर बैठकर कोफ्ते समोसे और कचौरी खाए हैं खूब। जी हाँ, कई सारी दुकानें भी तो होती हैं वहाँ। आप अभिनेता और अभिनेत्री पहचाने?

शहनाई फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत था, राजश्री और विश्वजीत पर फिल्माया गया ये गीत था। इस गीत की डिटेल भी हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। आपके सभी कमेंट्स, सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

0: He said the government's aim is to ensure that no citizen living in any remote area feels cut off from the mainstream.
1: We understand that the stronger a country's infrastructure, the stronger its future will be. We have ensured that no citizen living in the most remote corner of the country feels disconnected from the mainstream. We have undertaken a mission to connect every village, every city, mountains, rivers, and remote regions across the country. We have pursued this vision because we believe that connectivity is an essential pillar of a nation's development.
0: The Supreme Court today voiced concern over the introduction of a third language in Class 9 under the CBSE curriculum, observing it would increase the stress level of students. The Apex Court has suggested that it be introduced in Class 5 or 6 so that students can cope with it. A bench of Justices B.V. Nagaratna and R. Mahadevan orally asked the Centre not to introduce a third language in Class 9 level. The remarks were made during the hearing of the Tamil Nadu government's plea against a Madras High Court directive to facilitate the establishment of Jawahar Navodaya Vidyalayas in every district of the state. The Tamil Nadu government has consistently opposed the setting up of Jawahar Navodaya Vidyalayas over concerns with regard to the three-language policy curriculum followed by the schools. The Supreme Court today directed all states and union territories to formulate and implement a comprehensive policy for the early or premature release of prisoners who are of advanced age or are terminally ill. The court ordered that the policy be framed and notified within 3 months to ensure a uniform mechanism for considering such cases across the country. A bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta issued the directions by invoking its extraordinary powers under Article 142 of the Constitution while deciding a public interest litigation plea seeking a humane and uniform framework for the release of elderly and seriously ill prisoners. The Delhi High Court today directed authorities to monitor the health of activist Sonam Wangchuk on a daily basis, stressing that life is precious. Mr. Wangchuk is on an indefinite fast at Jantar Mantar in New Delhi. A bench of Chief Justice D.K. Upadhyay and Justice Tejas Karia asserted that Mr. Wangchuk's condition should be checked regularly by government doctors. Solicitor General Tushar Mehta, who appeared for the centre as well as the Delhi government, submitted that life of every individual is precious and there was no objection to undertaking Wangchuk's regular medical check-up. The Enforcement Directorate today conducted search operations at 13 premises in connection with a case relating to an alleged terror funding and illegal infiltration network. The case originates from an FIR registered by the Uttar Pradesh ATS against organized syndicate allegedly involved in facilitating illegal infiltration of Rohingya and Bangladeshi nationals into India, arranging forged Indian identity documents and aiding their rehabilitation in various parts of the country. The initial investigation further indicated that cash withdrawals and multiple small-value fund transfers were utilized to transfer funds to suspected beneficiaries. The central government has revised the special additional excise duty on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel, ATF, as part of its latest fortnightly review of fuel export taxes. Under the revised rates, the export duty on diesel has been increased to ₹15.50 per litre, while the duty on ATF exports has been raised to ₹14.50 per litre. Meanwhile, the export duty on petrol has been reduced to ₹2.50 per litre. The revised rates notified by the Finance Ministry came into effect from today. Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today said a thriving bioeconomy will strengthen the country's health and food security, boost vaccine development, create high-skilled jobs and promote the Vocal for Local initiative. Addressing the launch of the roadmap titled Building India as a Leading Bioeconomy Powerhouse by 2035 in New Delhi, Dr. Singh said the 21st century belongs to biotechnology.
2: If the 20th century was IT century, 21st century would be BT century. This transition from IT to BT is going to be very fascinating. And the global market already stands at about 1.4 to 1.8 trillion US dollar at the same level. And we are among the very few countries who have come out with a dedicated biotechnology policy called Bio E3.
0: Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has emphasized the need to promote integrated farming practices among farmers to ensure sustainable agricultural growth. Addressing the 98th Foundation Day of the Indian Council of Agricultural Research in New Delhi, the minister said farmers and scientists' collective hard work is creating extraordinary results. He highlighted that during the past year, 386 new crop varieties covering 44 crops and 117 horticulture varieties have been developed. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab tomorrow. The Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind railway station in Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. Mr. Modi will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium in Jind. More from our correspondent.
3: The launch of first hydrogen-powered train marks a significant milestone in the country's transition towards clean and sustainable mobility in the railway sector. India's hydrogen train features a 10-coach configuration, making it among the longest hydrogen-powered passenger train developed so far. It is powered by a 3,200-horsepower propulsion system, making it one of the most powerful hydrogen-powered train sets in operation. The train will operate at a maximum speed of 75 km per hour on Jind-Sonipat section. The use of green hydrogen also reduces dependence on electricity generated from fossil fuel-based thermopower plants, supporting India's transition to sustainable transport. With its introduction, India will join the select group of countries such as Germany, Japan, China and the United States that are exploring the use of hydrogen for cleaner rail transportation. With Deependra Kumar, this is Vishnu P.S. for Akashwani News, Delhi.
0: Consumer Affairs, Food and Public Distribution Minister Prahlad Joshi has said BRICS countries will sign a Memorandum of Understanding in Bengaluru to collaborate in the area of standardization. He was speaking to media after addressing a meeting of heads of BRICS national standardization bodies. The minister said this will promote the information sharing, exchange of best practices, technical collaboration and capacity building among the BRICS member countries.
4: One of the most significant outcome we expect from this meeting is the finalization and signing of the BRICS MOUs on cooperation in the field of standardization. From last many years, this finalization of MOU was pending. This MOU will mutually benefit a win-win situation. Now we have finalized the MOU with all BRIC countries and today it will be signed.
0: This is the fifth BRICS Heads of National Standardization Bodies meeting being held in Bengaluru under the India chair. India and Belgium have agreed to deepen cooperation in areas including trade and investment, green energy transition, innovation and technology, connectivity, defence, security, regional and global issues, as well as people-to-people exchanges. The first meeting of the India-Belgium Strategic Dialogue was held in Brussels yesterday, marking a significant step towards strengthening bilateral relations. The United States has launched a new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in the Strait of Hormuz. U.S. military said it completed a second wave of strikes on Iran yesterday that were aimed at degrading Tehran's ability to target vessels in the Strait of Hormuz. President Donald Trump is also weighing options to expand the U.S. military operation to loosen Tehran's grip on the critical waterway. The Rath Yatra of Lord Jagannath will begin today at Puri in Odisha. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have greeted the people on the occasion. Two-time Olympic medalist P.V. Sindhu produced one of her best performances of the season to outclass world number 5 Han Yue of China in straight games and storm into the quarterfinals of the Japan Open Super 750 badminton tournament today. P.V. Sindhu needed just 35 minutes to register a commanding 21-16, 21-14 win over the higher-ranked Chinese shuttler in their second-round contest. In men's cricket, the second one-day international of the three-match series between India and England will be played at Sophia Gardens in Cardiff today. The match will start at 5:30 p.m. Indian time. Earlier, India defeated hosts England by 6 wickets in the first ODI at Edgbaston, Birmingham on Tuesday to lead the series 1-0. In football, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atlanta Stadium in the USA to set up the title clash of the FIFA World Cup against Spain. Argentina will now play against Spain in the final on Sunday night. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India calls for closer cooperation among BIMSTEC member countries to tackle security and economic challenges amid geopolitical conflicts. Defence Minister Rajnath Singh says government is ensuring development and national security progress on same path. Supreme Court suggests CBSE to introduce third language from class 5 or 6. India set to launch first hydrogen-powered train to promote green and sustainable rail mobility. PV Sindhu stuns world number 5 Han Yue of China in straight games to storm into quarterfinals of Japan Open Badminton Tournament. And in cricket, second ODI between India and England to be played in Cardiff this evening. With that, we end the midday news.
5: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई को तीसरी भाषा पांचवीं या छठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
6: बिम्स्टेक लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स
7: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
8: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
5: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमेरिकी डॉलर है।
8: There is an urgent need for us.
7: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1.7 अरब लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
5: श्री डोभाल ने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
9: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। पिछले 10-12 वर्षों में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
5: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है।
9: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है, यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
5: प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6वीं कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अनमोल है। श्री वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और वांगचुक की नियमित चिकित्सा जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कल से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।
10: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3,200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जींद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मानसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से किसानों को वास्तविक समय में लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
11: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
5: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्ययोजना को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडिचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथों की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लेख भगवान जगन्नाथ के प्रति राष्ट्रपति की आजीवन भक्ति को दर्शाता है, जिसमें उनके बचपन की प्यारी यादों से लेकर उनके जीवन को आकार देने वाले गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 77,214 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 24,060 पर पहुंच गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
12: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
5: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की 5वीं नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे समाचारों में पहले अंग्रेजी में मिड डे न्यूज, इसके तुरंत बाद हिंदी में दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का आप लोग केंद्र है। दोस्तों, आइए अब फिर से सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

फिल्म नवरंग का दो गाना आपने सुना, महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में। भरत व्यास के बोल थे, सी रामचंद्र का संगीत था। विविध भारती का ये कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: ओपन एयर की बनाई तर्ज पर इसे गाया मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। मजरू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी। फिल्म थी फिर वही दिल लाया हूँ।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीज़ों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: गंगा की लहरें सुन का दो गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल सरों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को सरों में ढाला चित्रगुप्त ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
1: तनिया, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जहां आरा फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले के युगल सुरों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं मदन मोहन की तर्ज है। श्रोताओ, यही है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। आप सुनिए ये गीत, रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को और आरती आपको नमस्कार।
2: चंचल जी आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो भाई आज हम बहुत दिन बाद मिले हैं इस मंच पर और आज ढेर सारी बातें होंगी, आपस में भी होंगी और हमारे सुनने वालों से भी होंगी।
2: बिल्कुल, उनकी बातों को हम अच्छे, जो उन्होंने हमें मैसेज भेजे हैं उनको हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से, उनसे बातें करेंगे और हमें प्यारे प्यारे मीठे मीठे गीत सुनाएंगे।
1: तो भाई वो हमें कमेंट्स लिख रहे हैं सिर्फ वो श्रोता जिन्हें पता है कि आज के विषय क्या है। हाँ। तो हम किस विषय पर बात करेंगे ये बताना भी बहुत जरूरी है।
2: बताना जरूरी है। तो आज हम सब बात करेंगे मनोरंजन के बदलते स्वरूप।
1: तो मनोरंजन की बात हो रही, भाई रेडियो की बात ना हो, मनोरंजन का बहुत पुराना और सबसे पसंदीदा जरिया है रेडियो और हमारे जो श्रोता है वो तो जुड़े हुए हैं इस माध्यम से, लेकिन इसके अलावा जो अन्य मनोरंजन के माध्यम हैं उन्होंने अब तक क्या बदलते हुए देखा और उन्हें क्या लगता है कि ये स्वरूप अच्छे हैं या बुरे हैं, अपना अपना हर किसी का देखने का नजरिया होता है।
2: जरूरी नहीं सिर्फ रेडियो हो, हम आपस में कितने खेल खेल के,
1: हाँ वो तो कहा ना,
2: आपस में बातें करके हम अलग अलग तरीकों से मनोरंजन करते थे सब मिलके सखियों से बात करके। तो ये सब चीजें जो है पहले के जो साधन थे वो ज्यादा अच्छे थे या अभी के जो है वो ज्यादा आपको पसंद आते हैं, सब अपने आप नजरिया बताइए कौन सा आपको ज्यादा सही लगता है।
1: बिल्कुल, आज डिजिटल युग है तो डिजिटाइज चीजें जो हो रही है ना वो भी किसी को पसंद है किसी को नहीं है। जो पुराने दौर के व्यक्ति है ना उन्हें लगता है कि नहीं ये मोबाइल या जो गैजेट्स हैं उनसे तो अच्छा है अपने दोस्तों में बैठ के बातें करो।
2: बिल्कुल,
1: चार दोस्त मिल गए जो अगर सखियां हैं तो वो कुछ पकवान बनाएंगी, किटी पार्टी जैसा करेंगी, उनका मनोरंजन हो जाता है। बच्चों के लिए खेल कूद मनोरंजन है। तो आपके लिए मनोरंजन क्या है और आपने क्या स्वरूप बदलते हुए देखे, अपने विचार हमें लिखकर भेजिए।
2: बिल्कुल, और साथ ही हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंतर्गत यानुंग जामो लेगो जो की जड़ी बूटी विशेषज्ञ है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जानते हैं अधिकतर लोग उनके बारे में।
1: मतलब ये ऐसे उपचार हैं कह सकते हैं कि इनके साइड इफेक्ट यानी कि आपको कुछ भी गलत उपचार मिलने की संभावना कम होती है, यानी कि जो चीज़ अगर आपने ली तो उसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा, हो सकता है वो आपको फायदा ना दे लेकिन किसी तरह का नुकसान होने की संभावना ना के बराबर होती
2: है। प्राकृतिक उपचार होता है, तो प्रकृति तो वैसे ही इतनी ज्यादा अपने अंदर समेटे हुए पूरा खजाना, तो उसको हम जान लें तो हम हमारे सारे चीजों का इलाज वैसे ही हो जाएगा।
1: आरती आपने देखा है कितने लोग सिर्फ प्राकृतिक वाटर बॉटल्स में मंगाकर पीते हैं, पसंद करते हैं।
2: महंगी आती है वो, हाँ। जो पानी मिलता है उन बॉटल्स में वो बहुत महंगा पानी आता है, तो आजकल शुद्ध पानी ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो शुद्धता होती है जो प्रकृतिक चीजें जड़ी बूटियां होती हैं,
1: बिल्कुल
2: कुछ अलग ही।
1: तो शुद्ध हवा पानी अपने आप में बहुत कहते हैं कि एक दवा का काम करता है। इसके अलावा कुदरत ने हमें इतनी सारी जड़ी बूटियां दी हैं, उनको पहचानना भी अपने आप में बड़ा काम है। तो जिन सखी की आज हम बात करने वाले हैं ये उनको पहचान कर उनसे उपचार करती हैं और बहुत सारे लोगों को ये अपने उपचार से स्वस्थ कर चुकी हैं।
2: बिल्कुल, तो इनके बारे में हम बात करेंगे आज
1: जी।
2: और साथ ही हम बात करेंगे कि चंचल कुछ बताने जा रही हूँ,
1: दिमागी कसरत
2: भूल गई थोड़ा सा हमें दिमागी कसरत की जरूरत पड़ती है जब हम कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जो एकदम टंग ट्विस्टर होते हैं, एकदम हमारे जीभ को घुमा देते हैं पूरी। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो किस तरीके से पहेलियां होती हैं, पहेलियां बुझाते हैं। पहले हम लोग का बहुत ज्यादा ये मनपसंद खेल हुआ करता था कि हम कुछ ऐसी बातें कहें और बताएं बूझो तो जाने, अब ऐसी बात हमने कुछ लाइन्स बोल दी अब बूझो तो जाने इसका क्या मतलब है, इसका क्या, कौन सी चीज छिपी हुई इन शब्दों में। तो ये पहेलियां जो है ना इससे हमारा जो मस्तिष्क है ना उसकी सारी बिल्कुल काम में लग जाता है, बिल्कुल कि ढूंढने की आखिर है क्या चीज।
1: और पहले बच्चों को ऐसे टास्क जब दिए जाते थे ना तो उनका दिमाग कहते हैं कि खुलता था इन चीजों से। तो आप करते हैं अपने बच्चों के साथ या नहीं करते हैं, बच्चों के दिमागी कसरत के लिए पहेलियों के अलावा आपने क्या किया है हमारे साथ जरूर साझा करें।
2: ही नहीं, ये बड़ों के लिए भी बहुत जरूरी है कि इस तरीके की जब चीजें हम करते रहते हैं ना, चाहे वो अखबार में निकलने वाले उनको पहेलियों को सुलझाना हो या किस तरीके की चीजों को करना हो, तो इससे हमारा दिमाग जो है ना एकदम काम में लगा रहता है, एक्टिव रहता है। इससे ये होता है कि हम जैसे कभी कभी ऐसा होना था कि बढ़ती उम्र के साथ में थोड़ा सा याददाश्त में कमी होने लगती है तो वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं।
1: और बारिश का मौसम है ये हम सभी जानते हैं, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, लेकिन बारिश के बाद जो उमस होती है ये भी हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपने खान पान का, अपने पहनावे का, जो भी चीजें हमारे इर्द गिर्द है उन सब चीजों का।
2: वैसे भी कहा जाता है ना कि अब हम प्रकृति की बात करें तो कहा जाता है कि प्रकृति के हिसाब से हमें खान पान भी रखना चाहिए। कौन से मौसम में, हर मौसम का खान पान अलग होता है, तो उसी हिसाब से हम अपना खान पान रखेंगे, संतुलित आहार रखेंगे, शुद्ध पानी पियेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो हम बात करेंगे कि किस तरह से हम बारिश के दिनों में अपना ध्यान रखें।
1: और इसके अलावा भाई नींद बहुत जरूरी चीज होती है, लेकिन इस समय हम श्रोताओं की नींद उड़ाने वाले हैं ताकि वो प्रोग्राम सुनने के लिए तैयार रहें।

0: हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उनकी नींद जरूर उड़ गई होगी और अब वो हमें कमेंट्स भेजेंगे,
1: पूरे ध्यान से प्रोग्राम को सुनेंगे
0: जी, और जो हमारे विषय है उन पर संदेश भी लिखकर भेजेंगे, अपने विचार भी हमारे साथ साझा करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं मनोरंजन के जो बदलते स्वरूप हैं उन्हें लेकर, और बात जब मनोरंजन की होती है आरती तो ये केवल समय बिताने का कोई साधन नहीं है बल्कि मानसिक तनाव को दूर करके ताजगी भरने वाला भी होता है और रचनात्मक और जीवन को संतुलन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। बदलते समय के साथ मनोरंजन के साधन भी बदले हैं और इस बात से हमारे श्रोता भी वाकिफ होंगे।
1: बिल्कुल।
0: और अतीत की तुलना वर्तमान से करें तो मनोरंजन की दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन हम देख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और पुराने समय का जो मनोरंजन था वो सामूहिकता, अपनापन और संस्कृति से अपनी जुड़ा हुआ था।
0: हाँ।
1: गांव की चौपालों पर किस्से कहानियां सुनाई जाती थी, लोकगीत और लोक नृत्य लोगों को एक सूत्र में बांध लेते थे, रामलीला, नौटंकी, कठपुतली का खेल, मेले, पारिवारिक खेल जो यानी सब परिवार पूरा मिलकर खेलते हैं हम लोग सब, और दादी नानी की कहानियां और रेडियो के कार्यक्रम जो थे वो उस समय के मनोरंजन के मुख्य माने जाते थे साधन।
0: और पहले के जमाने की अगर बात हो रही है तो जैसे आजकल बहुत सारे बोर्ड के गेम भी मिलते हैं और या पासे होते हैं उसमें, तो वो हम खुद ही किसी कोयले से या चौक से जमीन पर उसको काढ़ लिया करते थे और कुछ पत्थर वत्थर रख के बस पासे बनाकर उनसे खेला करते थे। तो इन चीजों में भी युग के साथ में बदलाव हुआ, फिर ये बोर्ड पर आने लगे बाजार में, और अब ये चीजें कई बार हमें डिजिटल यानी कि हमारे मोबाइल या लैपटॉप पर टैब पर भी हम खेलते हैं।
1: अभी भी गाँव में देखिए तो छोटी छोटी जो बच्चियां हैं वो गुटके खेलती हुई दिखाई देंगी, वो बहुत अच्छे लगता है वो, और जो जमीन पर बनाते हैं पहले उससे चौक से और एक दो तीन चार करके
0: और वो लंगड़ी से चलते हुए खेलते हैं, कहीं दो पैर टिकाने हैं कहीं एक पैर टिकाना होता है,
1: इस तरह के खेल तो अभी भी बच्चे खेलते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं, लेकिन हाँ ये जो खेल थे ये पूरी तरह से हमें पूरे शरीर को भी एक्टिव रखते थे और दिमाग को भी एक्टिव रखते
0: और बिल्कुल इन माध्यमों में सिर्फ आनंद नहीं है, खुशी नहीं है बल्कि संस्कार है, लोक ज्ञान है, सामाजिक मेल मिलाप, ये सभी चीजें आरती में समाहित होता था और मनोरंजन लोगों का एक दूसरे को और पास ले आता था। वहीं वर्तमान समय में मनोरंजन ने तकनीक का हाथ थाम लिया, जैसा हम बात कर ही रहे हैं, डिजिटल युग में मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, वेब सीरीज, वीडियो गेम, पॉडकास्ट, ओटीटी, ये इतनी सारी चीजें हैं, इन्होंने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल के रख दिया।
1: बिल्कुल
0: है।
1: और आज का मनोरंजन हमारी उंगलियों की पहुंच में है, सबसे बड़ी बात।
0: हाँ,
1: एक क्लिक पर दुनिया भर की फिल्में, संगीत, पुस्तकें और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम उपलब्ध हैं।
0: हाँ।
1: और इस बदलाव ने मनोरंजन को और अधिक सुलभ बना दिया है, विविध और व्यक्तिगत भी बना दिया है। अब हर आयु वर्ग अपनी रुचि के अनुसार सामग्री को चुन सकता है। यही कारण है कि मनोरंजन आज केवल आनंद का माध्यम नहीं है बल्कि शिक्षा, जागरूकता और व्यक्तित्व विकास का भी सशक्त साधन बन गया है।
0: हम बातें और करेंगे और हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं इस बारे में वो भी पढ़ेंगे, पर गीत सुनते चलें।
1: बिल्कुल।

0: आरती, ये जो इस तरह के गीत है ना, ये भी दिल चुरा लेते हैं। और हम बात कर रहे हैं कि बदलता जो स्वरूप है मनोरंजन का, तो देखो ना, हमने गीत सुना है कितने गुजरे जमाने का था, लेकिन ये आज भी मीठा लगता है। और संगीत का स्वरूप भी कितना बदला है,
1: बहुत ज्यादा बदल गया है। और बदलाव हर समझ लीजिए परिवर्तन जो होता है वो तो प्रकृति का नियम ही होता है, लेकिन वो परिवर्तन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, जो सबको पसंद आए
0: जी। और परिवर्तन के साथ हम अगर जुड़ेंगे नहीं, खुद को अलग थलग रखेंगे, तो वो खुद ही खामखा तकलीफ में रहेंगे। तो बदलाव को स्वीकार करना भी जरूरी होता है, लेकिन बदलाव के साथ बिल्कुल इतने ना बह जाएं कि अपने जो संस्कार हैं, संस्कृति है, उसे हम भूल जाएं।
1: बस अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए और बदलाव को अपने हिसाब से थोड़ा सा स्वीकार कीजिए।
0: और अपने बच्चों को भी जो अपनी संस्कृति है उससे अलग ना होने दीजिए। अब वो नई चीजों को, जो भी आधुनिकता है, उसे अपनाएं, लेकिन जो हमारी जड़ें हैं उससे जुड़ाव बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: तो अब देखिए, हमारे श्रोता का कहना है कि विगत काल में मनोरंजन के साधन प्रकृति और सामुदायिक गतिविधियों तक सीमित थे। मेले, सर्कस, कठपुतली शो, त्योहारों में पूरा समाज एक साथ जुड़ जाया करता था। रेडियो और दूरदर्शन के आने से मनोरंजन घर की चार दीवारी तक सीमित हुआ, लेकिन इसे भी पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर कार्यक्रम देखने का अवसर दिया। और तकनीकी क्रांति की बात कर रहे हैं, जहाँ इंटरनेट ने बहुत सारी चीज़ों को लेकर आया है, वेब सीरीज आई हैं, आगे इन्होंने इसके बारे में बात की है। फिर ये बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल एजेंसी AI एल्गोरिदम आधारित जो सिफारिशें हैं, इसने भी व्यक्तिगत बना दिया है मनोरंजन को, और बहुत विविधतापूर्ण मनोरंजन अभी है। और बहुत विस्तार से इन्होंने बातें लिखी हैं इस बारे में, तो आगे और भी संदेश पढ़ने हैं हमें।
1: बिल्कुल। और हमारे एक क्वेश्चन होता है, उनका संदेश है कि मनोरंजन के साधन तो पहले भी हुआ करते थे और आज भी हैं, पर कुछ तौर तरीके बदल गए हैं।
0: हाँ।
1: पहले रेडियो पर मनोरंजन हुआ करता था, पर आजकल तो मोबाइल फोन पर बहुत सारे बच्चे अपना मनोरंजन करते हैं, पर मनोरंजन का स्वरूप बदल गया है। पर मेरा मनोरंजन का स्वरूप पहले जैसा ही है, लगता है कुछ भी नहीं बदला है। मुझे वो पुराने रेडियो का दौर अच्छा लगता है, इस कारण जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो मैं सिंपल पुराने रेडियो पर ही सुना करता हूँ, और मेरे लिए यही अच्छा है।
0: हमारे सुनने वाले श्रोता है ना, जो इतने पुराने गीत जो आज हम सुन रहे थे ना, ये अक्सर सुबह भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में उन्हें सुनाई

0: करते होंगे। हाँ। तो आज एक बदलाव ये भी है उनके लिए। हाँ। कि इतने पुराने गीत आज सखी सहेली में उन्हें सुनाई पड़ रहे हैं। और क्या संदेश है?
1: एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मनोरंजन अधिक जो विविध है, त्वरित और सस्ता हो गया है। घर बैठे ज्ञान और मनोरंजन दोनों साथ में मिल रहे हैं। नकारात्मक प्रभाव इसका यह है कि मनोरंजन जो है वो अब सामाजिक से अधिक व्यक्तिगत हो गया है, क्योंकि पहले सारे लोग मिलके हम साथ होते थे। अब अत्यधिक स्क्रीन टाइम से शारीरिक गतिविधियां भी कम हुई हैं और आंखों पर बुरा असर भी पड़ रहा है।
0: हमारे एक श्रोता लिखते हैं, ये जो बात इन्होंने लिखी है ना, ये बहुत सही बात है कि बच्चों की आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है, बड़ों की, और ना सिर्फ आंखों पर, आपकी और भी इंद्रियों को ये प्रभावित करते हैं। तो हमारे श्रोता खुद सजग हैं, इन बातों को जानते हैं, तो अपने घर में वो क्या इन चीजों को लेकर बदलाव करते हैं। बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम के लिए क्या उन्होंने एक समय निर्धारित किया है, या बच्चे उनके बहुत कितनी बार तो हम खुद ही आदत बिगाड़ते हैं बच्चों की, कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो टीवी लगा दिया, या तो फिर हमने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया कि उसका ध्यान थोड़ा सा वहां से, क्योंकि डाइवर्ट हो जाता है वो टीवी और मोबाइल की तरफ, और हम उसके ध्यान को थोड़ा सा भटकाकर उसके मुंह में निवाले देते रहते हैं, और फिर वो चीजें आदत में बदल जाती हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। मनोरंजन देना है, लेकिन स्वस्थ मनोरंजन हमें अपने आगामी पीढ़ी को देना है।
1: और बच्चों को हमें समझाना भी है कि जब हम अपने हाथों से खाना खाते हैं तो, और खाने पर पूरा ध्यान रखते हैं, तो पुराने समय में क्यों ऐसा होता था, क्योंकि जब हम हाथों से अपने खाना खाते हैं ना, तो एक जुड़ाव होता है खाने के साथ, उसकी सुगंध को महसूस करते हैं, उसके उसके स्वाद को महसूस करते हैं, तो वो खाना में और फायदा पहुंचाता है।
0: हाँ।
1: इसलिए जरूरी होता है कि जब कुछ ना चल रहा हो, उस समय टीवी मत चलाइए, उसमें कुछ नहीं करिए, कहते हैं बात भी बोलना भी नहीं चाहिए, तो खाते समय थोड़ा अगर इस तरीके से हम करें तो देखिए कितना स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।
0: बहुत सही बात कही आरती आपने कि हम एक एक स्वाद को महसूस कर पाते हैं, लेकिन अगर हमारा ध्यान किसी और भी है, किसी तीसरी तरफ भी है, कि एक तरफ हमारी नजरें हैं इस तरफ कि भाई कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, एक तरफ हम टीवी भी देख रहे हैं, हमारा ध्यान मोबाइल पर भी है, तो खाने का लुत्फ हम ले ही नहीं पाएंगे, और जितना असर हमें हर चीज को लेकर वो भोजन देगा शायद नहीं दे पाए।
1: बिल्कुल। तो और हमारे जो श्रोता हैं वो भी लिख रहे हैं कि प्राचीन काल के सामूहिक उत्सवों से लेकर आज के व्यक्तिगत डिजिटल स्क्रीन तक मनोरंजन का स्वरूप काफ़ी बदल गया है। हालांकि इसका मूल उद्देश्य दिन भर की थकान मिटाना और मानसिक शांति पाना आज भी बिल्कुल वैसा ही है, बस चीज़ें चेंज हो गई थोड़ी सी।
0: बिल्कुल। तो हम फिर से एक पुराने गाने की तरफ बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल बदलाव
0: और बदलाव हम लेकर आ रहे हैं, तो एक गीत सुनते हैं।

0: पहले संवाद आमने सामने होते थे, अब आज वो डिजिटल माध्यमों से होते हैं। कभी पूरा परिवार साथ बैठकर रेडियो सुनता था या दूरदर्शन पर कार्यक्रम देखता था, जबकि आज अक्सर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्क्रीन में, फोन में बिजी दिखाई देता है।
1: और देखिए ना हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं, मनोरंजन के स्वरूप भले बदले हों, रेडियो ने हमें आज भी जकड़ रखा है। यानी कि रेडियो जो है ना वो हमारे बहुत सारे श्रोताओं का मनोरंजन का बहुत पसंदीदा माध्यम है। आगे लिखते हैं कि रेडियो से पहले हमारे घर में ग्रामोफोन प्लेयर हुआ करता था,
0: अरे वाह,
1: जिस पर पुराने दौर की उन फिल्मी गीतों के रिकॉर्ड बजाकर हम लुत्फ उठाया करते थे। उसके बाद हमारे यहाँ साल 1960 में रेडियो का आगमन हुआ। उस समय से लेकर आज तक ये हमारे मनोरंजन का साथी बना हुआ है। इसके अलावा सिनेमाघर और दूरदर्शन का ज़माना आया, जिसमें हर रविवार के दिन आ रही रामायण जैसे सीरियल और शाम को आने वाली फिल्में हमें

0: काफी प्रभावित किया करती थी। आज इंटरनेट और स्मार्टफोन ने मनोरंजन को व्यक्तिगत और ऑन डिमांड बना दिया है। और आगे लिख रहे हैं, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
1: देखिए परिवर्तन तो होता ही है
0: जी,
1: अब हम उसे स्वीकारें या ना स्वीकारें। और हमारा एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि बचपन में सबसे मजेदार एक और मनोरंजन का साधन था कथा कहानी सुनाने का। सच में घर परिवार रिश्तेदार में कुछ ऐसे सदस्य होते थे जो कथा कहानी बहुत अच्छा सुनाते थे और आपको उसमें बीच में हुंकारी भरना जरूरी होता था। और कथा एक दिन में खत्म नहीं होती थी, दो दो दिन तक चलती थी। सुनने वाले की बातें इतनी लच्छेदार होती थी कि हम तन्मय होकर उस कथा को या कहानी को सुनते रह जाते थे।
0: और इसी तरह से हम बात करें कि बदलते स्वरूप की, तो पहले चिट्ठियां हमारे श्रोता लिखा करते थे, अब हमारे श्रोता हमें कमेंट लिखकर भेजते हैं। कुछ श्रोता सिर्फ अपने विचार, इस जिस जो भी बात हो रही है उस बारे में अपने विचार लिखते हैं, लेकिन कुछ श्रोता ऐसे भी हैं कि भाई उन्हें बिल्कुल तैयार माध्यम मिल जाता है, वो गूगल पर जाते हैं, सर्च करते हैं उस बारे में और बिल्कुल उसको वहां से कॉपी करके एज इट इज़ वैसा कि वैसा उसे पेस्ट कर देते हैं। उसमें आप अपने विचार भी जोड़िए और आपकी क्या बात है वो राय भी हमने लिखकर पहुंचाए,
1: हमें आपके विचार जानने का मौका मिलेगा कि आप क्या सोचते हैं इस विषय पे, तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा।
0: ये तो हमें भी पता है, बिल्कुल गूगल पर सब तरह की जानकारी है, लेकिन आपको अपने विचार लिखकर भेजने, इसलिए हम हमेशा कहते हैं ना श्रोताओं से कि आप अपने विचार इस बारे में लिखकर भेजिए कि आपने क्या बदलते देखा है इस दौर में।
1: जो आपके अनुभव है ना, वो जब हम साझा करेंगे ना तो और लोगों तक भी वो जो अनुभव है वो पहुंचेंगे
0: जी।
1: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि एक समय था जब लोग मेले, कठपुतली के शो, नाटकों और रेडियो पर निर्भर थे, इसके बाद सिनेमा घरों और टीवी का दौर आया, लेकिन अब जो है वो जो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं मनोरंजन के, जिन पे पारंपरिक तरीकों को पीछे छोड़ दिया गया है। तो पहले तो ऐसा होता था कि जैसे हम शाम को जब हमारा कोई सीरियल आने वाला है तो उसके लिए बहुत ही इंतजार कर रहे होते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि ऐसी ऐसी अब सीरीज हो गई है कि उनके एपिसोड ही चलते रहते हैं, तो ये बदलाव बता रहे हैं इस तरीके का हुआ है
0: बिल्कुल। और मनोरंजन का वास्तविक उद्देश्य मन को प्रसन्न करना होता है, तनाव को कम करना होता है, जीवन में नई ऊर्जा का संचार करना होता है। आरती, अगर मनोरंजन हमें संवेदनशील, रचनात्मक और सकारात्मक बना रहा है तभी उसकी वास्तविकता हम कह सकते हैं कि वो सिद्ध होती है। इसीलिए हमें ऐसे मनोरंजन को अपनाना चाहिए जो ज्ञान भी दे, हमारी संस्कृति और मानवीय मूल्यों को भी समृद्ध करता रहे।
1: बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि हम मनोरंजन के साधन को उस हिसाब से लें कि भाई हमें जो ज्ञान भी थोड़ा सा हमारा बढ़ाए।
0: बिल्कुल, समय तो बदलता रहेगा, मनोरंजन के स्वरूप भी बदलते रहेंगे, लेकिन उसका मूल उद्देश्य हमेशा एक ही रहेगा कि हमारे जीवन को आनंदमय और संतुलित, सार्थक बनाते रहना। आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन स्थापित करके ही हम मनोरंजन का वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो मनोरंजन के साधन को आप बदलते स्वरूप को अपने तरीके से चीज़ों को आप लीजिए, थोड़ा सा परिवर्तन भी ज़रूरी होता है, लेकिन आप ज्ञानवर्धक चीज़ों को देखिए, ऐसी चीज़ों को देखिए जिससे कि आपका पूरा विकास हो, आपके दिमाग का अच्छा, आपको खुद तनाव से मुक्ति मिले और आपको अच्छा महसूस हो, और साथ ही थोड़ा शारीरिक गतिविधि भी रहें, इस तरीके के मनोरंजन के साधन भी करिए, जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह भी हैं, जैसे खेल हैं उनपे भी आप जा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा
1: आप, कथा कहानी वाली बात बहुत अच्छी बताई आप, वो भी चीजें कर सकते हैं। बहुत सारे पुराने ऐसे खेल हैं जिनको हम खेल सकते हैं, बैठ के घर में आपस में बात कर सकते हैं, अंताक्षरी जैसे खेल होते थे वो खेल सकते हैं,
0: जिनमें तो कोई अलग से कोई खिलौना नहीं लाना है, बिना खिलौने वाले खेल भी हुआ करते थे। लेकिन घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही है कि अभी समय है एक अंतराल का।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं।
3: बिल्कुल, तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी।
2: अभी बातचीत से पहले हम सुनेंगे,
3: वही देखा चंचल जी की तरफ कि उन्होंने कहा कि नहीं अभी हम पहले
2: अभी हम गीत सुनेंगे।
3: चलिए पहले
2: भाई मनोरंजन की बात हो और मनोरंजन में गीत ना हो तो कैसे होगा।
3: आपने

0: तो भाई इस गीत के बाद में अब हम बात करेंगे सखी विशेष में, जिन्हें पद्मश्री मिल चुका है, उनकी जो है यानुंग जामोह लेगो, जो कि जड़ी बूटी विशेषज्ञ हैं।
1: बिल्कुल, और यानुंग जामोह लेगो भारत के अरुणाचल प्रदेश की प्रसिद्ध पारंपरिक जड़ी बूटी विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन औषधीय पौधों के संरक्षण, पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को संजोने और लोगों को निस्वार्थ उपचार करने में समर्पित किया है।
0: वो विशेष रूप से कुछ समुदाय हैं उनमें प्रचलित पारंपरिक उपचार पद्धतियों की संरक्षक मानी जाती हैं। 1963 में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के सीका टोड़े गांव में उनका जन्म हुआ और ये वहाँ के समुदाय हैं उनसे ताल्लुक रखती हैं।
1: बिल्कुल, पारंपरिक चिकित्सा में उनका प्रवेश घर से ही शुरू हुआ था। उन्होंने अपने पिता से जड़ी बूटी चिकित्सा सीखी जो

0: कि एक सम्मानित लोक चिकित्सक थे। उनके मार्गदर्शन में पौधों के चयन, तैयारी और उपचार और प्रार्थना से संबंधित पारंपरिक रीति रिवाजों का अवलोकन किया। और लगभग 15 वर्षों के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने 1995 में अपना स्वतंत्र अभ्यास शुरू किया। औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट से बीएससी और एमएससी कृषि की उपाधि प्राप्त की।
1: विश्वविद्यालय की परीक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1988 में अरुणाचल प्रदेश सरकार के कृषि विभाग में काम करना शुरू किया और वो लंबे समय तक वरिष्ठ पदों पर रहते हुए 2023 में वहां से सेवानिवृत्त हुई और इसके बाद उन्होंने अपना पूरा समय पारंपरिक प्रथाओं और सामुदायिक प्रशिक्षण को समर्पित कर दिया। इसके बाद 2009 में उन्होंने इंडिजिनस हर्बल हेरिटेज की स्थापना की जो औषधीय पौधों और घरेलू स्तर पर जड़ी बूटियों के बागानों की खेती, संरक्षण और शिक्षा देने की पहल है जिसके माध्यम से पूर्वजों के ज्ञान को व्यवहारिक खेती से जोड़ा गया है।
0: और लेगो के योगदान का एक मुख्य पहलू है पुनर्जीवन और ज्ञान का प्रसार। बुजुर्गों द्वारा ज्ञात जड़ी बूटियों की सूची बनाना, उनकी प्राकृतिक संरक्षण को प्रोत्साहित करना और नर्सरी एवं रसोई के खेतों में दुर्लभ प्रजातियों की खेती करना।
1: स्वदेशी हर्बल हेरिटेज के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जड़ी बूटियों के बारे में शिक्षित किया। अरुणाचल प्रदेश में स्वदेशी चिकित्सा के पारिस्थितिक आधार को मजबूत करते हुए उन्होंने प्रतिवर्ष लगभग 5000 औषधीय पौधों का रोपण करने में भी बहुत बड़ी सहायता प्रदान की है।
0: और पिछले कई दशकों से यानुंग जमाहलिगो ने पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोग उनसे संपर्क करते रहे जिनमें पाचन संबंधी और त्वचा संबंधी समस्याओं से लेकर श्वसन संबंधी शिकायतें और गुर्दे की समस्याएं बहुत सारी चीजें शामिल है।
1: और आरती इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, कह सकते हैं कि बड़ी बीमारियां भी हैं उसमें, और उन्हें उनका भी वो उपचार करती हैं। और पद्म पुरस्कार दस्तावेज 10,000 से अधिक लोगों के लाभ का दावा करते हैं। लोग लेगो अक्सर ऐसे विश्वास को व्यक्त करती हैं जो पारंपरिक मूल्यों के अनुरूप हैं, यानी कि वो कहती हैं कि प्रकृति में ही बीमारियों के समाधान भी हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात भी है। ये एक ऐसा विश्व दृष्टिकोण है जिसे वे पौधों के संरक्षण के संदेश के साथ जोड़ती हैं। लेगो का अभ्यास औषधि पौधों और जड़ी बूटियों के जो अर्क होते हैं उस पर केंद्रित है जिन्हें काढ़े, पाउडर, पेस्ट या तेल के रूप में तैयार किया जाता है। उनके प्राकृतिक और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें 2007 में सृष्टि सम्मान, 2013 में पारंपरिक वैद्य रत्न और 2019 में अरुणाचल स्टेट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और इसके साथ ही भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है।
1: तो बस लोग उनसे इसी तरह से चिकित्सा लाभ लेते रहे और वो बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य में इजाफा करती रहे, यही शुभकामना है। सुनते हैं गाना।
2: हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ।

0: शमशाद बेगम और चितलकर की आवाज में पतंगा फिल्म का गाना था आरती, और हमने एक गाना सुनवाया था अपलम चपलम, और हमने एक दिमागी कसरत या पहेली पूछ ली थी अपने सुनने वालों से कि उस गाने में दो बहनों की आवाज, वो कौन सी दो बहनें हैं। तो बहुत सारे जो गाने हमने बाद में भी सुनाए ना, उनके लिए भी हमारे श्रोताओं ने फिल्म का नाम कौन सा है, गायक गायिका कौन से है, वो सारी जो पूरी जानकारी है वो लेकर भेजी है। लेकिन फिलहाल वो हम बता दें कि वो आजाद फिल्म का गीत था, आवाज थी लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की। और बात है दिमागी पहेली की,
1: बिल्कुल,
0: तो पहेली जो है वो दिमागी कसरत करवाती है, और दिमागी कसरत के लिए क्या क्या हो सकता है इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी,
1: बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो कौन सा आप पहले पढ़ रही हैं संदेश?
0: एक संदेश में लिखा है कि मुझे और मेरी बहन को बचपन से ही नियमित अखबार में आने वाली जो वर्ग पहेली होती थी ना, उन्हें भरने का बड़ा शौक रहा है, और ये बच्चों से लेकर बड़ों तक हर आयु वर्ग के लिए पहेलियां लाभदायक होती हैं। कुछ मिनट में पहेलियां सुलझाना दिमाग के लिए उतना ही उपयोगी है जितना शरीर के लिए नियमित व्यायाम। हम किसी पहेली का उत्तर खोजते हैं तो हमारा मस्तिष्क तर्क, कल्पना, स्मरण शक्ति और सूझबूझ का एक साथ में उपयोग करता है। ये मानसिक अभ्यास सोचने समझने की क्षमता को निखारता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। बहुत सही बात लिखी है इन्होंने कि एक साथ कितनी चीज़ें जुड़ जाती हैं।
1: बिल्कुल। तो और एक हमारे जो श्रोता हैं वो भी लिखते हैं कि शारीरिक जो शारीरिक कसरतें हैं उनके साथ दिमागी कसरतें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। वैसे हर रोज़ सुबह 5 बजे उठकर बिस्तर पर हल्की कसरत करने के बाद प्राणायाम व्यायाम कर लेता हूँ, साथ में रेडियो पर विविध भारती भी सुनता रहता हूँ, दिमागी मनोरंजन रूपी कसरत भी हो जाती है। रही बात पहेलियों की, तो न्यूज़पेपर में हर रोज़ आ रहे क्रॉसवर्ड्स पजल सॉल्व करके टाइम पास करने के साथ साथ दिमागी कसरत भी हो जाती है।
0: बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पहेलियां ही नहीं, मैं जो सखी सहेली और सुरीला सफर प्रोग्राम में कमेंट्स लिखता हूँ उसके लिए भी शब्दों और वाक्यों को सोचता हूँ और उससे मेरी दिमागी कसरत होती है। जो लेखन का कार्य करते हैं बिल्कुल उनके लिए हर बार नए शब्द चुनना, और जो काव्य गद्य लिखते हैं क्योंकि एक जैसा ना हो, एक रास्ता ना लगे, हर बार सुनने वालों को पढ़ने वालों को नया लगे, इसके लिए नए शब्दों को सोचना, नई रचनात्मकता लेकर आना अपने लेखन में, ये बहुत बड़ी दिमागी कसरत है।
1: और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पहेलियां सुलझाना एक बेहतरीन मानसिक व्यायाम है, ये ना केवल हमारे दिमाग को सक्रिय और चुस्त रखता है बल्कि सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति और याददाश्त को भी बढ़ाता है। दिमागी कसरत के कुछ मुख्य फायदे भी हैं, जैसे कि एकाग्रता में सुधार होता है, पहेलियों को समझने और उनका जवाब खोजने से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है, समस्या सुलझाने का कौशल आता है, ये हमें किसी भी स्थिति में लीक से हटकर सोचने में मदद करती हैं, और साथ ही नए शब्दों और तर्कों का उपयोग करके दिमाग की नसें भी मजबूत होती हैं और नई यादें बनती हैं और कुछ नया और मजेदार भी होता है, इसे हमें तनाव से राहत मिलती है।
0: हमारे श्रोता ने तो बहुत सारी पहेलियां लिखकर भेज दी हैं और अंत में उन पहेलियों के जवाब भी लिखकर भेजे हैं।
1: अच्छा
0: और देखिए एक बड़ा सुंदर संदेश है, पहेलियों के विभिन्न पहलुओं और सुरागों यानी उनके क्लूज को याद रखने से शॉर्ट टर्म मेमोरी मजबूत होती है, ये हमारे श्रोता ने लिखा है। आगे ये कहना चाहते हैं कि समस्या सुलझाने की क्षमता, पेचीदा सवालों को हल करते समय मस्तिष्क के वे हिस्से सक्रिय होते हैं जो तार्किक सोच और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं, एकाग्रता और धैर्य, एक सही उत्तर तक पहुंचने के लिए गहराई से सोचना पड़ता है जिससे फोकस और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार होता है।
1: बिल्कुल। और सबने इसी तरह से लिखा है कि पहेलियां वास्तव में मस्तिष्क के लिए बेहतरीन दिमागी कसरत है, हमारी श्रोता कहते हैं ये हमारी सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति और रचनात्मकता को चुनौती देती हैं जिससे मानसिक विकास होता है।
0: तो भाई अब थोड़ा सा मनोरंजन कर लिया जाए,
1: एक गीत
0: सुने।

0: आरती तुम सच सच बोलो कि बारिश जब होती है तो कई बार ना चटपटा खाने का मन करता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानिकारक चीज है।
1: क्योंकि मैं खाती हूँ ऐसा।
0: हाँ, तुम बहुत चटोरी हो, ये बात पहले भी श्रोताओं के सामने तुम मान चुकी
1: हो
0: कि तुम बड़ी चटोरी हो। और बारिश में भी चटपटा हम देख के, जब हम देखते हैं कि तली भुनी चीजें बन रही हैं, कहीं पकौड़े हैं या कुछ और है, चाट बन रही
1: है, मन नहीं मानता है फिर तो एकदम से।
0: लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने तुमसे सवाल किया कि स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए इन चीजों को तुम कितना अनदेखा अनसुना करती हो, अपनी नाक कान बंद कर लेती हो।
1: बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ मैं कि बारिश के मौसम में मैं बहुत ही कम, कभी खा लिया अगर पकौड़े खा लिए तो फिर मैं उस दिन बहुत ही हल्का, कभी एक टाइम खाना खाती हूँ वो भी बहुत ही हल्का सा खिचड़ी ले लिया कुछ इस तरीके का, क्योंकि ना बहुत ज्यादा हैवी जब हो जाता है ना तो वो आपकी परेशानी कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: आपको अपच की समस्या इस मौसम में बहुत जल्दी हो सकती है, और आपकी जब पाचन समस्या अगर जवाब दे गई तो वो बहुत सारी समस्याएं एक साथ लेकर आ जाएगी। इसीलिए कोशिश करें कि इन दिनों में साफ उबला हुआ पानी पिए या फिर फिल्टर किया हुआ पानी पीजिए, ताजा और गर्म भोजन करें, खुले में जो भी बिकने वाली खाद्य पदार्थ हैं उन्हें खाने से बचें।
1: बारिश में तो बिल्कुल भी बाहर का ना खाएं तो अच्छा है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं होता है कि वो किस तरीके से बन रहा है, या क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत बहुत ज्यादा बारिश पड़ी है उसके बाद हम गए हैं तो फिर बहुत नहीं बिकते हैं वो सामान, तो किस तरह से हम खा रहे हैं, उसी समय का बना हुआ है, ताजा है या बहुत देर का रखा हुआ है, तो वो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है।
0: और हम सिर्फ खान पान की ही बात क्यों करें, भाई बारिश में कई बार आसपास में पानी जमा हो जाता है, कुछ ऐसी चीजें होती है ना गड्ढे जहां पानी सूखता ही नहीं है, कुछ ऐसी अगर चीज रखी है हमारी छत पर, हमारे आंगन में, गलियारे में, वहां पानी भर गया, वो सूख नहीं रहा, तो वहां मच्छर बहुत जल्दी पनप सकते हैं, जो बहुत सारी बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इन्हें लेकर आ सकते हैं, तो वहां पानी का भराव ना होने दें। और घर में भी मच्छरदानी या मच्छर भगाने वाले जो अन्य साधन हैं जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचाएं उनका उपयोग कर सकते हैं। फल सब्जियां जो भी आप बाजार से लेकर आए उनको धोकर अच्छी तरह सुखाकर फिर उपयोग करें, तो ये सारी सावधानियां रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और साथ ही अगर हम कहीं से बाहर से भीग गए, भीग कर आए तो तुरंत कपड़े बदलें और अच्छे से उसमें हम स्नान करें या कुछ इस तरह की चीजें करें, और जिससे कि ना भीगे ना रहें।
0: और बच्चों और बुजुर्गों की स्वास्थ्य के लिए खास तौर पर ध्यान रहना देना होता है, क्योंकि इनकी जो इम्यूनिटी पावर है या रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है, इसीलिए इसमें इस मौसम में फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होने की संभावना होती है। तो मौसम के अनुसार हल्के और पूरे शरीर ढकने वाले कपड़े भी आप बच्चों को पहना सकते हैं और बुजुर्गों के लिए भी इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत ज़रूरी भी है ये चीज़ें करनी। और साथ ही हमारे श्रोता भी हैं, वो भी लिख रहे हैं कि वो कहते हैं कि बारिश के मौसम में स्वास्थ्य, सुरक्षा और यात्रा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ताज़ा और गर्म भोजन करें, बाहर जाते समय रेनकोट या छाता साथ में रखें, सड़क पर जल भराव और खुले हुए तारों से आप दूर रहिए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि बारिश होती है उस समय अगर कोई खुला हुए तार पड़े हुए तो बहुत ये जानलेवा भी हो सकता है, तो और भीगने के बाद तुरंत सूखे कपड़े पहन लीजिए और पैरों को अच्छी तरीके से सुखा लीजिए।
0: हमारे एक श्रोता ने संदेश में लिखा है कि बारिश के मौसम में हमेशा हाइड्रेटेड रहें, यानी कि पानी की कमी अपने शरीर में ना होने दें। मौसम ठंडा होने के कारण अक्सर कर लोग कम पानी पीते हैं जिससे डिहाइड्रेशन होने की संभावना रहती है। भरपूर मात्रा में गुनगुना या फिर साफ पानी पिएं, ताज़ा और सुपाच्य भोजन हो इसका ध्यान रखें, क्योंकि बारिश में पाचन शक्ति थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, तो बाहर का तला भुना खाने की बजाय खिचड़ी, दलिया, सूप और इस तरह का हल्का भोजन करें।
1: बिल्कुल, और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बारिश के मौसम में नमी और बढ़ते प्रदूषण के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, स्वस्थ रहने के लिए हमेशा उबला हुआ फिल्टर किया हुआ पानी पिएं, और जो खाने जो बाहर सड़क पर बिक रही हैं चीज़ें और जो ढकी हुई नहीं है उनको आप खाने से बचिए, उन्हें मत खाइए, भीगने पर तुरंत सूखे कपड़े पहने और मच्छरों से बचने के लिए किसी चीज़ का आप उपयोग कर सकते हैं।
0: हमारे श्रोता ने लिखा है कि बरसात के मौसम में नमी और दूषित पानी के कारण डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार और पेट का संक्रमण, इन सब का खतरा बढ़ जाता है, इनसे बचने के लिए हमेशा उबला हुआ शुद्ध पानी पिएं, स्ट्रीट फूड से बचें, मच्छरों के बचाव के लिए हमेशा घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, और जैसा हमने बताया भी था कि मच्छरदानी भी आप उपयोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, एक श्रोता है जो लिखते हैं कि बारिश में भीगने से बचें और अगर भीग जाएं तो घर आते ही सादे या गुनगुने पानी से नहा लें और सूखे कपड़े पहने, हाथों को अपने साफ रखें बैक्टीरिया से बचने के लिए, समय समय पर हाथों को साबुन से धोते रहें, आंखों के संक्रमण से बचने के लिए, जो बरसात में अक्सर ऐसा होता है कि आंखों का आना या जैसी कंजक्टिवाइटिस जो है वो हो जाता है, उसका खतरा बढ़ जाता है, तो अपनी आंखों को बार बार छूइए मत और साफ पानी से उन्हें धोइए।

0: उबला, स्वच्छ पानी, हाथों की सफाई, इन चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जल्दी से जल्दी सूखे कपड़े पहन लेने चाहिए ताकि सर्दी जुकाम से बचा जा सके। और ये तो बहुत सही बात है कि कपड़े एक बार गीले हो गए और लगातार बारिश है तो उनको सुखाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या होती है। और नमी वाले कपड़े अगर हम पहने रहेंगे तो शरीर पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बरसात का मौसम सतर्कता हटी दुर्घटना घटी जैसा होता है, थोड़ी सी भी लापरवाही आपको अस्पताल पहुंचा सकती है, इसलिए स्वच्छता को अपनी प्राथमिकता बनाएं। अगर आपको या परिवार में किसी को भी तेज बुखार, अत्यधिक थकान, उल्टी या दस्त की शिकायत हो तो खुद डॉक्टर बनने के बजाय तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सक से आप परामर्श करिए।
0: और अब मुझे लगता है कि हमें एक गीत सुन लेना चाहिए और ये होगा आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: सखी सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा, दीजिए चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव को अनुमति। नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अफलोंग केंद्र है। दोस्तों, इस समय स्टूडियो के घड़ी में 4 बजने ही वाले हैं। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए हिंदी में समाचार।

0: अभी आप वहाँ प्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित रथ यात्रा का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे श्री मोहनलाल मजीठिया हिंदी में और प्रोफेसर रजनीकांत नायक अंग्रेजी में।
1: You are listening to the live broadcast of the Rath Yatra being celebrated at Pavan Kshetra Puri, Odisha. Our commentators were Shri Mohanlal Majithia in Hindi and
2: आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
3: There is an urgent need for us.
4: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1,70,00,000,000 लोग रहते हैं जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न सिर्फ सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICARA के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों पर तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा है कि वे 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी की कल शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। ये हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करने वाली हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने कहा है कि उड़ान योजना के अगले चरण का उद्देश्य 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी बढ़ाना और अगले 10 वर्ष में 4 करोड़ लोगों को यात्रा करने में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में आज उड़ान के अगले चरण पर आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि संशोधित योजना में व्यवहार्यता अंतर्निधि के लिए पात्रता का विस्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय विद्युत मंत्रालय ने हितधारकों के परामर्श के लिए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता 2027 के मानदंडों का आज मसौदा जारी किया है। ये प्रस्तावित मानदंड 2027-28 से 2031-32 की अवधि के दौरान देश में बिक्री के लिए निर्मित या आयात किए जाने वाले M1 श्रेणी के यात्री वाहनों पर लागू होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम के एडजबेस्टन में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से पराजित किया था। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: ये हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे दोस्तों फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, यह आकाशवाणी का अपलम केंद्र है। दोस्तों आइए फिर से सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ, हम रहीम खान पठान बात कर रहे हैं।
0: कहाँ से बोल रहे हैं रहीम जी?
1: परवानी महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे है, मजों में है। 1975 से हम विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे हैं और आज भी सुन रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, हमारे जो श्रोता है वो इतने नियमित है कि हम कई बार हैरान हो जाते हैं जानकर कि विविध भारती के कार्यक्रमों के अलावा उनके जिंदगी में और कुछ है ही नहीं।
1: देखिए सर, खास तौर से एक बात बताना चाहेंगे हम आपको, नहीं बल्कि हमारे सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, कि देखिए आकाशवाणी एक ऐसी माध्यम है के जरिए से हमारा काम भी चलता है और हम प्रोग्राम भी सुन पाते हैं। रही दूसरी बात, अभी देखिए आज के तारीख में जवान बच्चे, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे ज्यादा से ज्यादा मोबाइल की ओर जा रहे हैं और कम उम्र में उनको चश्मा लगने की संभावना हो रही है।
0: जी, आपने एक ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान दिलाया है और वाकई ये समस्या हर घर में है कि बच्चे जो है मोबाइल से लगे रहते हैं और उनकी आंखों के अलावा उनके दिमाग में भी जो है, आप देखिए ना कितनी तरह की बातें घर कर गई हैं जो बातें उस उम्र में नहीं होनी चाहिए और इसलिए इतने क्राइम हम आजकल देख रहे हैं, सुन रहे हैं। छोटी छोटी उम्र में बच्चे क्राइम कर रहे हैं, ये सब मोबाइल की ही देन हो रही है।
1: हम ये चाहते हैं सभी माता पिताओं से, बच्चों को, बच्चे देश के भविष्य होने के कारण ऐसा है कि आपको बच्चों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है और सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ाई में ध्यान देना है, मोबाइल में नहीं देना है। और हम बच्चों को पढ़ाई करेंगे अच्छे से अच्छे, जैसा आप आलोचर विविध भारती से बात करते हैं, हमारा देश पूरा आपकी आवाज सुनता है और हम तो रात दिन रेडियो के साथ ही रहते हैं। जैसा ही प्रोग्राम चलता है तो हम रेडियो लगा के बैठ जाते हैं, हमारा काम भी चलता है और रेडियो का प्रसारण भी चलता है।
0: बहुत बड़ा संदेश आपने दिया है कि बच्चे आखिर किस दिशा में जा रहे हैं।
1: हम यहाँ पे परभणी महाराष्ट्र में हम बिल्डिंग आरसीजी बिल्डिंग वर्कर का काम करते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रहीम साहब, कि आप खुद ये समझ रहे हैं कि आपको शिक्षा नहीं मिल पाई या नहीं ले पाए और आपको इतनी धूप में इतनी मेहनत का काम करना पड़ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश आपने हमें दिया है। अब बताइए आपकी पसंद का कोई गीत
1: हमें। दीदी आज के इस प्रोग्राम में अमर अकबर अंतोनी फिल्म का गीत सुनना है, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे, ये गीत सुनना है।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना।
1: जी राम स्वरूप रेखवाल बोल रहे हैं, ग्राम भगौता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से।
0: राम स्वरूप जी स्वागत है आपका, कैसे हैं राम स्वरूप जी?
1: बढ़िया है आपकी कृपा से, आप कैसी हैं मैडम जी?
0: हम भी अच्छे हैं, और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
1: हमारे यहाँ तो बारिश हो चुकी है मैडम जी, झमाझम बारिश हो गई, अभी दो तीन दिन से पानी बस नहीं गिरा है।
0: अरे वाह,
1: बहुत बादल हो रहे हैं,
0: ये तो बहुत अच्छी बात है ना
1: जी। गाना सुना दीजिए, फैरवी मूवी का है और ओम नमः शिवाय ऐसे गाना है।
0: अच्छा चलिए, अच्छी बात है, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते।
1: मैं आपका शुभ चिंतक बाहुबली फुरसुले छत्रपति संभाजी नगर से संवाद कर रहा हूँ, मंदाकिनी जी।
0: जी जी।
1: विविध भारती तो मैं करीबन 30 साल से मैं जुड़ा हूँ। विविध कागज अनेक कार्यक्रम का प्रचलन होता था बहन जी, और जो एक मंथन कार्यक्रम रहता था उसमें तो हमारे विचारों को चालना और आपस में मेलजोल होता था बहन जी।
0: जी जी।
1: मेरी उम्र 84 चालू है, अभी तो मैं घर में ही बैठा हूँ आराम से, और आपसे गुफ्तगू करने का इंतजार कर रहा था। सौभाग्य से मेरी बात भी आपसे चालू है, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है।
0: जी, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे इतने पुराने श्रोता या यूं कहें इतने सीनियर श्रोता हमसे बात करते हैं।
1: ये मेरा जो शौक है, ये करीबन 30 साल पूर्व से मैं इस आकाशवाणी से जुड़ा हूँ, और आकाशवाणी ऐसी एक माध्यम है जिसके जरिए मनोरंजन तो होता ही है, मगर अपने जीवन में कुछ नया सीखने का, कुछ नई बातें, स्वास्थ्य वर्धक, विज्ञान, कला, यह सब बातें हमको प्रदान की है, और उससे सभी हमारे श्रोता बंधु पुलकित होकर तृप्त हो गए बहन जी।
0: बहुत अच्छी बात है। तो बताइए बाहुबली जी, आज कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
1: फिल्म प्यासा का एक गीत में नगमा निगार ने समाज में फैली हुई दुराचारी, दुष्कर्मी, भरे हुई धोखाधड़ी पर अपने अंतस की वेदना, दुख, पीड़ा को बड़े हृदय स्पर्शी शब्दों में बयां किया है। वो गीत के बोल है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। इसमें कवि ने समाज में जो एक अवडंबर और समाज के प्रति जो विद्रोह और उसके प्रति जो शोषण होता है, सच्चाई को उसके ऊपर झूठ का आरोप करके जीतना चाहते हैं, तो इसके ऊपर कवि ने अपने दुख वेदनाओं को बड़ी सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है बहन
0: जी। बिल्कुल, एक कालजयी गीत आप सुनना चाहते हैं फिल्म प्यासा से, जिसे आवाज मोहम्मद रफी साहब ने दी है, और ये गीत जो है हमें झकझोर देता है, और मेरी पसंद का भी ये गीत है। चलिए आप सबके साथ मिलकर हम भी इस गीत

0: भी जाए तो क्या है।
1: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से,
2: मैं पप्पू चंदेल बोल रहा हूँ भोपाल से।
1: भोपाल से पप्पू जी बोल रहे हैं, स्वागत है आपका। कैसे हैं पप्पू जी?
2: बढ़िया हूँ।
1: क्या कर रहे हैं इस समय?
2: ड्यूटी पर आ गए हैं, बेकरी में हैं।
1: अच्छा, बेकरी में काम करते हैं।
2: जी जी जी।
1: क्या समय है आपके आने का?
2: हमारा वही मतलब 11 से 11:30 तक बीच में आ जाते हैं।
1: और रात तक?
2: 9:30 तक।
1: अच्छा, चलिए नौकरी आराम की है ना?
2: जी जी।
1: तो बताइए कैसा लगता है आपको अपने यहाँ काम करने में, बेकरी में क्या क्या आइटम बनते हैं?
2: सभी बनते हैं, मतलब केक है, पेस्ट्री है, अपना बिस्किट है, कुकीज है, सब मतलब ब्रेड है, सभी आइटम मतलब बेकरी आइटम जो है।
1: आप भी कुक का काम करते हैं?
2: जी जी, मैं केक बनाता
1: हूँ। अरे वाह, कौन से केक ज्यादा चलता है आपके यहाँ?
2: नॉर्मली चलता है पाइन एपल ब्लैक फॉरेस्ट जो चलते हैं, मतलब वही आदत है। हाँ, लेकिन पाइन एपल जो है वो मतलब हमेशा ये
1: हर व्यक्ति को पसंद आ सकता है पाइन एपल का, है ना? एक दिन में कितने केक बना लेते हो आप?
2: बन जाते मतलब जैसा अपना ऑर्डर हो, मतलब जैसा डिमांड रहता है, मतलब 60-70 के जैसे निकल, मतलब अपने मार्केट के ऊपर ही जैसा चल जाए।
1: कितना समय हो गया इस काम में आपको लगे हुए?
2: 20 साल हो गए, 2002 से लगा था।
1: 20 साल का अनुभव बोल रहा है आपका। चलिए बहुत अच्छा लगा। तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
2: विधाता पिक्चर का मैम, हाथों की चंद लकड़ियों का, विधाता पिक्चर का।
1: गाने के बोल बताइए।
2: हाथों की चंद लकड़ियों का, ऐसा कुछ।
1: चलिए आपकी पसंद का ही गीत सुनते।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: मैडम जी राम राम।
0: नमस्कार, राम राम, कैसे हैं?
1: जी बहुत बढ़िया है। मदाकिनी जी बोल रहे हो?
0: हाँ जी हाँ जी, अपना नाम तो बताइए आप।
1: हम बोल रहे हैं मैडम जी श्रवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं श्रवण जी?
1: बहुत बढ़िया।
0: चलिए अच्छी बात है। और कैसा चल रहा है आपके शहर का मौसम?
1: सर नहीं, हमारा तो गांव है जी फाजिलका के 10 किलोमीटर के साथ ही। गांव के अंदर अच्छा माहौल है, खेत में मकान बनाया, अच्छा ठंडा हवा का मौसम है, थोड़ा बरसात हो जाता है थोड़ा थोड़ा, और बढ़िया है। अच्छा धान जोन में लग चुका है अभी।
0: क्या धान लगाया?
1: चावल।
0: चावल की खेती हो रही है आपके यहाँ?
1: हाँ जी हाँ जी, वो चावल जैसे पहले समा पोत बीजा था, अब उसको उखाड़ कर दोबारा 20 दिन हो गया लगाए को।
0: अच्छा अच्छा, तो अभी खेती के अनुकूल है मौसम?
1: मैडम जी बरसात चाहिए, कोई परमात्मा से अरदास कर रहे हैं, और वैसे मौसम अच्छा है।
0: मतलब और बारिश की आपको जरूरत है ना?
1: बिल्कुल जी, अब हमारे बरसात की बहुत ज्यादा आवश्यकता है यहाँ चावल के खेती के अंदर।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तकरीबन चावल की गन्ने की खेती है हमारे यहाँ।
0: तो चावल की खेती में क्या ध्यान रखना होता है, ज्यादा से ज्यादा किस बात की सावधानी रखनी पड़ती है?
1: जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है ना, उस तरह हम जमींदार को इसका ख्याल रखना पड़ता है।
0: ये बात तो खैर सही है।
1: दिन में 3 दफा घेरा लगाना, सुबह शाम दोपहर। क्या कोई कीट लग रहा है, कोई रोग लग रहा है, कैसा पानी पूरा हुआ कि नहीं, कहाँ खाद डालना है, कहाँ कम गिरा है, ध्यान रखना पड़ता है बच्चे की तरह।
0: बिल्कुल सही कहा आप। तो 3-4 महीने तक उसको पानी में रखते हैं लगभग, है ना?
1: नहीं जी, 4-5 दिन तक। उसके बाद में फिर एक दिन में पानी पूरा हो गया, दूसरे दिन कम पड़ गया तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर उसमें पानी घुमा दिया, ऐसे मतलब चलता रहता। 4-5 महीने पानी भरा नहीं रहना चाहिए।
0: अच्छा, भरा नहीं रहना चाहिए, लेकिन आपको लगभग ध्यान रखना पड़ता है 4-5 महीने तक कि फसल सूखने न पाए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कि आप एक ऐसे किसान हैं जहां पर लहलहाती फसलों को आप देखते हैं।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अपने खेत खलियान का ध्यान रखिए और बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको हम।
1: मैडम जी क्रांति फिल्म से सुना दो, चना जोर गरम।
0: चलिए, तो खेती तो आप चावल की कर रहे हैं और गाना सुनना चाहते हैं चना जोर गरम। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार।
1: जय बजरंग सुसोता संग बस स्टैंड बंदा विदेशी लक्ष्य को चाय वाले को ना चाय पी दो दीदी।
0: चाय पी रहे हैं आप इस वक्त? चलिए आप पीजिए चाय और हमसे बात करिए।
1: चाय की दुकान है दीदी।
0: अरे चाय की दुकान है आपकी?
1: हाँ दीदी।
0: तो पहले नाम बताइए, फिर आपसे चाय बनाने के तरीके पूछते हैं, किस तरह की आप स्वादिष्ट चाय बनाते हैं।
1: लक्ष्मण रेखवाल।
0: लक्ष्मण जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बंडा वेली जिला सागर मध्य प्रदेश।
0: स्वागत है आपका। अब बताइए आपकी चाय की दुकान कहाँ है, कैसी है, कितनी बड़ी है और कब से खोली है आपने?
1: कम से कम 30 वर्ष हो गए हैं चाय की दुकान को।
0: अच्छा, 30 वर्ष से आप ही संभाल रहे हैं अपनी चाय की दुकान?
1: हाँ, हम संभाल रहे हैं और भाइयों को भी करवा जा रहे हैं। 3 दुकानें हो गई हैं अब चाय की। और नाश्ता है, और नाश्ता भी अब खाना हो तो केक मलाई की बर्फी है, और समोसा है, जलेबी है, मंगोड़ी है, रसगुल्ला है, ये सब मिलेंगे हमारे पास।
0: हमारे तो मुंह में पानी आ गया ये सब सुन के। तो लग रहा है काश आपकी दुकान के सामने होते तो खा लेते थोड़ा। तो बताइए आपकी चाय की क्या खासियत है, कैसे बनाते हैं चाय और कैसे पसंद आती है लोगों को? आते हैं लोग चाय पीने बहुत?
1: हाँ बहुत आते हैं, और चाय ऐसी रहती है कि अच्छा दूध होगा तो चाय अच्छी बनेगी।
0: हाँ, ऐसे तो नहीं एक ही भगोने में बार बार चाय को उबालते रहते हैं?
1: ऐसा नहीं होता है, साफ होते रहते हैं। और ये हमारी तो चाय रखते ही रहती है, धरी नहीं रहती है।
0: हाँ, तो किसमें पिला रहे हैं चाय? कुल्लड़ में पिला रहे हैं या प्लास्टिक की गिलास में पिला रहे हैं?
1: गिलास में, कांच की गिलास भी है और कागज के डिस्पोजल भी है।
0: तो क्या डालते हैं चाय में, फटाफट बताइए और फिर अपनी पसंद का गीत सुनिए। कैसे बनाते हैं चाय?
1: हम चाय बिल्कुल अच्छी बने तो अच्छी खोला लेते हैं, उसमें शक्कर पत्ती इलायची भी डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। जैसे ठंडों में अदरक डालते हैं
0: और गर्मी में इलायची।
1: हाँ
0: चलिए, कौन सा गीत सुनवाएं आपको बताइए?
1: आज मोहरा पिक्चर है, ना कजरे की डाल ना मोतियों की हार, तुम कितनी सुंदर हो।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका। कैसे हैं बताइए अपने बारे में।
1: मैं तो ठीक हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं त्रिपुरा में रहती हूँ, मैं थोड़ा सा काम वगैरह घर में करता हूँ। मैं ब्लाइंड हूँ तो इसीलिए घर के साथ जो लोग रहते हैं ना, तो उसके साथ थोड़ा सा थोड़ा काम मिलजुल के करता हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो रेडियो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आपका कार्यक्रम हेलो फरमाइश है गीत, और जो 3 बजे शक्तिशैली कार्यक्रम आती है ना, तो उसको बहुत सुनते हूँ, बहुत अच्छा लगती है।
0: अच्छी बात है, आप कार्यक्रम सुनते हैं। तो अपने त्रिपुरा के बारे में बताइए, कैसा है आपका शहर, कैसा है ये जगह? प्राकृतिक रबड़ उत्पादक भी है आपके यहाँ तो त्रिपुरा?
1: हाँ, त्रिपुरा तो रबड़ी खेती है, तो इसका तो ज्यादा लोग रबड़ी खेती करती है। तो हमारा इधर घूमने के लिए बहुत ही जगह है, तो इसके लिए पर्यटक आती है तो घूम के जाती है, बहुत अच्छा लगता है, हरियाली है।
0: कहाँ कहाँ घूमा जाए त्रिपुरा में बताइए।
1: त्रिपुरा में त्रिपुरा माँ सुंदरी टेम्पल है, इसके बाद और बहुत जगह है घूमने के लिए। मैं तो त्रिपुरा माँ का मंदिर में गया था, तो बहुत अच्छी है मंदिर, घूमने के लिए बाहर से लोग आते हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है। और आपके यहाँ पर क्या बांस और बेंत के भी काम होते हैं, उससे बनी वस्तुएं या फर्नीचर बनाए जाते हैं, सजावटी सामान?
1: त्रिपुरा में तो बांस की खेती में बहुत अच्छी है, बांस का जो
0: काफी अच्छा सजावटी सामान बनते हैं ना, और हथकरघे का, हथकरघा का भी काफी काम होता है त्रिपुरा में। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: मैं नाम फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ, दम मरा दम मिटे जाए हम, हरे कृष्ण हरे राम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश विविध भारती
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: स्वागत है आपका प्रेम जी, कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: जी मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और अभी खेत में ही काम कर रहे हैं हम, खरपतवार निकालने का जोरे चला रहे हैं। और बरसात हो चुकी है तो सोयाबीन की फसल लगाई है हमने।
0: क्या तैयारी करनी पड़ती है?
1: आपको बताता हूँ जी, जैसे पहले तो खेत को गर्मी में कुछ समय के लिए खाली छोड़ना पड़ता है, उसके बाद में ट्रैक्टर द्वारा अच्छी तरह से हकाई जुताई होती है और फिर बरसात हो जाती है ना, तो उसमें फिर सोयाबीन की फसल लगाई जाती है।
0: अच्छा, और कितने दिन में फसल बनकर तैयार हो जाती है?
1: जी सोयाबीन की फसल हमारी मतलब आपको बताऊं 2.5 से 3 महीने में पक के तैयार होके कटाई भी हो जाती है। उसके बाद में जो फिर बताऊं आपको, जैसे भरपूर पानी हो जाता है ना, हर जगह कुएं नदियां तालाब भर जाते हैं, तो फिर सोयाबीन के बाद में गेहूं लहसुन और मटर की फसल लगाते हैं।
0: अच्छा अच्छा, लगातार?
1: जी हाँ, लगातार होती है दो फसल, उसके बाद में 3 महीने के लिए खेत को खाली छोड़ना पड़ता है गर्मियों में।
0: अच्छा, फिर उन 3 महीनों में क्या होता है?
1: उस समय खेत को खाली छोड़ दिया जाता है तो जितने भी जीव जंतु होते हैं ना, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं वो गर्मी में खत्म हो जाते, नष्ट हो जाते हैं, फिर से मतलब जमीन की उर्वरकता बढ़ जाती है। और जैसे ज्यादातर मटर की फसल पैदावार होती है ना हमारे यहाँ पे, तो हम मंडियों में बेचते हैं।
0: तो आपको मटर की फसल सबसे अंत में करेंगे आप, है ना, जब सोयाबीन की फसल पक जाएगी उसके बाद गेहूं लहसुन और मटर की एक साथ करेंगे तीनों फसलें?
1: तीनों फसल एक साथ होती है।
0: अच्छा, फिर कटाई भी एक साथ ही होगी या इनमें अंतराल रहेगा?
1: हाँ, जैसे कि लहसुन और गेहूं की कटाई साथ में होती है और मटर तो 2.5 महीने में पक के तैयार हो जाता है।
0: तो फफूंद से बचाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि जब आपने बीज बोए हैं फसल आएगी तो फफूंद भी लग जाती होगी कई बार?
1: जी जैसे तो बीज उपचार करके ही लगाया जाता है और उसके बाद में जब फफूंद होती है कभी कभार तो इल्लियां भी होती है सोयाबीन में, मटर में, लहसुन में, तो इसमें स्प्रे करना होता है रासायनिक कीट का, और वो भी मतलब ट्रैक्टर द्वारा होता है सब काम।
0: अच्छा,
1: और ट्रैक्टर के साथ में मजदूर लगाने पड़ते हैं। मोबाइल एप्स के आने से हमें आपको बताऊं स्पष्ट प्रसारण मिलता है और मतलब कहीं पर भी जाए ना तो साथ में हमारे विद्यार्थी चलता ही रहता है, उसमें हम सुनते हैं सखी सहेली, हवा महल, सेहतनामा के तहत जो पहले भी चलता था ना कार्यक्रम, वो सुनते हैं, और पिटारा के तहत हमने काफी पहले भी पत्रा वाले जो कार्यक्रम आता था ना भारती से, जी उसमें काफी लेटर लिखे।
0: बताइए, इतनी सारी बातें हो गई हैं आपसे, अब कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: फिल्म कराने प्यासा सावन और गाने के बोले मेघा रे मेघा मत परदेश जा।
0: बिल्कुल सही गाना है, चलिए अभी सुनते हैं आपकी पसंद का ही।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नंदाजनी दीदी नमस्ते, मैं दूसरी बार बात हो रही हूँ आपके साथ मेरी।
0: अरे वाह क्या बात है, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवा, तहसील शोर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। दीदी
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: हाँ अच्छे हो, कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। अच्छा बताइए क्या करते हैं आप विजय जी, बात तो हुई होगी आपसे।
1: मैं अभी सोशल वर्कर हूँ दीदी।
0: अच्छा,
1: उम्र अभी 63 है।
0: अच्छा तो समाज के लिए क्या काम करते हैं, विशेष कोई?
1: दिव्यांग के लिए काम करता हूँ, जो कुछ सरकारी योजना आते हैं वो उनके तक पहुँचने का काम मैं करता हूँ।
0: उनको आप बताते हैं कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं उनके लिए लागू हुई हैं?
1: हाँ, वो बताने का, उनका पेंशन, वो जो कुछ करने का,
0: फिर उनकी मदद करते हैं। हाँ ठीक है।
1: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं विविध भारती के सभी कार्यक्रम बहुत बढ़िया आ रहे हैं दीदी, सभी सखी सहेली, हेलो सहेली, हेलो फरमाइश, गीत माला, सभी सदाबहार नगमे, अभी जो शुरू हो गए ना वो मन चाहे गीत, वो भी बढ़िया कार्यक्रम है।
0: उसके लिए आपने लिखा कोई खत? हमें
1: खत मैं लिखने, मैं ब्लैंड हूँ दीदी,
0: लेकिन कार्यक्रम सारे सुनते हैं ना?
1: हाँ सारे कार्यक्रम सुनता हूँ, दिन भर में रेडियो चालू रहता है, मैं कन्नड़ भी सुनता हूँ और इधर मराठी, हिंदी, इधर कोल्हापुर हमारे सांगली आकाशवाणी पास में है वो भी सुनता हूँ।
0: क्या बात है।
1: उसके बाद में 1 बजे से कोल्हापुर आकाशवाणी रिले करते हैं विविध भारती, शाम 6 बजे तक रहता है जी
0: वो सभी कार्यक्रम।
1: मैं AM पर सुनता हूँ विविध भारती का कार्यक्रम, जो हमारे राजकोट, अहमदाबाद, बड़ोदरा, उसके पर सुनता हूँ मैं।
0: क्या बात है, मतलब हर तरफ से आप विविध भारती को सुनते हैं?
1: ओ बिल्कुल,
0: कहीं ना कहीं बैंड चेंज कर करके सुनते रहते हैं कि कहाँ से इस समय आने वाला है।
1: जो रेडियो मेरे पास है, मैं 1970 से रेडियो का शौक है मुझे दीदी, और मैं पहले से मेरे जो ट्रांजिस्टर आते थे ना छोटे छोटे, वो लेके सुनता था।
0: वो अभी भी आपके पास है?
1: अभी भी नहीं, अभी वो नहीं है, अभी बड़े रेडियो, अपर्णा के 2 रेडियो है मेरे पास अभी।
0: अच्छा लगा आपसे बात करके, बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: पैसा फेंको तमाशे देखो, ममता जी और राजेश खन्ना का एक फिल्म है दुश्मन।
0: चलिए फिल्म दुश्मन का गीत सुनते हैं और हम भी सुनते हैं आपके साथ।

0: बेटा ये तमाशा देखोगे?
1: हाँ।
0: तुम बाद में देखेंगे ना?
1: नहीं, मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफा मार के दिखाऊंगा।
0: बेटा यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया, चलो घर चले।
1: नहीं, मुझे अभी देखना है।
0: देखना?
1: हाँ।
0: चल बेटा।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते मंदाकिनी दीदी।
0: नमस्ते नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन जनाब बोल रहे हैं?
1: मैं बडनेरा अमरावती महाराष्ट्र से हिम्मतराव श्रृंगारे बात कर रहा हूँ दीदी आपसे।
0: हिम्मत जी, स्वागत है आपका।
1: कैसे दीदी आप?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छा हूँ दीदी।
0: क्या बात है, अच्छी बात है। क्या कर रहे हैं इन दिनों?
1: मजदूरी का काम करता हूँ दीदी मैं।
0: अच्छा, जैसे
1: बिल्डिंग का काम होता है ना, वहाँ पर काम करता हूँ दीदी मजदूरी।
0: तो क्या टाइमिंग्स रहते हैं? सुबह 7:30 से पहुँच जाते हैं आप वहाँ पर और शाम के 7 बजे तक काम करते हैं?
1: शाम के 5 बजे छुट्टी हो जाती है, 10 बजे जाता हूँ मैं।
0: अच्छा, बहुत मेहनत होती होगी गर्मी में तो और भी।
1: हाँ दीदी, बारिश नहीं हो रही ना अभी इधर अमरावती में, कुछ कुछ जगह हो रही दीदी बारिश।
0: तो बताइए आप वहाँ काम करते हैं, फिर ये प्रोग्राम कब सुनते हैं जैसे आप अभी हमें कॉल कर रहे हैं?
1: अमरावती स्टेशन पे FM लगा हुआ रहता है वो साइट पर, सब मजदूर लोग सुनते हैं दीदी बडनेरा अमरावती में। तो अमरावती स्टेशन है हमारा 101.5 पर आता है, तो वहाँ विविध भारती हमको क्लियर सुनाई देता है।
0: और बीच में कॉल करने की इजाजत है आपको, जैसे अभी आप हमें कॉल कर रहे हैं?
1: हाँ, हम 11 बजे ड्यूटी से छुट्टी निकाल लेते हैं दीदी, आधा घंटा एक घंटे के लिए।
0: अच्छा, बताइए आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है धर्मा और गाने के बोले राज की बात कह दूँ तो की बात राज रहने दो।

0: था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222867028 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का आफलोन केंद्र है। दोस्तों, इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। इसी के साथ ही आज की पहली सभा समाप्त होती है। दूसरी सभा को लेकर शाम के 6 बजे यानी कि 1 घंटे बाद हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कि आपके दोस्त कृष्ण प्रसाद जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

नमस्कार, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। हमारी स्टूडियो के घड़ी में इस समय शाम के 6:28 हुए हैं। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हुए आरंभ करते हैं आज की दूसरी सभा।

दोस्तों, कार्यक्रमों को आरंभ करने से पहले आइए जान लेते हैं इस सब हमें प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर में यानी 6:05 से आप सुन पाएंगे मार कार्यक्रम, जिसमें भक्ति गीत सुन पाएंगे, गॉस्पेल,

चांचिन मावी चंगसन और उनके साथियों के आवाजों में, हेगुई बामले जेमे और उनके साथियों के आवाजों में लोकगीत सुन पाएंगे जेमे कार्यक्रम में शाम 6:25 से 6:45 से आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए जाएंगे हंधियार आंचलिक बातरी।

शाम 7 बजे का समय रहेगा डिमासा कार्यक्रम का, जिसमें गोपीनाथ हफलंगबार और उनके साथियों के आवाजों में सुन पाएंगे लोकगीत। कार्बी कार्यक्रम में सुन पाएंगे आधुनिक गीत रॉबर्ट हंसे और उनके साथियों के आवाजों में। समय रहेगा 7:20। शाम 7:40 पर कुकी कार्यक्रम में भक्ति गीत सुन पाएंगे जुलहोई चोंगलोई और उनके साथियों के आवाजों में। रात 8 बजे का समय रहेगा किसान दोस्तों का, यानी किसान वाणी आप सुन पाएंगे।

रात 8:30 से सुन पाएंगे कुछ हिंदी फिल्मी गीत। 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे समाचार संध्या। गजलों का कार्यक्रम होगा रात 9 से। इस कार्यक्रम में आज आप सुन पाएंगे रंजिशी सही एल्बम से मेहंदी हसन के गाए कुछ बेहतरीन गजलें। और सभा के अंत में यानी कि रात 9:30 से सुन पाएंगे हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रगीत। तो श्रोताओं, ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

दोस्तों समय हो गया है मार कार्यक्रम आरंभ करने का। आइए सुनते हैं कुछ भक्ति गीत इस कार्यक्रम के तहत। गॉस्पेल चांचिनमावी चांगसन और उनके साथियों की आवाजों में।

गॉस्पेल चांचिन मावी चांगसन और उनके साथियों के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आज का मार कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आरंभ करते हैं जेमे कार्यक्रम, सुनते हैं कुछ लोकगीत हिगुई बामले जेमे और उनके साथियों के आवाजों में।

हेगुई बामले जेमे अरुण के साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ ही आज का जेमे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए जाएंगे होंधियार आंचलिक बातरी।

आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए गए हंधियार आंचलिक बातरी अभी आप सुन रहे थे। सभी श्रोताओं का आकाशवाणी के हफलंग केंद्र में पुनः एक बार हम स्वागत करते हैं। और दोस्तों, अब आरंभ करते हैं डिमासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनते हैं लोकगीत गोपीनाथ हफलंगवार और उनके साथियों की आवाजों में।

마게라라고 지에 마이마세 바바이라.

라자니미샤샤 가우야라오 찌가탕구록시 징랭야.

0: सारखे मजांग रे जीफी छाओ बसावा सारखे मजांग रे पंजू मंदिर बुबार लाए सारखे मजांग रे दाउरी ले दाउ लाए सारखे मजांग रे फाय फाय लुगो राव ख्रीब एरा फाय खाजा खाजा मिनी मिनी ख्रीब एरा फाय बिदाखौआ सिलिंखौआ ख्रीब एरा फाय बिदाखौआ सिलिंखौआ ख्रीब एरा फाय फाय फाय लुगो राव ख्रीब एरा फाय खाजा खाजा मिनी मिनी ख्रीब एरा फाय फाय फाय लुगो राव ख्रीब एरा फाय खाजा खाजा मिनी मिनी ख्रीब एरा फाय हाफिसाव बसावा जारखे मजां रे जिफिसाव बसावा जारखे मजां रे पंजु मान्दार बुबार लाय जारखे मजां रे दाउरी ले दाउ लाय जारखे मजां रे फाय फाय लुगो राव ख्रीब एरा फाय खाजा खाजा मिनी मिनी ख्रीब एरा फाय बिदाखौआ सिलिंखौआ ख्रीब एरा फाय बिदाखौआ सिलिंखौआ ख्रीब एरा फाय फाय फाय लुगो राव ख्रीब एरा फाय खाजा खाजा मिनी मिनी ख्रीब एरा फाय फाय फाय लुगो राव ख्रीब एरा फाय खाजा खाजा मिनी मिनी ख्रीब एरा फाय हाफिसाव बसावा जारखे मजां रे जिफिसाव बसावा जारखे मजां रे पंजु मान्दार बुबार लाय जारखे मजां रे दाउरी ले दाउ लाय जारखे मजां रे फाय फाय लुगो राव ख्रीब एरा फाय खाजा खाजा मिनी मिनी ख्रीब एरा फाय बिदाखौआ सिलिंखौआ ख्रीब एरा फाय
1: गोपीनाथ हफलंगबार और उनके साथियों के गाए कुछ लोकगीत आप सुन रहे थे। इस लोकगीत के साथ ही आज का डिमासा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। श्रोताओं, अब आरंभ करते हैं कार्बी कार्यक्रम। रॉबर्ट हंसे और उनके साथियों की आवाज़ों में सुनते हैं आधुनिक गीत

रॉबर्ट हंसे और उनके साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे कुछ आधुनिक गीत। श्रोताओं, इस आधुनिक गीत के साथ ही आज का कड़वी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हफलंग केंद्र है। अब आरंभ करते हैं कुकी कार्यक्रम और सुनते हैं भक्ति गीत जुलहोई चोंगलोई और उनके साथियों की आवाजों में।

जुलहोई चोंगलोई और उनके साथियों के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आज का कुकी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हफलंग केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है किसान वाणी, फीडिंग मैनेजमेंट ऑफ पिगरी। इस विषय पर एक वार्तालाप अभी आप सुनेंगे जैकब एम रंखोल के साथ, और इसे प्रस्तुत करेंगे चुमकी दास और रिनी देव।

0: प्रस्तुत हैं
1: भारत सरकार की कृषि मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम
0: किसान वाणी। श्रोताओं नमस्कार, किसान वाणी के नई कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ रीनी
2: और मैं हूँ चुमकी। स्वागत है आप सभी का किसान वाणी के कार्यक्रम में।
0: आज के इस कड़ी में आपसे जानकारी बांटेंगे सुअर पालन के विषय पर। सुअर पालन या पिगरी फार्मिंग एक लाभकारी पशुपालन व्यवसाय है जिसमें सुअरों को मांस उत्पादन, खाद एवं अन्य उद्देश्यों के लिए पाला जाता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अच्छा स्रोत बनता जा रहा है, विशेषकर उन किसानों के लिए जो कम लागत में अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो श्रोताओं, आरंभ करते हैं आज के इस चर्चा को जो है सुअर पालन के विषय पर। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान जो है डिमाहसाओ के ही किसान भाई जो है जैकब मेसोमचांग रांगखोल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
0: तो जैकब जी, मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहूंगी कि आप पिगरी फार्मिंग सुअर पालन के विषय पर बात करना चाहते हैं, तो सुअर पालन के विषय पर आप थोड़ी सी जानकारी हमें बांटे कि कैसे करना चाहिए सुअर पालन अगर कोई शुरुआत करना चाहे तो।
3: सुअर पालन के लिए हम लोग अनएम्प्लॉय यूथ और अनएम्प्लॉय हाउस होल्ड के लिए बहुत

0: बहुत है कि हम लोग स्मॉल फाइनेंस से बड़ा बिजनेस बना सकता है, कि शुरुआत में ऐसे 10,000 या 20,000 से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे बच्चे लेकर 6,000 से लेकर उसको धीरे धीरे पालन करके, इसको पाल के, इसको दाना उना सब कुछ ठीक करता है तो आपको 6 महीना में बेच सकता है। तो ये सब करने के लिए हम लोग शुरुआत से क्या करना है, पहला फार्मिंग करने के लिए, पहला इसको पालने के लिए, इसका घर बनाने के लिए सुविधा जगह चाहिए,
1: जी
0: और इसमें हमेशा के लिए पानी तो हमेशा ज़रूरी है।
1: जी
0: पानी के साथ में दाना भी तो अच्छी तरह रेडी करना चाहिए।
1: जी
0: कौन सा दाना देने से वो ठीक होगा तो अपना देते समय मालूम हो जाता है। इस तरह हम लोग इस और का बारे में जानना चाहूँगा कि आजकल का अनएम्प्लॉय यूथ लोग से कितना लोग ऐसे बिजनेस करता है, और दूसरा बिजनेस तो बहुत है, फिर भी हम लोग बिना फाइनेंस में,
1: जी
0: छोटा स्मॉल फाइनेंस से हम लोग शुरुआत कर सकता है। कि ये छोटा अगर माइकी लिया, एक दो, एक बेटी एक बेटा लिया,
1: जी
0: तो आपको ये खासी नहीं करके वो बच्चा भी दे देता है। तो वो देख के आपको अच्छा से पालन करेगा तो हमको 8 महीना ही लगता है। 8 महीना से हम लोग आज भी हम लोग भेजा है। इस तरह 8 महीना, 8 महीना होने में इसका 3 महीना को अच्छी तरह पालना पड़ता है।
1: जी
0: अच्छी तरह 3 महीना में आपको जितना इसको हाइजीन बनाना सकता है इसको बनाना पड़ता है। कि हम लोग ये सब पालन के लिए हमेशा इसका हेल्थ हाइजीन को चेक करना चाहिए, हमेशा दाना खाया कि नहीं।
1: जी
0: तो शुरुआत में क्या करना है, अगर दाना सभी लोग ऐसे पका के दे देता है, और दो किस्म का होता है, और एक होता है आजकल पोल्ट्री का दाना भी दे देता है स्वर को, और आजकल पिक फिट जो बोलता है, पिक फिट जो कंपनी से बनाया समर फिट माइल्स करके, ये वाला देता है बैग में 1,800 रुपये। उसमें देख के एक बैग अगर दिया, उसमें इसका बदन देख देख के, इसका हाइजीन देख के कैसा है, वो भरता कि नहीं, वे सब देख के आपको लिव 52 भी देना पड़ता है लीवर के
1: अच्छा
0: लिए। लीवर
1: अच्छा
0: अच्छा होगा तो खाना भी तो इसे ज़रूरी होता है, खाना खाना हमेशा टाइम टू टाइम वो मांगता है। इस तरह हम लोग 6-3 महीने के अंदर में हम लोग अच्छा से देखकर, अच्छा से संभाल के, 3 महीने के बाद तो दाना इतना ज़रूरी बात नहीं है, कि देना तो है, लेकिन इतना 3 महीने के बाद में इतना लोग नहीं खाता है, बड़ा
1: ओके
0: होने के बाद में इतना खाना तो ज़रूरी नहीं है।
1: अच्छा
0: इस तरह हम लोग सुअर पालन के लिए फर्स्टली जहाँ में इसका घर बनाएगा वो मालूम होना चाहिए। घर बनाने के लिए सब सुअर पालना एक सीट जगह में नहीं होना है, एक हिल में होना चाहिए,
1: अच्छा
0: एक साइड में होना चाहिए, घर से थोड़ा दूर रखना चाहिए। और इसका जो खाना देता या जो देता जो बचता है ये सब एक जगह में फेंक के साइड में ही देना पड़ता है, क्योंकि ये सब जो खाना नहीं खाता है, जो खाना बच जाता है, ये सब जो पायखाना होता है, इन लोग पेशाब कर लेता है, ये सब अच्छी तरह साफ सफाई करके दूर में रख देना पड़ता है। अगर ये सब नहीं करेगा इसका बदन में कुछ बीमार हो सकता है। ये सब होकर 3-4 महीना के बाद में वो मालूम हो जाता है कि ये भरेगा कि नहीं, या और भरेगा कि या ऐसे ही रहेगा, हम लोग इसे पता चल जाता है। तो इसलिए थोड़ा इसका घर बनाने के लिए थोड़ा पूरा धूप से देखना जगह पड़ता है, एग्जैक्टली पूरा सन से इसको अटैक करना पड़ता है
1: अच्छा,
0: इसका बदन हाइजीन होने के लिए।
1: धूप जरूरी है।
0: हाँ, धूप ज़रूरी है इसका। हमेशा इन लोग पेशाब करता है, पायखाना करता है, हमेशा इसके लिए टाइमिंग नहीं है, इन्हें उनका हमेशा खाता है, हमेशा पीता है, इसलिए उनके लिए पायखाने के लिए दिन में पेशाब के लिए दिन में 3 बार या 4 बार या हमने उनका कुछ लिमिट नहीं है। इस तरह इन लोग के लिए हमेशा साफ सफाई करके आपको 4 महीना या 5 महीना तक करेगा तो आपको बेच सकता है। 4 महीना 5 महीना तक में बेच इन लोग एक्चुअली पूरा जनरली क्या करता है, 6 महीना में कितना लोग तो बेच देता है,
1: अच्छा
0: 6 महीना में
1: छः
0: अगर
1: महीने
0: अच्छे अच्छा से पालन करने से 6 महीना में बेच सकता है। उसमें नियरली 50-60 किलो तो ऐसे हो जाता है अच्छा पालन करेगा तो, इससे भी ज़्यादा

0: है, कभी समय में 80, 70, 80 भी हो जाता है।
1: तो आपके पास अभी कितना स्वर है?
0: अभी मेरे पास में 5 तो है,
1: वो बच्चे है कि माइकी है?
0: बच्चे हैं। माने हम जैसे पालता, माने सीरियली एक बार से बच्चा तो नहीं लेता है,
1: अच्छा
0: स्टेप बाय स्टेप,
1: अच्छा
0: आफ्टर 4 मंथ्स, 4 मंथ्स बाद में हम लोग ले लेता है,
1: अच्छा
0: 4 मंथ्स के बाद में 2-3 बच्चा ले लेता है एक बार से। इस तरह लेके हम लोग 2-3 स्टेप से कर रहा है। स्टेप तो फर्स्ट का स्टेप तो भेज दिया, अभी 2 स्टेप है, पास हुए।
1: अच्छा, अभी पास्ट हुए ना। तो आपने जैसे कि कहा कि खाने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो
0: हाँ,
1: आप अपने स्वेरे को क्या खिलाते हैं?
0: अभी तो हम लोग और दूसरा सिस्टम हम लोग सोच के, अभी नया सिस्टम से थोड़ा पाल के वो के किसा होता है वो बिजनेस के लिए हम लोग सोचा है। बिजनेस के लिए सोच कर इसे थोड़ा अच्छा पालन करके बिजनेस बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या हम लोग आजकल पिक फीड दे रहा है, पिक फीड दे के हम लोग पालते हैं।
1: तो ये पिक फीड आपको कहाँ से मिलता है?
0: पिक फीड तो मिलता है लामडिंग से भी मिलता है, लोंका से हो जाए, अभी हाफलोंग
1: मतलब
0: से भी मिल जाते हैं,
1: अच्छा वेटनरी से मिलता है?
0: वेटनरी से भी ले सकता है, ऑर्डर कर सकता है, फिर भी हम लोग दुकान से लेते हैं, बाजार से, हाफलोंग बाजार से ले लेते हैं।
1: अच्छा, ये तो बहुत अच्छा बता। ये पिक फीड से उनको कुछ दिक्कत वगैरह नहीं होता है?
0: हाँ, इससे देखने मिलता है कि इसका दाना जो हम लोग पकाता है, पकाते समय जो आइटम जो डालता है, आइटम हम लोग जैसे आदमी लोग भी खाना सब्जी बनाने में मसाला डालता है, इस तरह हमेशा कभी दिन कम हो जाता है, कोई ना कोई कम हो जाता है, इसी समय में हम उनका थोड़ा खाने में कम हो जाता है, थोड़ा अच्छा होने दिन में थोड़ा अच्छा हो जाता है, इस तरह इन उनका जो दाना है अच्छी समय खराब समय हो जाता है। इसलिए पिक फीड में क्या होता है, पिक फीड में ऑल डे सुबह से शाम तक सेम फूड, अगर पिक फीड देगा सुबह भी पिक फीड देता है, दिन में भी देता है, शाम में भी देता है, इसका एग्जैक्ट फूड दिन का दिन मिलता है, तो साल का साल मिलता है, महीना का महीना मिल जाता है, इसलिए इन थोड़ा बढ़ता है।
1: अच्छा, उसमें ग्रो जल्दी होता है
0: हाँ, ग्रोथ जल्दी होता है,
1: पिक फीड जो है ये। मतलब आप दिन में कितना टाइम देते हैं?
0: दिन में 3 बार तो देते
1: दिन
0: हैं।
1: में 3 बार। उसके
0: हाँ,
1: के मतलब जैसे बॉयल करना पड़ता है या वो डायरेक्ट पैकेटिंग ही आता है?
0: नहीं, ऐसे 50 बैग में आ जाता है, 50 बैग में आके हम लोग देने का सिस्टम तो इन छोर का उम्र के हिसाब में हम लोग दे देते हैं, क्या कमती खाता है या बड़ा खाता है, बड़ा से बड़ा खाता है, छोटा से छोटा खाता है, रेडीमेड है, माने देने का सिस्टम क्या है, इसका एक गुट्टा गुट्टा होता है पिक
1: अच्छा
0: फिट का, वो डायरेक्ट फर्स्टली इसको दे देता है, या एक 2 कप दे देता है, उसमें देकर इन लोग ऐसे खा लेते हैं, बच्चा से ऐसे खा लेगा, तो खा के 5 to 10 मिनट बाद में इन लोग खाने के बाद हम लोग जो भूसी बोलता है, भूसी को हम लोग पानी से मिक्स करके, हाँ जो चापट भी होता है, चापट भूसी ये सब भी दे सकता है, ये सब भी हम लोग दे रहा है, ठंडे समय में चापट देता है, ऐसे गर्मी में भूसी देता है, भूसी और पानी मिक्स करके, ठंडा पानी हो या गर्म पानी जो भी चलेगा, वो दे के जो भी आदत करता है वो चला जाता है, अगर गर्म पानी देगा आपको, गर्म पानी नहीं देगा वो नहीं खाएगा।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: उसको आदत
0: इसका,
1: लग
0: हाँ
1: जाता
0: हाँ
1: है।
0: इसका आदत ले जाता है जो भी देगा, अगर थोड़ा इसका पिक फीड के साथ में जो दूसरा जो देता है वो जो मिक्स करता है, वो मिक्स करके कभी दिन अच्छा खाता है, कभी दिन खराब होता है,
1: अच्छा
0: इसीलिए हम लोग ऐसे सिर्फ पिक फीड देने से ठीक, पिक फीड देकर पूरा साल भर खाने से इसका इसके लिए हाइजीन ठीक हो जाता है।
1: हमारे डिमास और डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर देखा जाता है कि जो सुअर पालक वो किचन वेस्ट या फिर रेस्टोरेंट वेस्ट अपने सुअर को खिलाते हैं। तो आप अपने सुअर के लिए ऐसा खाना प्रेफर करते हैं?
0: हाँ, कभी दिन मिल जाता है होटल से या दूसरा कोई जगह, ऐसे वेजिटेबल वेज जैसे हो जाता है घर में, किसी का किचन वेज हो जाता है, इसका ये सब भी दे देता है, ये सब मिक्स करके, ये सब भी पका के, फिर इसको भी पका के इसका पिक फिट के साथ में मिक्स कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा इसको ज़्यादा नहीं दे के थोड़ा थोड़ा दे देता है, ये सब दे के प्लस कर देते हैं।
1: मतलब उसको बैलेंस करना पड़ता है।
0: हाँ,
1: तो पानी का कैसे व्यवस्था करते हैं? मतलब दिन में कितना बार देना पड़ता है?
0: पानी तो देने से तो ठीक है, दिन भर भी दे सकता है, पानी का इसको लिमिट नहीं है, माने हम लोग दाना भी एग्जैक्टली नॉर्मली हम लोग सुबह और शाम को देता है नॉर्मली, नॉर्मली सुबह और शाम को देता है, बड़ा बड़ा होने के बाद। छोटा में हम लोग 3 बार देता है, बड़ा होने के बाद में 6 महीना का बाद में हम लोग 2 बार देता है, पानी मैंने दाना देता है। तो पानी के लिए क्या होता है, पानी तो दिन में इसका जो हम लोग बनाता है दाना देने का जगह, उस जगह में हमेशा रखना पड़ता है।
1: अच्छा।
0: इनका दिन में जितना पानी कहेंगे इतना पेशाब करेगा, इसका पेट के लिए हाइजीन होगा, पेट के लिए ठीक होगा, इसके लिए पानी का जरूरी है। और दिन में उनका नहाने का दिन में पानी देना पड़ता है, देने से क्या होता है उनका भी थोड़ा हाइजीन होता है, उनका पूरा एराइस हो जाता है ना बदन। इस तरह पानी तो सामना में ऐसा भी टैंक लगा कर या सिंटेक्स लगा कर सामना में हमेशा जरूरी है।
2: तो रोज नहलाते हैं सुअर को?
0: हाँ, रोज नहलाता है। गर्मी ऐसे भी गर्मी है, अभी जून जुलाई अगस्त तक तो हम लोग रोज करना पड़ता है।
1: जैसे कि आपने कहा है कि घर थोड़ा ऊपर होना पड़ता है,
0: हाँ।
1: तो ऐसा क्यों, क्यों ऊपर होने से क्या प्रॉफिट होता है?
0: प्रॉफिट होता है सुअर के लिए ठीक हो जाता है, माने हाइजीन होता है, बीमार नहीं पकड़ता है।
1: अच्छा।
0: ज्यादा सही जगह में, ज्यादा अंधेरा जगह में रहेगा या कोना कोने रहेगा, वो तो बीमार लग जाता है।
1: अच्छा।
0: नहीं बढ़ता है, माने ग्रो नहीं होता है।
2: क्या क्या बीमारी पाया जाता है सुअर में?
0: बीमार तो उनका स्पेशली पेट दर्द का ज्यादा होता है, उनका पेट दर्द का भी होता है, और ऐसे बुखार भी हो जाता है उनका।
1: अच्छा।
0: बुखार भी हो जाता है, पेट दर्द भी हो जाता है।
2: तो अगर बुखार होता है तो कैसे पता चलता है?
0: बुखार होता तो उन लोग ऐसे सो ही जाता है नीचे में, खाना नहीं खाकर तो उन खप जाता है, बदन में किस्म किस्म से उन हिला जाता है। तो इस तरह उन लोग हम लोग पता चल जाता है उनका बदन देख के, बदन हिला के
2: टेम्परेचर पता लगता है उनका, जो बॉडी गर्म होता है।
0: हाँ, गर्म होता है उनका बदन, ऐसे गर्म हो जाता है।
1: तो उस टाइम आप क्या करते हैं जब उनका बुखार आता है?
0: तो वेटनरी में जाकर थोड़ा इन उनके लिए मेडिसिन ले लेते हैं, इन उनका भी एक पैरासिटामोल है, इन उनका 1-2 टेबलेट देगा तो इन हर उठ जाता है, फिर उनके रेगुलर खाना फिर चला जाता है।
1: मतलब यही कॉमन बीमारी है, पेट खराब और बुखार, इससे ज़्यादा इतना कुछ नहीं होता है?
0: हाँ, पेट दर्द का ज़्यादा कॉमन है। पेट दर्द का क्या होता है, इन उनका दाना हम लोग माने पिक फिट में इतना नहीं होता है।
1: अच्छा।
0: पिक फिट में पेट दर्द थोड़ा कम होता है।
1: अच्छा।
0: क्योंकि नॉर्मली जो लोग खा लेता है सुबह से शाम तक या महीना भर साल खा लेता है, उनका इतना इफेक्ट नहीं होता है। जो आसपास में जो वेजिटेबल वेज या होटल का वेज जो क्या कलेक्शन करता है, जो कलेक्ट कलेक्ट करके हम लोग पकाता है, ये कलेक्शन फूड में ज़्यादा पेट दर्द मिल जाता है।
2: उसमें मसाला,
0: हाँ, मसाला या कभी जिन तेल ज़्यादा होता है, मसाला ज़्यादा होता है, मुरी ज्यादा हो जाता है।
2: कैसे पकाते हैं फिर जो वेस्ट है?
0: ऐसे मिक्स करके, और दूसरा भूसी चापट या ये सब डाल के इसको मिक्स करके अच्छी तरह पका लेते हैं।
1: जी, ये तो बहुत अच्छा बात है। तो आपने ये जो शुरू किया है सुअर पालन, आप कितने साल से कर रहे हैं?
0: सुअर पालन तो हम लोग 5 साल से कर रहे हैं।
1: 5 साल से कर रहे हैं।
0: हाँ, रेगुलर।
1: तो आपको ये मतलब कहाँ से आपको आइडिया आया कि सुअर पालन करना है, सुअर पालन करने से इनकम अच्छा होता है?
0: हाँ, सुअर पालन के लिए मैंने सोचा तो मैंने स्टार्ट किया जब मेरा नेबर का घर में गया था, उसका गाँव में मुरकोई में गया था, उसमें बड़ा सा फार्मिंग किया वो भी।
1: अच्छा।
0: ऐसे सुअर पालन के लिए इसका नियरली 50-60 समथिंग सुअर पाला है।
1: अच्छा।
0: वो देख के अच्छी तरह जानकारी लेकर,
1: अच्छा,
0: वो पूछ कर क्या क्या देता है,
1: हुँ.
0: वो बीमार होते समय क्या देता है, और इसको दिन में कितना बार देता है, किससे जल्दी बढ़ता है, तो इसको दिन में कैसे इसको पालन करना है,
1: हाँ.
0: इसका घर किस तरह बनाना है, घर का पीछे या आगे के कैसे करना है, सब भी हम पूरा जानकारी लेके। इसके बाद मैं 200 से स्टार्ट किया था।
2: 200 से स्टार्ट किया था।
1: अच्छा।
2: तो जो सुअर का घर है,
0: हाँ,
2: वो कैसे बनाते हैं आप लोग?
0: सुअर का घर तो मैंने स्टार्ट किया जैसे नीचे में ऐसे पाला था शुरुआत में, ऐसे छोटा फाइनेंस में मैंने भी स्टार्ट किया था ऐसे फार्म के लिए। मैं ऐसे बड़ा बिजनेस के लिए मैंने नहीं सोचा था कि ऐसे ऐसे बढ़ेगा, ऐसे करेगा, ऐसे फ्यूचर में चलते जाएगा, ये सब मैंने कुछ ना नहीं सोचा था। इसलिए फाइनेंस भी नहीं था, फाइनेंस का ज़रूरी है ये सब पालन में, तो इसीलिए मैंने ऐसे नीचे में पाला था। तो कितना, 1 साल 2 महीना का बाद, इसका बाद 1-2 बेचा, दो बेचने के बाद मैंने सोचा था कि ये सब करने के माने हम लोग दो पाल के दो पालने का बाद में हम लोग बेच देते हैं, घर खाली हो जाता है। तो घर खाली होने

0: का समय नियरली 4 to 5 वीक्स ऐसे हो जाता है तो घर तो खराब हो जाता है,
1: जी
0: देखभाल नहीं होता है
1: जी
0: तो घर तो खराब हो जाता है। इसलिए मैंने अभी पूरा ग्रिल से बनाया है लहा से,
1: अच्छा
0: तो नीचे प्लास्टर देकर, प्लास्टर
1: जी
0: अच्छी तरह देकर ग्रिल बना के इसको भीतर में ग्रिल ग्रिल दे देने के क्या होता है, ग्रिल देने से ग्रिल या लकड़ी हो जो भी हो सो लोग ऐसे इचिंग हो जाता है,
1: जी
0: इचिंग लगने का समय में इन लोग बदन हिलाना पड़ता है, पूरा घर तोड़ देता है इन लोग, इसलिए खा लेता है कभी
1: अच्छा
0: दिन। इसलिए चोर चोर के लिए घर स्पेशली स्ट्रोंग बनाना पड़ता है,
1: मजबूत
0: थोड़ा
1: होना
0: सा
1: पड़ता
0: हाँ
1: है।
0: हाँ थोड़ा सा स्ट्रोंग बनाना पड़ता है, उनकी इचिंग, जब इचिंग होता है इस समय में जबरदस्त कर लेता है,
1: हाँ
0: घर
1: हाँ
0: तोड़
1: हाँ
0: देता
1: हाँ
0: है।
1: तो आप कौन सा ब्रीड पालते हैं?
0: ऐसे तो हम तो ऐसे कलेक्शन कर लेते हैं, मैंने कहीं जगह अच्छा मिलता है उसी जगह का ले लेते हैं।
1: तो ज्यादातर कहाँ से आप लेते हैं?
0: ऐसे कलेक्शन है, अभी जो पाला जो 3 जन है वो तो मुरकोई से लिया है, सफा वाला जाए जो ऑस्ट्रेलियन बोल जो बोलता है ऑस्ट्रेलियन का ये वाला
1: ऑस्ट्रेलियन।
0: पाला है। तो पीला का जो है वो तो लांगडिंग से लिया है, लांगडिंग से थोड़ा का माँ तो बड़ा है इसलिए हम लोग भी ऐसे देख कर लिया है।
1: अच्छा, कौन से ब्रीड में ज्यादा फायदा होता है?
0: फायदा तो ऑस्ट्रेलियन में ज़्यादा होता है, मैंने पालन का ऊपर में है ये
1: पालन
0: सब,
1: के ऊपर में है।
0: हाँ पालन के ऊपर में है। अभी ऑस्ट्रेलियन लेगा, ऑस्ट्रेलियन का पालन अलग होता है, हाँ एंड उनका खाना सिस्टम थोड़ा डिफरेंस है दूसरा से,
1: अच्छा
0: तो खाना भी बहुत एंड उनका ज़रूरी होता है,
1: अच्छा
0: एंड
1: ज़्यादा भी
0: उनका
1: खाता
0: हाँ
1: है।
0: ज़्यादा भी खाता है, लंबा भी होता है एंड उनका ऑस्ट्रेलियन के लिए। तो दूसरा ऐसे लोकल में जो बेचता है ये सब भी तो बढ़ता है, फिर भी ऑस्ट्रेलियन जैसा नहीं होता है, इसका एग्जैक्ट थोड़ा तो डिफरेंस होता है,
1: क्या डिफरेंस होता है ऑस्ट्रेलियन में और
0: इसका ग्रोथ में डिफरेंस हो जाता है, 3 महीने बाद में ऐसे पता चल जाता है ये ऑस्ट्रेलियन है या ये बड़ा जात है या बड़ा छोटा जात है, इसे पकड़ लेता है। जो डिमासो में जो हाफलोंग में जो बेचता है जो बच्चा लेकर यहाँ में बेचता है ये सब क्या होता है कलेक्शन, इन लोग
1: जी
0: जहाँ भी मिलता है इन लोग भी एक बिजनेस होता है, बिजनेस के लिए इन लोग लेता है, कोई जगह से मिलता है उसी जगह से उठा दे, कोई जगह से मिलता है वो उठाता है, पूरा कलेक्शन एक माह का भी नहीं होता है जो पूरा कलेक्शन का होता है,
1: अलग-अलग।
0: हाँ अलग अलग से होता है, इसलिए कोई भरता है कोई हरता है इसे।
1: अच्छा श्रोताओं, हम बात कर रहे थे सुअर पालन के विषय पर। इस विषय को हम जारी रखेंगे, इससे पहले आइए सुनते हैं एक स्थानीय संगीत।

0: श्रोताओ, हम बात कर रहे थे सुअर पालन के विषय को लेकर। चलिए इस विषय को जारी रखते हैं। तो एक मादा सुअर से जो माइकी होता है,
1: हाँ जी,
0: कितना बच्चा आ जाता है?
1: आता है 15 या 16 कभी कभी।
0: एक
1: हाँ,
0: सुअर से।
1: एक माह से 15 या 16 ऐसे तक भी होता है। नॉर्मली ऐसे 10 तो ऐसे नॉर्मली आ जाता है, 10 तो ऐसे आ जाता है बना।
0: तो जब नया बच्चा आता है तो उसका पालन पोषण कैसे होता है, कैसे आप लोग देखभाल करते हैं?
1: ऐसे माइकी का पालन तो अलग है, माइकी पालना तो इसका पालन ही अलग है। पालना बहुत मेहनत है, मेहनत भी तो इसको 6 महीना अच्छी तरह पालना पड़ता है कि इसका जब गाभिन होगा, प्रेग्नेंट होने के समय में आपको अच्छी तरह रोज इसको देखना पड़ता है, इसका बदन छोड़ना पड़ता है, क्या ये बीमार है या कुछ है, ऐसे पेट दर्द भी ये सब नहीं होना है। इसका बच्चा के लिए सोचना है, इसका ब्रीड के लिए, अच्छा होने के लिए इसको अच्छी तरह देखभाल करना पड़ता है। और 6 महीना अच्छा बिजनेस के लिए तो वही है, लेकिन इसका ज़्यादा फाइनेंस होता है माँ के पालन में, फाइनेंस ज़्यादा होता है,
0: जी
1: क्योंकि 6 महीना के लिए आपको पिक फिल लेना पड़ेगा।
0: जी
1: एग्जैक्टली 6 महीना तो ऐसे रहेगा, 6 महीना तो बच्चा के इसको माँ के लिए लेना पड़ेगा। और इसका दाना भी एक दूसरा क्वालिटी का होता है, पिक फिट बोल के। सिर्फ पिक फिट का ये 2 किस्म का है।
2: मतलब प्रेगनेंसी में उनको पिकफिट का दूसरा जो वर्षन है वो देना पड़ता है।
1: हाँ, एक ब्रांड का खाना देना पड़ता है इसको, थोड़ा हाइजीन होने के लिए,
2: मतलब
1: थोड़ा ताकत।
2: स्पेशली
1: हाँ
2: वो प्रेगनेंस के लिए
1: हाँ
2: होता
1: हाँ
2: है।
1: हाँ और विटामिन भी होता है साथ
2: अच्छा
1: में, वो देना पड़ता है
2: अच्छा
1: रोज जो खाना खाने समय में।
0: तो वैक्सीनेशन वगैरह कुछ ज़रूरी होता है?
1: वैक्सीनेशन तो आज तक तो मैंने तो नहीं किया,
0: नहीं किया।
1: माने हाँ कभी समय में ज़्यादा गर्मी हुआ तो उसमें यो दे देता है, पानी के साथ में ORS दे देता है
0: जी
1: कभी दिन। तो नॉर्मली ऐसे Leaf 52 तो हमेशा देना तो ठीक है, यानी उनके लिए खाना के लिए इसका अप डाउन नहीं होगा, सीरियल ही खा सकता है Leaf 52।
2: तो आपने ये सुअर पालन के विषय पर कई, जैसे कि हमारे वेटनरी डिपार्टमेंट है या फिर केवी के डिपार्टमेंट है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ से कुछ ट्रेनिंग वगैरह लिया है?
1: ट्रेनिंग, हाँ स्पेशल ट्रेनिंग RSETI का जो ट्रेनिंग होता है
2: हाँ
1: दिमासो में,
2: हाँ
1: सब का हम लोग ऐसे छोटा सा ट्रेनिंग लेता है 1 to 2 weeks का।
2: अच्छा, तो वो ट्रेनिंग में आपको जो भी बताया गया, जो भी सिखाया गया, वो आप अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं?
1: हाँ, वो इस्तेमाल करके आज तक तो बिजनेस तो चलते हैं।
2: चलते हैं
1: हाँ
2: ना, उनके दिए गए ट्रेनिंग से आपको फायदा ही हो रहा है,
1: हाँ हाँ ट्रेनिंग से तो बहुत
2: ये
1: फायदा हो रहा है।
2: बहुत अच्छा बात है। तो आप अकेले ही ये बिजनेस करते हैं या आपको साथ देने के लिए
1: नहीं नहीं
2: आपके
1: नहीं
2: भाई बंधु कोई है?
1: हाँ, फैमिली मेम्बर तो ऐसे भी घर में ये सब पालन के लिए, घर में एक तो हमेशा इन लोगों का साथ में रहना पड़ता है
2: अच्छा।
1: कि दिन में देखभाल करना है, दिन में कभी दिन पाँव फंस जाता है,
2: अच्छा
1: कभी दिन पेट दर्द से वो ऐसे सो जाता है, बीमार
2: अच्छा
1: से सो जाता है,
2: हाँ
1: इसको
2: हाँ
1: इमरजेंसी के लिए वेटनरी जाना पड़ता है, वेटनरी डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। ऐसे बड़ा बिजनेस करना है तो, बड़ा फार्मिंग करना है तो वेटनरी ऑफिस से इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, इसको कनेक्ट करना पड़ता है, हम उनका कम्युनिकेशन करना पड़ता है।
2: हाँ, क्योंकि जब भी कभी बीमार वगैरह होगा तो वेटरनरी हम लोगों का सहारा है।
0: तो जो आप ये सुअर पालते हो, इसका जो मार्केटिंग है कैसे करते हैं? क्या आप मार्केट में सप्लाई करते हैं या पर्सनल, कैसे किस तरह से करते हैं, ये थोड़ा हमें बताइए।
1: हाँ ऐसे वो जो मीट का जो सप्लाई तो हम लोग हर किस्म से हम लोग बेचता है, क्योंकि ऐसे भी फार्मिंग है उसमें ज़्यादा पालता है। कभी दिन क्या होता है ऐसे काट के हम लोग बेच देता है, ऐसे KG के हिसाब में दे देता है। तो कभी दिन क्या होता है, शादी पार्टी में बोला जाता है, हाँ ऑर्डर करता है, कभी बर्थडे पार्टी में मांगता है, कभी ऐसे गुट्टा में ले लेता है, ऐसे पूरा ले लेता है।
2: मतलब आप हाफलॉन्ग में ही सेल करते हैं या आपका जो स्वर है वो बाहर भी जाता है?
1: बाहर भी चला जाता है, माने दिमासों के अंदर में होता है,
2: अच्छा
1: माने
2: अच्छा अच्छा
1: इसके ऐसे दूर ऐसे वेटनरी यो में नहीं होता है,
2: अच्छा अच्छा
1: ऐसे दूसरा दूर नहीं जा सकता है, दिमासों के अंदर में तो हाँ यहाँ से लेके सिलचर ले जा जाता है कभी कभी चाहिए तो।
2: अब
1: हाँ
2: सिलचर से आदमी लोग आते हैं लेने के लिए।
1: हाँ हाँ हम लोग भी बेच देते हैं, जाके बेच देता है कभी
2: अच्छा
1: दिन,
2: अच्छा
1: होम
2: अच्छा
1: डिलीवरी भी कर लेता है।
2: लेके
1: हाँ
2: जाते हो आप लोग?
1: ना
2: जी, ये तो अभी बिजनेस है तो करना पड़ेगा।
1: हाँ, बिजनेस है तो करना पड़ता है।
2: तो एक स्वर से, जैसे कि आपने कहा है कि एक स्वर से 50 से 60 kg होता है एक स्वर,
1: हाँ,
2: 8 महीना में।
1: हाँ जी।
2: तो ये 50 से 60 kg स्वर आप बेचते हैं तो गोटा में, पूरा में, तो कितना आपको प्रॉफिट हो जाता है?
1: प्रॉफिट होता है माने इतना ज़्यादा तो नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा पालन में थोड़ा हिसाब किताब होना पड़ता है। हिसाब
2: अच्छा।
1: किताब में लास्ट में लास्टली ऐसे मिल जाता है। एक्चुअली क्या होता है, अगर 6 ठू या 10 ठू पालन, उसमें जो फर्स्ट में जो 1, 2, 3 भेजा, ये सब तो दाना के लिए फिर आ जाता है, दाना
2: हाँ।
1: फिर खरीदना पड़ता है। इसको लास्ट में क्या होता है, मैं एग्जैक्टली क्या होता है, अब 50-60 हम लोग जो बेचता है उसमें मान लो 15,000 या 20,000 ऐसे प्रॉफिट तो ऐसे आ जाता है।
2: आ जाता है। तो आपको एक स्वर से 15-20 आता है।
1: हाँ।
2: जी, ये तो बहुत बढ़िया है।
1: हाँ।
2: तो आप अपने फ्यूचर के लिए क्या सोच रहे हैं? फ्यूचर में इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे उसको और ज्यादा बड़ा करेंगे? कुछ तो आपने सोचा होगा ना अपने बिजनेस के लिए।
1: हाँ। ये तो मैंने सोचा इससे भी बढ़ाएगा, ऐसे भी बड़ा करके अभी तो हम लोग 10 का अंदर में कर रहे हैं, 10 का अंदर में ऐसे भी नियरली 8-9 ऐसे करता है। तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट ईयर या अगर होने से, अगर संगने से हम लोग 20-30 के अंदर में हम लोग पालने का कोशिश करने से, मैंने थ्री मंथ्स गैप करके हम लोग साल में 3 बच्चा ऐसे भी लेने से हम लोग के लिए अनएम्प्लॉय यूथ के लिए हर साल में हर 3 महीना बाद में आपको बिजनेस तो ऐसे पैसा तो आते जाएगा।
2: हाँ, ये तो बहुत अच्छा बात। हम लोग भी आशा करते हैं कि आपका बिजनेस और भी आगे जाए।
1: हाँ।
2: और भी ग्रो करे, और हमारे जो दिमासा डिस्ट्रिक्ट के जो अनएम्प्लॉयड है वो भी आपके बात सुनकर इंस्पायर हो और वो भी ऐसा कुछ छोटा सा बिजनेस शुरू करे और इन फ्यूचर वो भी बड़ा करे, अपने बिजनेस को ग्रोथ करे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टेशन पे आए, हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, तो धन्यवाद आपको।
1: थैंक यू।
2: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी स्वर पालन के विषय पर। इसी के साथ कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले हम सभी श्रोताओं को ये बताना चाहते हैं, अगर आपके पास किसानवाणी कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी सुझाव हो, कोई भी परामर्श हो जो आप हमें देना चाहते हो, तो आप हमसे जरूर संपर्क कीजिए। संपर्क करने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 03-673-2995। और श्रोताओं, आप हमारे ऑफिस पे आकर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऑफिस आने का समय रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। तो हमें रहेगा आपके सुझाव का इंतजार। इसी के साथ कार्यक्रम को समेटते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली किसान वाणी कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैं चुमकी
0: और मैं रिनी आपसे इजाजत लेते हैं।
2: नमस्कार।
3: किसान वाणी प्रायोजक थे भारत सरकार की कृषि मंत्रालय।

दोस्तों, आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हाफलाइन केंद्र है। अब आरंभ करते हैं और सुनते हैं कुछ हिंदी फिल्मी गीत। इस कार्यक्रम में दोस्तों सबसे पहले सुनते हैं उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाज़ में एक गीत, हीरो नंबर 1 फिल्म से।

श्रोताओ, फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं अग्निपथ फिल्म से, जिसे उदित नारायण और सुनिधि चौहान ने गाया है।

तो दोस्तों, फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम बस यहीं तक। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलाइन केंद्र है। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे समाचार संध्या।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच 2रा 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में हैं, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है। ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
5: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने ये पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लैटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देश भर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
6: ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमीयतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रूपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
7: जगबंधु हे गोसाई।
8: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रथ में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खींचने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खींचने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
3: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
9: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
3: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना

0: और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच 2 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9।
2: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए समाचार संध्या अभी आप सुन रहे थे। सभी श्रोताओं का आकाशवाणी के हफलंग केंद्र में पुनः एक बार हम स्वागत करते हैं।
3: हेलो हफलॉन्ग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हफलॉन्ग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलॉन्ग।
4: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
3: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं। और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर। नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हफलॉन्ग।

दोस्तों, अब आरंभ करने जा रहे हैं गजलों का कार्यक्रम। आइए आनंद लेते हैं। रंजिश ही सही इस एल्बम के कुछ गजलें मेहदी हसन की आवाज में।

0: मन मंदिर, ये भी मंदिर है।
1: मंदिर माँ सुंदर खड़ी,
0: ये नौकरानी राजकुमारी को देख के अफसोस कर रही है, वो कह रही है।

0: श्रोताओं, आप आनंद ले रहे थे गजलों का, और आज के कलाकार थे मेहंदी हसन। ये आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है।
1: आपके गीत दोस्तों, एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम, और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और श्रोताओं, अब समय हो गया है आरंभ करने का हिंदी फिल्में गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रगीत। इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं शैलेंद्र सिंह के आवाज में एक गीत बॉबी फिल्म से। और दोस्तों, आज इस चित्रगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कुछ सदाबहार गीत। आनंद लेते रहिए।

तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि आज चित्रगीत हमने सजाया है कुछ सदाबहार गीतों से। अगला गीत येसुदास की आवाज़ में और फिल्म का नाम है सावन को आने दो।

बिच्छू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मेरे।

दोस्तों, आप सुन रहे थे परिचय फिल्म का एक गीत जिसे किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया, और इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। सुन रहे हैं चित्रगीत कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम को हमने सजाया है कुछ सदाबहार नगमों से। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हुए अब सुनते हैं ब्लैकमेल फिल्म का एक गीत किशोर कुमार के ही आवाज़ में।

सदाबहार गीतों से सजी चित्रगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, लाभा फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की ही आवाज में।

तो श्रोताओं, ये था आज का चित्रगीत कार्यक्रम। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। हमारी स्टूडियो के घड़ी में इस समय रात के 10 बज चुके हैं। समय हो गया है आज की दूसरी सभा को समाप्त करने का। कल पहली सभा के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी संयुक्ता को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, जय हिंद।